शुभ सवेरा, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं सुनीता सिंह, अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं, आज गुरुवार है, विक्रम संवत 2083 के भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि और शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि। तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। इस समय 7:04:22 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो।

श्रोताओं, आज 17 सितंबर है, आज से शुरू हो रहा है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का एक चरण। स्वच्छता केवल झाड़ू उठाने या कूड़ा हटाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने आसपास की दुनिया के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का नाम है। इसी भावना को जन आंदोलन का रूप देने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान का आरंभ किया गया है। किसी भी शहर की असली खूबसूरती उसकी ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उसकी साफ गलियों, निर्मल जल स्रोतों और स्वस्थ सार्वजनिक स्थानों में दिखाई देती है। स्वच्छता वो मौन भाषा है जिसमें एक समाज अपने वर्तमान को व्यवस्थित और अपने भविष्य को सुरक्षित करता है। स्वच्छता ही सेवा इसी विचार को व्यवहार में उतारने का अवसर है। ये हमें याद दिलाता है कि साफ सफाई केवल सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। घर से निकलकर सड़क, बाजार, विद्यालय, कार्यालय, पार्क, जल स्रोत और सार्वजनिक स्थलों तक हर जगह हमारी छोटी सी सजगता बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो आप सब भी इस विषय में जागरूक होइए और आपके जो आसपास लोग हैं उन्हें इस अभियान के विषय में बताइए और अपने आसपास को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को और अपने शहर को और फिर इस तरह से अपने देश को साफ रखिए। तो ये था आज का संदेश और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास लेकर हम उपस्थित हुए हैं आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में। सुनिए कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आप सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ, उसके बाद अक्षय निधि और फिर भक्ति संगीत का प्रसारण होता है। यही क्रम आज भी रहेगा। सुबह 8 बजे वतन का राग कार्यक्रम प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे हनुमान प्रसाद पोद्दार की। बाल सभा कार्यक्रम में 8:30 बजे सुनिएगा नशे का साथ जिंदगी का नाश, इस विषय पर प्रस्तुति। हमारी सेना हमारा गर्व, ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की संगठन की कार्यप्रणाली पर। हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे प्रसारित होगा। इसमें सुनिएगा मार्च शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का तीसरा भाग। 10:30 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। अवनींद्रनाथ मुखर्जी पर केंद्रित आजाद हिंद कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा सुबह 10:30 बजे। 11 बजे सुनिए नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। 11:10 का समय होगा रेडियो रिपोर्ट का और 11:30 बजे हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद आप सुनेंगे आज की पहली प्रस्तुति, कार्यक्रम जीवन सौरभ।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जीवन सौरभ।

बात है सन 70 के दशक की। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर मार्शल एक दिन छोटे बच्चों के स्कूल में पहुंच गए। 5 साल के बच्चों की क्लास में पहुंचकर उन्होंने बच्चों की पसंदीदा मिठाई मार्शमेलो सब बच्चों को एक एक खाने को दी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी बात भी कही। उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, आप सभी को 10 मिनट तक अपनी ये मिठाई नहीं खानी है। और ये कहकर वो क्लासरूम से बाहर चले गए। कुछ पल के लिए तो क्लास में सन्नाटा रहा। हर बच्चा अपने सामने रखी मिठाई को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ खुद को रोकना मुश्किल पाता जा रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और प्रोफेसर साहब क्लासरूम में आ गए। उन्होंने समीक्षा की तो पाया कि पूरी क्लास में केवल 7 बच्चे ऐसे थे जिनकी मिठाई जस की तस रखी थी, जबकि बाकी के सभी बच्चे मिठाई खाकर उसके रंग और स्वाद पर बातें कर रहे थे। प्रोफेसर वाल्टर ने चुपके से इन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए, किसी से कुछ भी नहीं कहा और यूनिवर्सिटी वापस चले आए। कुछ सालों बाद प्रोफेसर वाल्टर ने अपनी वही डायरी खोली और 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और जब इन बच्चों को खोजा तो उन्हें पता चला कि जीवन में उन बच्चों ने कई सफलताओं को प्राप्त किया है और अपने अपने क्षेत्र के लोगों में वो सबसे सफल रहे हैं। फिर प्रोफेसर वाल्टर ने अपनी उसी क्लास के शेष बच्चों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की और ये पाया कि उनमें से ज्यादातर बच्चे साधारण जीवन जी रहे हैं, जबकि उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। इस शोध से प्रोफेसर वाल्टर ने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि जो इंसान केवल 10 मिनट भी धैर्य नहीं रख सकता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस शोध को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली और इसका नाम मार्शमेलो थियरी रखा गया, क्योंकि जो मिठाई बच्चों को दी गई थी उसका नाम था मार्शमेलो। दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ एक गुण जरूर पाया जाता है और वो है धैर्य। ये गुण मनुष्य में सहन करने की क्षमता को बढ़ाता है और इसी की बदौलत इंसान कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता, बल्कि जीवन में सफलता पाता है और अपना भविष्य सुखद बनाता है।

0: जीवन सौरभ।
1: न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गजल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: श्रोताओं, कहते हैं वही मनुष्य जीवन में ऊपर उठ सकता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। तो आइए हम भी अपनी जड़ों की ओर चलें, वेदों उपनिषदों के ज्ञान को सुनें। कार्यक्रम का नाम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 21 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत और भार्गव शौनक, देवता इंद्र, छंद है जगती व त्रिष्टु।
1: विश्व जीते, धन जीते, स्वर जीते, सत्रा जीते, नृजित उर्वरा जीते, अश्व जीते, गो जीते, अब जीते, भरेन्द्राय सोमम यजताय हर्यतम। हे याजको, समस्त विश्व को जीतने वाले, धन की विजय करने वाले, संगठित रूप में विजय प्राप्त करने वाले, मनुष्यों को जीतने वाले, उर्वर भूमि को जीतने वाले, घोड़े तथा गौओं को जीतने वाले तथा जल तत्व को अपने वश में करने वाले पूज्य इंद्रदेव के निमित्त तेजस्वी सोम प्रदान करो। अभिभुवे विभंगाय वन्वते षाढ़हाय सहमानाय वेधसे तु विग्रये वहनये दुष्ट रीतवे सत्रा साहे नम इंद्राय वोचत। हे याजको, सर्वव्यापक प्रलयंकारी ऐश्वर्य का यथोचित विभाजन करने वाले, अजेय शत्रुओं के आक्रमण को स्वयं झेलने वाले, विश्व के विधाता पुष्ट ग्रीव संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, अपार सामर्थ्य वाले तथा संगठित रूप से युद्ध करने वाले इंद्रदेव का सदैव यशोगान करो। सत्रा साहो जनभक्षो जनम सह्यश्च्यवनो युधमो अनु जोश मुक्षितः व्रतंचयः सहुरिर विक्ष्वारित इंद्रस्य वोचम प्रकृतानि वीरिया। हे याजको, मनुष्य के हित के लिए संगठित रूप से लड़ने वाले बलवानों के विजेता शत्रु निवारक योद्धा प्रीतिपूर्वक सोमरस का पान करने वाले शत्रुहंता तथा प्रजापालक तेजस्वी इंद्रदेव द्वारा किए गए महान पराक्रमों का यशोगान करो। अनानुदो वृषभो दोधतो वधो गंभीर ऋष्वो असमष्टकाव्यः रध्रचोदः श्नथनो वीडितस्पृथुरिन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत। हे याजको, महादानी बलशाली दुर्धर्ष शत्रुओं के हंता गंभीर सर्वज्ञाता असाधारण कार्य कुशल उत्तम कर्मों के प्रेरक शत्रुओं की शक्ति को क्षीण करने वाले परिपुष्ट अंगों वाले श्रेष्ठ कर्मा महान इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से उषाओं तथा सूर्य को प्रकट किया है। यज्ञेन गातु मप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उषिजो मनीषिणः अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इंद्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत। शीघ्रता से कार्य करने वाले ज्ञानी जन समृद्धि की कामना से श्रेष्ठ यज्ञीय कर्मों में स्तुतियां करते हुए योग्य मार्ग पा जाते हैं और अपने संरक्षण की कामना से इंद्रदेव की स्तुतियां करते हुए उनके समीप रहकर धन प्राप्त करते हैं। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रईणामरिष्टिम तनूनाम स्वाद्मानम वाचः सुदिनत्व महनाम। हे इंद्रदेव, हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें, हमें चेतना युक्त सामर्थ्य तथा उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें, हमें निरोग बनाते हुए ऐश्वर्य की वृद्धि करें, हमारी वाणी को मधुर तथा प्रत्येक दिन को उत्तम बनाए।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 21 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: ये था आपको आपकी जड़ों से जोड़ता कार्यक्रम अक्षय निधि। रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में बहुत कुछ है खास आगे आपके लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी सुनने वालों का भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, समय अनवरत निर्बाध चलता रहता है। धरती सांस सांस गाती है नव सृजन का संकल्प, रचती है नया दिन, नई सुबह, नया जीवन। सुबह जैसे खुशी की सरगम है और शाम एक मध्यम सी मुस्कुराहट है जिंदगी की। सुबह एक शक्ति है जो सिखाती है जीने का मंत्र, दिखाती है कुछ नए रास्ते, और शाम जैसे पुनर्जीवन है, नए सिरे से नई राह पर जिंदगी की एक नई शुरुआत का चिंतन। शायद इसीलिए सुबह और शाम आराधना का विधान है। तो आइए हम और आप साथ साथ चलें आज की भजन यात्रा पर।

श्रोताओं, कितना अद्भुत है समर्पण का संसार, जहां मानव डूबकर पार हो जाता है और जो नहीं डूबता वो मझधार में रह जाता है। वंदना, प्रार्थना, समर्पण भाव के बिना निर्जीव है, निरर्थक है, और भाव सहित एक क्षण का समर्पण आनंद है, उद्धार है।

जिसने भी सत्य को जाना वो ठहर गया, मौन हो गया, क्योंकि फिर बोलना मुश्किल था। और अगर किसी ने बोलने की कोशिश भी की तो वो इशारा मात्र था, इंगित करना था। वो मील का पत्थर था जिस पर तीर बना होता है, बस एक इशारा। उसे ही हम मंदिर समझकर बैठ गए तो फिर हमारा कहीं भी पहुंचना संभव नहीं है। उन इशारों को समझते हुए ये यात्रा स्वयं करनी होती है, उस अनुभव से बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं गुजरना होता है। इस तरह भक्ति में हर यात्रा व्यक्तिगत होती है, हर अनुभव व्यक्तिगत होता है।

श्रोताओं, सुख दुख जीवन के अनिवार्य अंग हैं। या तो हमारे जीवन में सुख है या दुख है। जीवन में या तो कुछ है जो हम चाहते हैं या कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हैं। कुछ है जिसका हम पीछा करना चाहते हैं, कुछ है जिससे हम बचना चाहते हैं। ये चाहना, ये मन का होना ही संसार है और ईश्वर संसार के पार है। जहां न सुख है न दुख है, उसी को हमने आनंद कहा। और इस ज्ञान की प्राप्ति भी उस परम शक्ति की कृपा से ही संभव है।

श्रोताओं, मन की सफलता जहाँ समाप्त हो जाती है, वहीं भक्ति आरंभ होती है, वहीं वंदना घटित होती है। जब तक मन सफल होता रहता है, माया जारी रहती है। मन का न होना ही मौन है, मन का न होना ही परमात्मा में खोना है, और इस खोने में ही उसे पाने की व्यवस्था है।

ज्ञानी जन कहते हैं हम हवा पानी की तरह सहज हो जाएं, जो हो रहा है उसे होने दें, जो है उसे स्वीकार करें, सिर्फ होने का एक शांत ढंग पकड़ लें, होने का एक ढंग जिसमें प्रतीक्षा है, धैर्य है, होने का एक ढंग जो प्रार्थना पूर्ण है, यही ढंग सही मार्ग है, यही ढंग दरअसल आराधना है।

और श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होती है आज की भजन यात्रा। और अब अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: श्रोताओं, रेडियो आज़ाद हिंद की ये प्रसारण सभा आप सुन रहे हैं सुनीता सिंह के साथ। हमारी अगली प्रस्तुति कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने पराधीनता का एक लंबा समय सहा है, वो समय जिसमें शोषण, दमन और अत्याचार की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों के आत्मगौरव और स्वाभिमान को भी कुचलने का भरसक प्रयास किया। यही कारण है कि जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए युद्ध लड़ रहा था, ठीक उसी समय भारत की महान सनातन संस्कृति को उसके मूल में स्थापित करने और उस पर काबिज लगभग 1000 वर्षों की पराधीनता से भारतीयता को मुक्त कराने का युद्ध भी लड़ा जा रहा था। और इस युद्ध के महानायक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे और भारत की सनातन संस्कृति के संवाहक भी। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण जैसे 100 से अधिक ग्रंथों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये एक विलक्षण कार्य था जिसे उन्होंने संपूर्ण समर्पण के भाव के साथ बहुत ही लगन से किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म सन 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम भीमराज अग्रवाल और माता का नाम रिखीबाई था। माता पिता हनुमान जी के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम हनुमान प्रसाद रखा। बाल्यावस्था में ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनकी दादी माँ राम कौर देवी ने उनका लालन पालन किया। अपनी दादी से उन्होंने बचपन में ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां सुनी। इन संस्कारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निम्बार्क संप्रदाय के संत ब्रजदास जी ने उन्हें दीक्षा दी। ये वो समय था जब देश पराधीन था। हनुमान प्रसाद पोद्दार के पिता अपने कारोबार के कारण अब कलकत्ता में थे। कलकत्ता उन दिनों क्रांति गतिविधियों का गढ़ था। यहीं वो अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास और पंडित झाबरमल शर्मा के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के कारण ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से उनका निकट संपर्क बना। वीर सावरकर की लिखी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनसे मिलने मुंबई चले गए। सन 1906 में उन्होंने कपड़ों में गाय की चर्बी के प्रयोग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में भी वो संपूर्ण रूप से सक्रिय रहे। युवावस्था में ही उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शुरू कर दिया।

हनुमान प्रसाद पोद्दार भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहा करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह कर रहे थे, तब कलकत्ता में कई लोगों से मिलकर हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इस कार्य के लिए दान की राशि एकत्रित करवाई। कलकत्ता में वो लगातार क्रांति गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के हथियारों के एक जखीरे को लूटकर उसे छिपाने में क्रांतिकारियों की मदद की थी। जेल में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने हनुमान जी की आराधना आरंभ कर दी। फिर बाद में उन्हें अलीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। अपने जेल जीवन का सदुपयोग उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति में किया। वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर ध्यान का अभ्यास करने लगे। कुछ दिन बाद वो शिमलपाल जेल में स्थानांतरित कर दिए गए। वहां मरीजों की चिकित्सा के लिए आने वाले एक होम्योपैथी चिकित्सक से उन्होंने होम्योपैथी की बारीकियां सीखीं, उसकी किताबों का अध्ययन किया और स्वयं मरीजों का इलाज करने लगे। बाद में रिहा होकर वो जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले गए और यहाँ एक खादी प्रचार मंडल की स्थापना भी की। हनुमान प्रसाद पोद्दार जब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सानिध्य में आए तो उन्होंने विपुल मात्रा में भक्ति गीत लिखे, जो पत्र पुष्प के नाम से प्रकाशित हुए। मुंबई में वो अपने मौसेरे भाई श्री जयदयाल गोयंदका जी के गीता पाठ से अत्यंत प्रभावित थे। गीता के प्रति लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो श्रीमद् भगवद् गीता को कम से कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह वो अपने इस संकल्प की सिद्धि में जुट गए। उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी और उसे कलकत्ता से छपवाया। पहले ही संस्करण की 5,000 प्रतियां बिक गईं। लेकिन उन्हें इस बात का दुख हुआ कि इस पुस्तक में मुद्रण संबंधी अनेक त्रुटियां थीं। दोबारा उन्होंने संशोधित संस्करण निकाला, लेकिन फिर भी गलतियां वैसी ही रहीं और वो समझ गए कि अपना प्रेस हो, वो स्वयं संपादन करें, तभी बात बन सकेगी। और बस यही छोटा सा संकल्प गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का आधार बना। 29 अप्रैल सन 1923 को श्री जयदयाल गोयंदका जी ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और उसके संपादक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो आजीवन इसके ट्रस्टी भी रहे। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने अथक प्रयास से गीता को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक शुद्ध पाठ वाली पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस तरह गीता भारत के घर घर तक पहुंच गई। अपने जीवन काल में पोद्दार जी ने 25,000 से अधिक पृष्ठों का साहित्य सृजन किया। उन्होंने मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषयों पर ही लिखा। पद रत्नाकर के नाम से 6 भागों में संकलित उनकी काव्यधारा मन को भिगो देती है। वो लिखते हैं, श्री राधा रानी चरण बिनवो बारंबार, विषय वासना नाम करी करो प्रेम संचार, तुम्हारी अनुकंपा अमित अविरत अकल अपार, मुँह पर सदा अहै तुकी बरसत रहत उदार।

हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने लेखन की शुरुआत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख और निबंधों से की थी, जो पुस्तक रूप में संकलित हैं। उनके लेखों और निबंधों को चार श्रेणियों में रखा गया है। पहला आध्यात्मिक, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा नीतिमूलक और चौथा विविध। निबंधों और लेखों के अलावा उन्होंने टीका साहित्य का भी सृजन किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने श्रीरामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली आदि का विशद टीका प्रस्तुत किया। श्रीरामचरितमानस को प्रामाणिक रूप देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो अद्भुत हैं। वो चित्रकूट, अयोध्या, राजापुर, काशी आदि स्थानों पर स्वयं गए, लोगों के पास जो पांडुलिपियां थीं उनका संग्रह किया और फिर उसके बाद सभी को मिलाकर श्रीरामचरितमानस के एक शुद्ध संस्करण का प्रकाशन किया। श्रीरामचरितमानस की यही प्रति आज घर घर में विद्यमान है। यही कार्य उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण सहित सनातन के सभी मूल ग्रंथों को लेकर किया। गीता के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो कार्य आरंभ किया था उससे घनश्याम दास बिड़ला अत्यंत प्रभावित थे। सन 1926 में एक अधिवेशन में उन्होंने पोद्दार जी से आग्रह किया कि वो एक पत्रिका का प्रकाशन करें। इस तरह मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन आरंभ हुआ। गांधी जी के कहने पर उन्होंने कभी भी इस पत्रिका में न तो विज्ञापन को स्थान दिया और न ही पुस्तक समीक्षा को। इसके पहले संपादक मंडल में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जैसे साहित्यकार शामिल थे, जो संपादक के नाम आए पत्रों का जवाब देते थे और रामायण का संपादन करते थे। कल्याण के पहले अंक में महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के लेख भी छपे थे। गांधी जी के लेख इसमें आगे भी छपते रहे। इसके नियमित लेखकों में महर्षि अरविंद, आचार्य नरेंद्र देव, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, एनी विसेंट आदि के नाम शामिल थे। गीता प्रवचन लिखने वाले विनोबा भावे भी इसमें शामिल थे। ये पोद्दार जी के व्यक्तित्व का कमाल ही था कि वो स्थापित लेखकों से भी अपनी पत्रिका के लिए लिखवा लिया करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे सुप्रसिद्ध लेखकों के नाम इस सूची में शामिल हैं। कल्याण पत्रिका सन 1927 से गीता प्रेस से ही छपने लगी थी। गीता प्रेस ने कुछ काम तो अद्भुत ही किए थे। उस दौर में हरिवंश राय बच्चन मधुशाला लिखकर साहित्य जगत में छा गए थे। उन्होंने अवधि में गीता का अनुवाद किया, जो जन गीता के नाम से छपी। बाद में हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में भी गीता का अनुवाद किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार एक जुनूनी संपादक थे। वो पूरे भारत के लेखकों के संपर्क में रहते थे। उनके पास देश भर के विद्वानों के अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं के लेख आते थे, जिनका अनुवाद करके उसे छापा जाता था। उनका आभा मंडल ऐसा था कि लोग सब कुछ त्याग कर उनसे जुड़ जाया करते थे। सन 1936 और 1938 में बाढ़ और अकाल जैसी विपदाओं में उन्होंने समाज सेवा का कार्य भी किया था। तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 22 मार्च सन 1971 को वो इस संसार से विदा हो गए, लेकिन भारत के जन जन तक सांस्कृतिक शिक्षा को पहुंचाने, उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने और लुप्त होते पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने की दिशा में उन्होंने जो बहुमूल्य कार्य किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, बच्चों की महफिल तैयार है जगमगाती हुई, खिलखिलाती हुई और गुनगुनाती हुई। तो चलिए, एक छोटे से अंतराल के बाद आपको हम लिए चलते हैं उनके बीच और सुनते हैं कार्यक्रम बाल सभा।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और ज़िंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों, ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है, और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म, बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में। टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो, खतरा यहीं से शुरू होता है। लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे, और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मज़ा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है, वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है, आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है, वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है, और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य, सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेंगे, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
3: नमस्ते मैम।
1: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
3: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
1: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है। तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे?
3: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता, जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
1: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
3: जी,
1: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
3: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
1: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
3: जी।
1: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं?
3: जी।
1: है ना, तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया?
3: जी।
1: ठीक है, पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
3: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
1: जी,
3: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मजा आएगा, तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
1: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं,
3: जी,
1: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये जरूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नजर आई है। दूसरी चीज, तुम लड़के हो,
3: जी,
1: यही कहा था आपसे,
3: जी,
1: आप याद रखिए लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूं तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
3: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
1: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
3: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा। तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
1: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
3: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज़ की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
1: क्या हुआ फिर?
3: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज़ हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
1: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
3: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
1: जी।
3: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर दो चार दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि दो चार दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो, ये चीज़ वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
1: एलेक्स रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई तेरे पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स आगे की कहानी।
3: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
1: जी।
3: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं, और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
1: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
4: नमस्ते,
1: क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम प्रीति है।
1: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
4: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चों के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यूँ था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी लेकिन छोटी थी, तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है। और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया। तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था। लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं। तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
5: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से, अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मजे करते हो, अभी हम लोग मजे कर रहे हैं, तो नशा मजे की चीज हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
4: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
5: जी।
4: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए, तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं। तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
5: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से, इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना एलेक्स? आप भी तो, आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
3: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में

0: तब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय, और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे। क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े, मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है। तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा, या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें। क्यों? क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो, मतलब दिन का 300-400 रुपये का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1 लाख रुपए बचाए होते तो आज, मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते। क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था, तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की, और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है। तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है। तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
1: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
0: जी
1: और बिल्कुल रोशनी नहीं है,
0: जी
1: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुँच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियाँ होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है आप कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो,
0: जी
1: है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से। क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है। लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती,
0: जी
1: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना,
0: जी बिल्कुल
1: किसी
0: नहीं।
1: अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते,
0: जी
1: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे
0: जी
1: होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे, उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती,
0: जी
1: और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
2: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कुछ टाइम तक बोले जाए तो नहीं बोल पाई, बहुत समथिंग 13 साल की हो गई हूँ, दिख रहा है, पता है कि गलत है, लेकिन बोलने की वो थोड़ी सी मन में बहुत सवाल है, लेकिन ये था कि कहाँ बोलूँ। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि मेरे को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक मौका मिला। जो हमारी रवीना दीदी हैं, निहारिका दीदी हैं, ये लोग जब हमारे एरिया में आए और कहा कि एक मीटिंग है इसमें आना है, मेरी जो दोस्त थी उन्होंने बोला कि चलना है, तो मैंने बोला हाँ चलते हैं। पहले दिन मैं गई, उस दिन ठीक था, घर पे कुछ नहीं हुआ। फिर एक दूसरी बार मीटिंग हुई तो घर वाले भी बोलने लगे कि कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास, फालतू बस एक
1: बैठ जाते हो,
2: फालतू जाकर बैठ जाते हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैं

0: वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो है ना, तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे, अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
1: कोई तो सुने, पहली बात कोई तो बात सुने,
0: बहुत हाँ। जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं, और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है, तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे, जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताओ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास से देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत, जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है, बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे, तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है। एक चीज़ बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
1: ना जाए,
0: हाँ अब इसका असर उन लोगों पे जाना शुरू हो गया, जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी, हॉस्टल चली गई थी, तो जब वहाँ से वापस आई तो मुझे पता चला, मेरे घर वालों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, मैंने बोला हैं ये कैसे हो गया, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी पापा इतना ध्यान रखते हैं, मैं दूर रही हूँ तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब आसपास वालों ने बोला कि, और मैंने जब खुद अपने भाई को देखा मुझसे कितना छोटा है, मैंने बोला भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने अपने पापा से सवाल करना चालू किया, वो मेरा पहला था कि मैंने बोला क्यों कर रहे हैं आप, तो बोलने लगे कि मैं कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आता ना कि अगर हम अपने घर
1: मेरा पैसा, मैं
0: मेरा,
1: कुछ भी करूं।
0: मेरा पैसा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने बोला मेरा पैसा कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 10th या 9th में थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका, तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ, मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूंगी, मेरे भाई बहन भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे, तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा, और ये होता है ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
1: हद में रहो
0: अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई, मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं क्यों कर रहे हो आप, तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे, वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे, अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं, अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ाला गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो बोले मैं तो करूँगा मेरा पैसा, तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस होगी, तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग एक हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
1: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदी हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है, जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपने हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं है, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पर पहुंच सकें। लेकिन हाँ, रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफर हुए तो रास्ता आगे हमें ले जरूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ जरूर ले जाएगा जहां कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाजें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं, आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना, उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बाल सभा मुझे लगता है कि सिर्फ बाल सभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है, जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
2: जी बिल्कुल
1: आ सकता है।
2: जी जी।
1: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा जरूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
4: तो श्रोताओं, ये थी बच्चों की खूबसूरत सी महफिल जिसे आप कहते हैं बाल सभा। आगे बहुत कुछ खास आपके लिए लेकर हम हाजिर हैं, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: जैसा कि हमने पिछले दफा बात की थी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में, और कर्नल साहब ने हमें एक परिचय दिया था कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं क्या होती हैं, और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि आर्मी का या भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका संगठन क्या होता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, साथ में सुरक्षा का प्रश्न रहता है, तो जटिलताएं भी आती होंगी, तो संगठन का स्वरूप कैसा रहता है?
3: किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है
2: जी,
3: वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आर्म फोर्सेस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है, जैसे कि किस तरह की टेरेन में वो लोग ऑपरेट करने वाले हैं, बॉर्डर के ऊपर किस तरह की हमारी टेरेन है, किस तरह के रिसोर्सेस हमारे पास हैं, मैन पावर के संदर्भ में वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे हम डिप्लॉय हो रहे हैं, जहाँ पे जिस तरह की हमको तैनाती है, जहाँ का कि हमको सुरक्षा करनी है, उसके जो साथ में लगा हुआ जो देश है
2: जी,
3: उसका जो बॉर्डर, उससे हमारे संबंध कैसे हैं
2: जी,
3: और उस लोकेशन का, उस जगह की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस प्रकार की होगी।
2: यानी वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं चल पाती।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। हर जगह एक डेजर्ट्स के डिप्लॉयमेंट में और जो है हाई एल्टीट्यूड के डिप्लॉयमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। इसी तरह से पंजाब के प्लेन्स में और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत अलग है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। जो हम पाकिस्तान के ऊपर में डिप्लॉय करते हैं या नेपाल बॉर्डर पर डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे संबंध, जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपको वदित है ही नेपाल और पाकिस्तान में कितने अलग अलग हैं, या भूटान के साथ अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो किस तरह से हैं। तो ये इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे फोर्सेस का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा
2: जी।
3: ये एक ऐसा टास्क है जो कि 24 घंटे, जिसमें कि आपको सचेत और सजग रहने की जरूरत होती है, और देश का चप्पा चप्पा, यानी कि आपको पूरा का पूरा एरिया जो है इसमें कवर करना होता है
2: जी।
3: आप किसी तरह का गैप नहीं रहने दे सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये इलाका छूट गया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो देश की सेनाएं हैं
2: जी,
3: वो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है हम एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आर्मी के बारे में बात करता हूँ। तो आर्मी जो है, हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, तकरीबन 11.5-12 लाख की में जो है
2: मैन पावर
3: है, संख्या होती है। इसका जो हमारा जो हेडक्वार्टर है आर्मी का वो दिल्ली में है, और इसको जो हेड करते हैं वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, जनरल रैंक के अफसर होते हैं, एंड सुप्रीम कमांडर जैसे पहले बताया था हमने, हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो है डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आर्मी जो है वो 6 ऑपरेशनल कमांड में डिवाइडेड है
2: जी।
3: मतलब आर्मी हेडक्वार्टर के अंतर्गत 6 ऑपरेशनल कमांड्स आती हैं और एक ट्रेनिंग कमांड आती है
2: जी।
3: तो 6 ऑपरेशनल कमांड जैसे कि वदित है वो देश की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
2: अगर हम मोटे तौर पे जैसे जानना समझना चाहे तो इस तरह का कि देश है तो उसमें 6 प्रदेश हैं और एक यूनियन टेरिटरी
3: है। यूनियन टेरिटरी
2: जी, जी।
3: तो जैसे कि नाम से ही आप बोल सकते हैं, तो अगर 6 हैं तो जैसे अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो नदन कमांड है
2: जी।
3: अब नदन कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में है और ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है
2: जी।
3: पंजाब के जो प्लेन्स हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑन द वेस्टर्न साइड, तो ये वेस्टर्न कमांड इसके रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि जिसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में है
2: जी।
3: फिर साउथ वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है वो राजस्थान के इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
2: जी।
3: एंड सदर्न कमांड जो है
2: जी,
3: ये राजस्थान से लेके पूरा साउथ के एरिया के लिए इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो कलकत्ता में है ये पूरे पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जिम्मेवार होते हैं। सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ में लोकेटेड है, वो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए।
2: 6 कमांड हैं जिनके नाम है नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड।
3: और हर कमांड का नेतृत्व होता है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब करते हैं।
2: अच्छा।
3: और इनको हम आर्मी कमांडर GOC इन सी भी कहते हैं।
2: अच्छा।
3: जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा जाता है, आर्मी कमांडर से भी उनको संबोधित करते हैं। हर कमांड के अंतर्गत 2-3 कोर होती हैं
2: जी,
3: और ये कोर जो होती हैं इनके नीचे डिविजन्स होती हैं
2: जी।
3: ये भी हर कोर के नीचे आप 3 डिविजन मिलेंगी
2: जी,
3: और हर डिविजन जो है उसके अंतर्गत जो है 3 ब्रिगेड्स आती हैं, और ब्रिगेड्स जो होती हैं उनके अंतर्गत जो है बटालियंस या रेजिमेंट्स होती हैं। हर बटालियन या हर रेजिमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बट ये इंडिपेंडेंटली काम करने वाले सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं। उसके नीचे उनकी कंपनीज होती हैं, कंपनी के नीचे जैसे प्लेटून्स होती हैं, प्लेटून के नीचे सेक्शन होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही मोटे तौर पे मैंने आपको बताई है, और इसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन है ये इतनी स्ट्रीमलाइन होती है कि इसमें हर व्यक्ति को अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना टास्क एब्सोल्युटली क्लियर होता है। जैसे एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, उस 10 सेक्शन को एक सेक्शन कमांडर जो होता है वो एक हवलदार होता है, वो कमांड करता है। उसमें हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरा हथियार क्या है, मेरा एमिनेशन कौन सा है, मुझे क्या इक्विपमेंट लेके जाना है, या मुझे मैप कैरी करना है, या मुझे कंपास कैरी करना है, मेरे को राशन कितना लेना है, तो वो ये पूरा का पूरा उसको हर एक को मालूम होता है। तो इसी तरह से सिंस हर व्यक्ति को अपने टास्क के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लैरिटी होती है, तो ये एक ब्रिक बाय ब्रिक
2: जी,
3: जब ये ऑर्गेनाइजेशन ऊपर तक जाती है तो एक बहुत ही सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड होती है, और इनको पूरी तरह से जानकारी रहती है।
2: कर्नल साहब, आप मैं मोटे तौर पर एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, आपने बताया था कमांड होती है, उसके अंतर्गत कोर आती है, फिर डिवीजन होते हैं, ब्रिगेड होते हैं, बटालियन होती हैं, कंपनियां होती हैं उसके अंतर्गत, प्लाटून होते हैं, और सबसे छोटी जो इकाई रहती है वो सेक्शन होती है।
3: इन्फेंट्री बटालियंस में जो है सेक्शंस होते हैं। एक कमांड और है वो हमारी ट्रेनिंग कमांड कहलाती है, उसको मार्ट्रैक कहते हैं। तो हमारे डिफेंस की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ट्रेनिंग कमांड के अंतर्गत आते हैं। ये शिमला में लोकेटेड है, इनका नेतृत्व भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल साहब करते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है। तो ये ऑपरेशनल ना होकर ट्रेनिंग कमांड होती है। ये एक तरह से आर्मी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्राउंड के ऊपर जब डिप्लॉयमेंट होता है
2: जी,
3: तो इसमें जो हमारे देश में देखें, जैसे हमने पहले बोला था कि हमारा जो लैंड बॉर्डर है तकरीबन 15,000 किलोमीटर का है। अब हम इसको एक तरह से शुरू करें, रन ऑफ कच्छ से अगर शुरू करेंगे तो बिल्कुल प्लेन इलाका है,
4: बिल्कुल।
3: उसके बाद राजस्थान के डेजर्ट्स आ जाते हैं, आप समझते हैं डेजर्ट्स की जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग से, मतलब जो है बहुत ठंडा होता है, बहुत गर्म होता है, चलना बहुत मुश्किल होता है, पूरा बैरन लैंड होता है, किसी तरह का छुपाव नहीं होता है, तो उसके लिए एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर पंजाब के प्लेन्स आ जाते हैं, केनाल का इलाका आता है पंजाब के, उसमें बहुत कल्टीवेटेड लैंड होता है, बिल्ट अप एरिया बहुत है। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि हिमालयन रेंजेस शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और पहाड़ियाँ धीरे धीरे उनकी हाइट्स बढ़ती जाती है, और कारगिल सियाचिन ग्लेशियर, जब लद्दाख का एरिया है तो सियाचिन ग्लेशियर में जाके तकरीबन जो है 22,000-23,000 की ऊंचाई तक भी बॉर्डर के ऊपर आपको जो है इस तरह का टेरेन मिलता है। तो जीरो से लेके डिप्लॉयमेंट जो हमारा होता है जिसमें कि सैनिक कार्य करते हैं, वो इलाका जीरो लेवल से लेके तकरीबन 22,000-23,000 की ऊंचाई तक जाता है। इसी तरह से वो आगे बॉर्डर भी सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह से चलता है। फिर हम अगर साउथ की बात करते हैं या हम ईस्ट की बात करते हैं तो कई जगह ऐसे इलाके हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा जंगल भी हैं, ह्यूमिडिटी भी है, तो जो डिप्लॉयमेंट होता है वो इस बात को मद्देनज़र रख के भी होता है कि किस तरह का इलाका है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी उस तरह के फिर चेंजेस होते हैं। जैसे जो यूनिट, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कोर डेजर्ट्स में डिप्लॉयड है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती हैं,
4: जाहिर सी बात।
3: हाँ, बनिस्पत जो ऑर्गेनाइजेशन सियाचिन ग्लेशियर पे काम कर रही है वहाँ पे -50 का टेम्परेचर चल रहा होता है सियाचिन ग्लेशियर में, यहाँ पे 50 का टेम्परेचर प्लस में चल रहा होता है। उसी तरह से जो है मणिपुर नागालैंड की बात करें या जो है मिजोरम की बात करते हैं तो वहाँ पे और अलग तरह के जंगल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं ह्यूमिड है तो कहीं पे जो है रोज जो है मुश्किल होता है। तो हर तरह से इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको हर जगह अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के मॉडिफिकेशंस मिलेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा रोल एंड टास्क है उसको देखते हुए अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, जैसे आर्मर्ड होती है, इन्फेंट्री होती है, आर्टिलरी होती है।
4: आपने हमें मोटे तौर पर बताया कि विभिन्न स्तरों पर जो आर्मी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, कमांड से लेकर आप उसके एकदम मूल इकाई सेक्शन तक गए थे, लेकिन उसके इतर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके संगठन के अंतर्गत आती हैं जो ऑपरेशनल लेवल पर कार्य करती हैं। जैसे हम सुनते रहते हैं दकदा इन्फेंट्री है, आर्म सर्विसेज हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए।
3: जो आर्मी होती है, आर्मी में आर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं
4: जी।
3: आर्म्स, कम्बैट आर्म्स हम उसको बोलते हैं जो एक्चुअली में डिप्लॉय होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं
4: जी।
3: इसके अलावा जो हमें सपोर्ट देते हैं इस पूरे कार्य में उनको हम सर्विसेज बोलते हैं।
4: बिल्कुल।
3: तो जब हम कम्बैट आर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्फेंट्री आते हैं
4: जी।
3: इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर, पैदल सेना
4: जी।
3: और ये आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा तादाद जो होती है इनकी होती है। फुट सोल्जर हैं, इनकी कैपेबिलिटी सबसे बड़ी ये है कि ये किसी भी तरह की टेरेन में काम कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में ये लोग जो है ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान है, मानव है, तो वो अपने आप को इतना ज्यादा जो है ढाल लेता है उस इलाके के हिसाब से कि वो कहीं पे भी ऑपरेट करने के लिए काबिल रहता है।
4: जैसा कि आपने खुद ही कहा था कि -50 से लेकर +50 तक आप लोग तैनात रहते हैं।
3: और हम लोग कहते हैं कि एक इन्फेंट्री मैन के लिए कभी कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, देयर इज नो ऑब्स्टिकल फॉर एन इन्फेंट्री पर्सन, ठीक है, उसके लिए कोई जगह ऑब्स्टिकल नहीं, वो हर जगह नदी नाले भी क्रॉस कर लेता है, कहीं भी जाए। तो हर जगह डिप्लॉयमेंट में सबसे आगे जो होता है इन्फेंट्री होती है, एंड राइटली हम इसको क्वीन ऑफ द बैटल भी बोलते हैं। जब भी हम देखेंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए, जब तक हमारे जवान खड़े होते हैं, ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तब तक उसको हम अपना कहते हैं
4: जी।
3: तो जैसे जो भी हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर जब तक हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट होती है, और ये डिप्लॉयमेंट इन्फेंट्री की होती है। इसी तरह से जब अगर हम ऑफेंसिव ऑपरेशन कोई लॉन्च करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जब तक जाके पैदल सेना का जवान झंडा गाड़ता है, खड़ा होता है, तभी वो विक्ट्री कहलाती है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है जो इन्फेंट्री की कहलाती है। इन्फेंट्री उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये नेवी के साथ ऑपरेट कर सकती है, एयरफोर्स के साथ ऑपरेट कर सकती है, और जैसे मैंने पहले बताया किसी भी तरह के टेरेन में काम कर सकती है। एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब असिस्टेंस दे दिया जाता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में है, और किसी और तरह का भी
4: प्राकृतिक आपदा के समय
3: जी, और या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे होता है, तो सबसे ज्यादा योगदान जो है इन्फेंट्री का होता है।
4: जैसा कि हमने सुनामी के दौरान भी सुना था कि आर्मी वालों ने बहुत लोगों की मदद की थी
3: जी। आपको हर जगह जो है जब भी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली इन्फेंट्री के होते हैं
4: जी।
3: हमारे देश में जो इन्फेंट्री है वो सबसे पुरानी मतलब मानी जाती है, और हमारे पास जो है तकरीबन 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं
4: जी।
3: जैसे आपने काफी नाम सुने होंगे, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, तो ये जो है रेजिमेंट्स होती हैं जिसमें कि हर रेजिमेंट में बटालियंस होती हैं
4: जी।
3: और ये बटालियंस जो होती हैं दरअसल यही जो है फॉर्मेशंस में जिस जो हमने कोर डिव देखी थी इसके अंतर्गत वो कार्य करती हैं। तो मैन पावर जो फोर्स होती है, जो ऑफेंसिव फोर्स मतलब फाइटिंग फोर्स होती है डिवीजन के अंदर या ब्रिगेड के अंदर, वो इन्फेंट्री की होती
4: है। कर्नल साहब एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने बताया मराठा रेजिमेंट होती है, पंजाब रेजिमेंट होती है, तो क्या इनके रेजिमेंट्स के जो नाम होते हैं वो भारत के प्रदेशों पर ही रखे गए हैं, उसमें उन प्रदेशों के लोग ही रहते हैं ज्यादातर?
3: तो मद्रास रेजिमेंट में जैसे जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसमें चार स्टेट जो है केरला, कर्नाटका, आंध्रा एंड तमिलनाडु, उसके जो सोल्जर्स होते हैं इन चार स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। सिख रेजिमेंट में जैसे देखेंगे आपके सरदार जो हैं सिख पाए जाते हैं जो कि पंजाब के इलाके के हैं। इसके बारे में हम एक बार और डिटेल में बताएंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत ही मतलब ये बहुत पुराना, सबसे पुराने मतलब जो सोल्जर्स हैं उनकी अपनी बहुत ही मतलब हिस्ट्री बहुत ही अलग है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश का जो सर्वोच्च वीरता के लिए जो हमारा सम्मान मिलता है परमवीर चक्र, वो सबसे ज्यादा इन्फेंट्री को ही प्राप्त हुए हैं अभी तक। तो इसके बारे में हम एक बार बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। वापस आते हैं तो आर्म्स में जो सेकंड होता है कम्बैट आर्म्स में हम बोलते हैं आर्मर्ड कोर होती है। आर्मर्ड कोर जो है बेसिकली जो टैंक्स होते हैं
4: जी,
3: टैंक्स से इक्विप्ड होती है, उनके पास टैंक्स होते हैं, और ये जो हमारी स्ट्राइक फोर्सेस होती हैं, स्ट्राइक फोर्सेस मतलब जो ऑफेंसिव फोर्सेस रहती हैं, स्ट्राइक कोर
4: आक्रमण करती है, लड़ाई करती हैं,
3: उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, उसका सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है टैंक्स की डिवीजन होती है वो होता है। ये सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशन में ही नहीं काम आती, डिफेंसिव ऑपरेशन में भी जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, ताकि ये दुश्मन के जो टैंक्स होते हैं उनके साथ उनसे अपने देश को बचाने में काफी इनका योगदान रहता है। जैसे कि टैंक होता है, टैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसके पास सबसे ज्यादा फायर पावर होती है और मोबिलिटी होती है, मतलब वो एक किसी भी इलाके में ऑपरेट कर सकते हैं
4: जी।
3: और साथ में जो है उनका आर्मर प्रोटेक्शन होता है, तो इन तीन चीजों की जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टैंक्स की, जिसके कारण वो काफी जल्दी किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं और फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि जब टैंक्स मूव करते हैं तो टैंक्स में क्या होता है कि मैन पावर काफी कम होती है
4: जी,
3: तो मैन पावर प्रोवाइड करती है उसको इन्फेंट्री
4: जी।
3: अब क्या होता था कि टैंक की और इन्फेंट्री की जो आपस की जो स्पीड है वो मिसमैच हो जाती है, क्योंकि टैंक तो काफी तेजी से निकल जाता था, इन्फेंट्री पीछे रह जाती थी
4: जी।
3: तो ये फिर एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम इन्फेंट्री को भी मोबिलाइज करें
4: जी।
3: उसमें क्या हुआ कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स बनाए गए
4: जी,
3: उसको हम आजकल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बोलते हैं
4: जी।
3: तो ये मैकेनाइज इन्फेंट्री जो है, इन्फेंट्री को मतलब आपने प्रोटेक्शन के साथ गाड़ी दे दी है, व्हीकल दे दिया है, जिसकी की मोबिलिटी यानी कि मोबिलिटी जो है वो टैंक्स के साथ मैच करती है
4: जी।
3: तो इनको हम मैकेनाइज इन्फेंट्री बोलते हैं।
4: इस पर भी हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे बिल्कुल, बाद बिल्कुल, में मैकेनाइज्ड
3: इन्फेंट्री कि वो ये कैसे आए और किस तरह से इनके पास इक्विपमेंट होते हैं और कैसे ये इन्फेंट्री क्या कार्य करते हुए मतलब कैसे किस तरह से इनको मोबिलिटी मिलती है और कैसे मतलब आमर के साथ ये लोग काम करते हैं, ये काफी दिलचस्प रहेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो कम्बैट आर्म्स में आर्टिलरी का नाम आता है, आर्टिलरी जो होता है वो उसके पास गन्स होती हैं, आर्टिलरी गन्स होती हैं, आपने काफी गन्स के बारे में सुना होगा, बोफोर्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो है मैसिव फायर पावर प्रोवाइड करती हैं ऑपरेशंस के दौरान, यानी डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी, दोनों में जो है फायर पावर प्रोवाइड करता है। इनके पास जो है काफ़ी अलग अलग तरीके की गन्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, एंड इवन जो यूएवीज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, सर्विलेंस सिस्टम होता है, मिसाइल्स होती हैं, ये सारे के सारे जो वेपन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो आर्टिलरी के तहत आते हैं।
4: कर्नल साहब, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुल मिला के जो इन्फेंट्री के पास असला होता है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री देखता है या उसका जिम्मेदार रहता है?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक अलग आर्म है
4: जी,
3: अलग फॉर्मेशन है, और इन्फेंट्री एक अलग फॉर्मेशन है। आप इस तरह से समझिए कि जैसे युद्ध के मैदान में हम हैं और हम जो है एक डिफेंस इख्तियार करके बैठे हुए हैं, अगर उस डिफेंस के ऊपर इन्फेंट्री ने डिफेंस लिया हुआ है और उसको जो है फायर पावर यानी कि उसके सपोर्ट के लिए जो है आर्टिलरी जो है शेलिंग से काम करती है। जैसे आपने काफ़ी पिक्चरों में भी देखा होगा कि जब मूवमेंट हो रहा होता है तो ऊपर से गोले आ रहे होते हैं, तो वो आर्टिलरी प्रोवाइड करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सारी अलग अलग होती हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अलग है, इन्फेंट्री अलग है, आर्टिलरी अलग है, आर्मर्ड अलग है। मैं समझ सकता हूँ कि एक आम भाषा में जब हम बात करना चाहते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कि ये क्या है, क्योंकि मूवीज में भी अलग अलग तो नहीं दिखाते, वो सब कुछ एक ही जैसा दिखाते हैं। चलते हैं आगे बढ़ेंगे जब हम
4: जी,
3: तो कहीं ना कहीं इन सब का जिक्र आएगा तो हम और अच्छे एग्जांपल्स देके जो है इसको
4: समझने की कोशिश करेंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम आगे और देखें जो हमारे आर्म्स एंड सर्विसेज होते हैं उसमें इंजीनियर्स का नाम आता है। इंजीनियर जो है कम्बैट सपोर्ट आर्म होता है, इनका जो कार्य होता है वो होता है कि हमारी जो सेना होती है उसके लिए हर तरह के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको क्लियर करें, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए मतलब रास्ता प्रदान करें।
4: किस तरह के ऑब्स्टिकल्स?
3: देखिए ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं जैसे माइनफील्ड होते हैं
4: जी,
3: जब भी ऑपरेशंस होने वाले होते हैं तो मतलब जहां पे भी डिफेंसेस होती हैं उसमें माइनफील्ड लगे होते हैं, तो उस माइनफील्ड को क्लियर करना और उसमें से मतलब जो है व्हीकल सेफ लेन बनाना, इन्फेंट्री सेफ लेन बनाना, ये इंजीनियर्स का कार्य होता है और ये बहुत ही दुर्गम कार्य होता है, इसमें मतलब सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसी तरह से जो है और ऑब्स्टिकल्स अगर दुश्मन ने लगाए हैं किसी तरह से तो उनको पूरा क्लियर करना, अगर कोई ब्रिज की ज़रूरत है तो ब्रिज लॉन्च करना, ब्रिज टूट गया तो उसको दोबारा बनाना। आपने इवन देखा होगा सिविल में भी काफ़ी जो है सुना होगा कि काफ़ी जहाँ पे भी
4: ब्रिज जी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सुनाई दिया था।
3: करेक्ट, तो उसमें जो है इनकी कैपेबिलिटी होती है, ब्रिज लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रहती है। इसके अलावा जब दुश्मन हमारी तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, माइन फील्ड्स लगाना, और अगर ब्रिजेस हैं तो उसमें अगर आपको कभी हो सकता है कि उस ब्रिज को जो है ध्वस्त करना पड़े तो वो कार्यवाही भी इंजीनियर्स करते हैं। एंड ये सिर्फ एक काम नहीं है इनका, और इसके अलावा भी जो है हम जब बॉर्डर एरिया में होते हैं तो हमारे जितने शेल्टर्स जहाँ पे हम रहते हैं, शेल्टर्स बनाना, बंकर्स बनाने में जो है मदद करना, और इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ये काफ़ी जो है कार्य इनके रहते हैं जिसमें योगदान रहता है। पीस टाइम में भी जो इंजीनियर्स हैं, जब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में। फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में जो आपको बोट्स दिखती हैं चलती हुई जिससे कि जाके बचाया जाता है, वो सारे इंजीनियर्स के पास होती हैं और यही इनका एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो एड टू सिविल अथॉरिटी के दौरान के साथ जो है जो ये करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें अदिति तो और भी काफ़ी सारे हम आर्म्स एंड सर्विसेज होते हैं, जैसे सिग्नल्स होते हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स होता है जो कि कंप्लीट जो कम्युनिकेशन सेटअप होता है उसको प्रोवाइड करता है। एंड इसी तरह से जो है आर्मी एविएशन कोर होती है जिसमें हैप्टर यूनिट्स होती हैं, जिसमें कि एयर ऑब्जर्वेशन का कार्य वो करते हैं, कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, आर्टिलरी लिफ्टिंग का रहता है, तो ऐसे काफ़ी सारे उनके कार्य रहते हैं। देन ईएमई है जो कि इक्विपमेंट जो हमारा होता है, व्हीकल जो होता है उसको मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उनकी होती है। सप्लाई कोर है, ऑर्डिनेंस कोर है जो कि हमारे लिए राशन और जो ज़रूरतें होती हैं जैसे वेपन्स एमुनेशन की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, वो ऑर्डिनेंस कोर की जिम्मेवारी होती है उसको प्रदान करना, और राशन जो है वो एसी सप्लाई का कार्य रहता है। तो ये मोटे तौर पर जो है हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन का कि आर्म्स एंड सर्विसेज हैं।
4: कर्नल साहब मतलब जैसे किसी फिल्म में कोई एक सीन देखते हैं तो सीन तो एक मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी विषमताएं और जटिलताएं हैं वो अब बात करके समझ में आ रही है। कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
5: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा घर। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
6: हमारी सेना हमारा गर्व। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के विविध कार्यक्रम। ये है देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ट पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी के असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूँ। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर रही हूँ।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पर साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब जिंदाबाद।
3: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय।
5: कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
4: इंकलाब जिंदाबाद,
5: वंदे
4: मातरम,
5: समाजवाद।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है और हम अपनो बयान या जेल में नहीं सीधो सेशन जज की अदालत का मैदान का इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कार वो ऐसे ही आगे बढ़तो जाएगो और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बलि बलि जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सच। आखो देश भगत सिंह जी का साथ हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अब 10 जून 1929 का दिन फैसला आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, एक बात है धनलाल।
3: आओ थोड़ा इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है।
4: हाँ।
3: हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भई है। हाँ,
4: और
3: ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में।
4: हाँ।
3: ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भी सीधी हुए।
4: अरे?
3: और वहाँ कहीं पे हो ना।
4: हाँ।
3: इनके साथ साथ सारा कैदी उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितना परेशान कर रखा।
4: तुम सही कह रहा हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाई रखे।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो। ठीक है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि हमारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। कोर बिन ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी के पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटू केशव दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पाई गया था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जा रही थी। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। यो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची। जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार तो चाह रही है कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यहाँ हड़ताल तो चली रही है। और हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी दिया जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह बान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी देर मटका के,
0: थोड़ी देर मटका उनके।
5: है बस है, सब सब इन हड़तालियों ने कैदियों ने तो सारे सारे दूध का मटका फोड़ दिया इन्हें। अरे इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा। इनमें से किसी को कुछ हो गया तो ऊपर क्या जवाब देंगे?
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्र नाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: नगर, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो, मैं उनमें सफल हो तो जा रही हूं और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है, और ये तो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी, हाँ क्रांतिकारी है,
1: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त।
2: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माए विनय जोश हुई। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
3: इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: भगत सिंह,
2: सुखदेव, राजगुरु। कार्यवाही शुरू की जाए।
3: जज साहब, देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा उदन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा, जदे अपनी जमीन और अपना आसमान होएगा। इनकलाब
4: जिंदाबाद,
3: वंदे
4: मातरम,
3: साम्राज्यवाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसलो आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: बेटा भगत?
1: हाँ पिताजी।
0: मैंने सुने तुम्हारे फांसी हुआ वाली।
1: हाँ पिताजी, तुमने सही सुनी, हमारे फांसी हुआ वाली है।
0: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा मां ने बाप, हरो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली रही आग।
1: पिताजी, म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
0: ठीक है भगत, वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
0: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम।
3: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ, तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मार हो रही है, भगत सिंह की मार हो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आखो देश याद रखेगा।

धोनी के कौन टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी ले। लो फांसी को पैगाम है आपके मालूम, भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरी गई कि उनके एक दिन पहला फांसी पे चढ़ावों को हुक्म मिला। अखो देश भगत सिंह के बचावा की प्रार्थना करी, माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम मारी भी नम।

0: ये था मार्च खेल शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे संस्थान भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। माझगांव डॉक ने हमें विशाल युद्धपोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक

0: ऐसा शिपयार्ड जिसने छोटे बार्ज निर्माण यार्ड से शुरू होकर आधुनिक युद्धपोत निर्माण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए चलते हैं गोवा और जानते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की कहानी। दादू।
1: हाँ बेटा।
0: कितनी सारी छुट्टियाँ हमने गोवा में बिता ली है ना। और कितनी सारी जानकारी आपने मुझे दी है अब तक।
1: हाँ बिल्कुल दी है
0: दादू, थैंक यू सो मच आप जो मेरे साथ हैं।
1: वो तो मैं हमेशा साथ हूँ बेटा।
0: अच्छा दादू, अब तक आपने दो बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
1: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्ध पोत, गश्ती पोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्ती पोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
0: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
1: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
0: सही कहा आपने दादाजी, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
1: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
0: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है।
1: हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी ज्वारी जो सदियों से बह रही है।
0: ज्वारी नदी?
1: हाँ हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
0: अच्छा।
1: जाने कितने नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
0: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड और पास ही आपकी ज्वारी नदी।
1: हाँ बेटा, ये ज्वारी नदी गोवा की जीवन रेखा है और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
0: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
1: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
0: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
1: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
0: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
1: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
0: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
1: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
0: दादू, ये नाम तो काफी अलग लगता है।
1: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
0: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
1: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
0: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
1: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
0: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
1: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जुआरी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
0: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
1: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
0: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
1: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
0: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
1: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
0: ठीक है,
1: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
0: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
1: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
0: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
1: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
0: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
1: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
0: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
1: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है। यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यही किया जाता है।
0: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ, बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
1: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
0: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
1: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
0: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
1: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे तब GSL की उपलब्धियां भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
0: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
1: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
0: दिमाग में?
1: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
0: सही कहा दादाजी।
1: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है, और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
0: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
1: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है। यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है।
0: और यहीं पर CAD काम आता है।
1: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्रिआयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
0: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
1: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
0: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
1: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
0: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
1: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती है। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
0: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
1: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्धपोत बनाती हैं। यदि किसी एक हिस्से की माप भी गलत हो जाए तो आगे पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधुनिक शिपयार्डों में मिलीमीटर स्तर की सटीकता रखी जाती है।
0: अच्छा, हम बार बार रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
1: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है। यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
0: मतलब ये बिल्कुल कार चलाने जैसा होता है?
1: हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाज को चलाना कहीं अधिक जटिल होता है बेटा। समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, कोई लेन नहीं होती, इसलिए कप्तान को रडार, GPS, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और संचार प्रणालियों की सहायता लेनी पड़ती है।
0: दादू, ये रडार आखिर काम कैसे करता है?
1: रडार बेटा रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे किसी जहाज, द्वीप या अन्य वस्तु से टकराती है तो वापस लौटती है। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है, और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
0: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
1: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
0: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
1: बहुत अलग। पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं, यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
0: और जीएसएल भी इसी बदलाव का हिस्सा है।
1: हाँ बिटिया, इसीलिए जीएसएल केवल जहाज नहीं बना रहा बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
0: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
1: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगें कम परावर्तित हों। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
0: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
1: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
0: दादू, इतने बड़े युद्धपोत में रडार, कंप्यूटर, संचार प्रणाली और इतने सारे उपकरण चलते रहते हैं, इन्हें बिजली कहाँ से मिलती है?
1: बिल्कुल सही सवाल है बेटा। युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता बिजली घर होता है बेटा।
0: ऐसा?
1: उसमें शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं जो लगातार बिजली पैदा करते हैं। इसी बिजली से रडार, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, हथियार प्रणालियां और अनेक अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। आजकल कई आधुनिक युद्धपोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
0: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
1: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
0: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है?
1: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
0: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
1: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
0: सो तो है दादाजी।
1: बिल्कुल बढ़िया, समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
0: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
1: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
0: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
1: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना, फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
0: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
1: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
0: दादू, जीएसएल खासतौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
1: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
0: तो क्या ये युद्धपोतों से छोटे होते हैं?
1: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
0: दादू, मैंने पढ़ा था कि GSL स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
1: हाँ, सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्यूमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
0: दादू, आपने कहा था कि GSL की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
1: हाँ हाँ बेटा, कहा था।
0: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
0: दादू, क्या GSL में अनुसंधान भी होता है?
1: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
0: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
1: देखो बिटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहां हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
0: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि GSL अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
1: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहां अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
1: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
0: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
1: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहां वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
0: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
1: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और GSL ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
0: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
1: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे, GSL द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
0: और इसमें होता क्या है?
1: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है, कहां जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिम्युलेटर में कराया जाता है।
0: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
1: हाँ हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
0: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
1: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए GSL ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
0: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
1: हाँ हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
0: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये GSL का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
1: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। GSL ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
0: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
1: हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
0: सो तो है।
1: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
0: वाव दादू, मतलब GSL ने केवल जहाज ही नहीं बनाए बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिप लिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
1: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिप लिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
0: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
1: अरे बुद्धू, शिपलिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
0: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
1: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
0: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
1: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
0: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
1: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
0: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
1: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई है। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
0: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
1: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
0: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
1: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी, और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी। पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा, और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
0: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
1: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण GSL केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
0: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
1: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो चलो।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: देश के संस्थान। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
2: तारीख मध्य प्रदेश की धरती ने एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चुंगुल से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया।
1: मैं जानती हूँ आज तुम मध्य प्रदेश की धरती का गुणगान क्यों कर रहे हो।
2: अच्छा, क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि तुम मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में हो, जहाँ 3 जून 1891 को राय साहब त्रिलोक्यनाथ मुखर्जी के घर एक महान क्रांतिकारी अवनीनाथ मुखर्जी ने जन्म लिया था।
2: बिल्कुल ठीक कहा।
1: अवनीनाथ के बचपन में किसने सोचा था कि आगे चलकर वह महान क्रांतिकारी बनेगा?
2: हाँ तारीख, अवनीनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताता हूँ। अवनीनाथ ने वस्त्र उद्योग में स्नातक उपाधि प्राप्त की और इस कला के उच्च अध्ययन के लिए पहले वे जापान और फिर जर्मनी जा पहुँचे। जर्मनी में उन दिनों भारतीय क्रांति की फसल पनप रही थी, क्योंकि वहाँ का स्वतंत्र वातावरण इसके लिए काफी अनुकूल था। अनेक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। अवनीनाथ उनके संपर्क में आए तो फिर पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए, ऐसे कि उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का संकल्प ही ले लिया।
1: हाँ, कुछ ही समय में वे क्रांतिकारी श्रृंखला की प्रमुख कड़ी बन गए। जर्मनी के प्रवासी क्रांतिकारियों के संपर्क से भारत में पहुंचने के लिए हथियारों का प्रबंध करना अवनीनाथ का प्रमुख दायित्व था।
2: ब्रिटिश शासन के खुफिया विभाग ने उन्हें भयानक क्रांतिकारी की संज्ञा दे रखी थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जासूसों का एक पूरा दल उनके पीछे छोड़ दिया था। पर अवनीनाथ जासूसों की जासूसी करने की कला में निपुण थे। उन्हें कोई ब्रिटिश जासूस जानता ही नहीं था कि आखिर अवनीनाथ मुखर्जी नाम का क्रांतिकारी कौन सा है। इसके चलते कई बार वे अपने लिए तैनात जासूसों के साथ ही सफर कर चुके थे और कोई ब्रिटिश जासूस जान ही नहीं पाया था कि उनके साथ सफर करने वाला व्यक्ति वही अवनीनाथ मुखर्जी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बेचैन है।
1: अपने दायित्व की पूर्ति के सिलसिले में सन 1912 में जब अवनीनाथ भारत लौटे तो अपने शक की जाँच के लिए ब्रिटिश जासूसों का एक दल भी उनके पीछे पीछे भारत आया। कुछ दिन ब्रिटिश जासूसों की आंखों से ओझल रहने के लिए अवनीनाथ ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय में प्राध्यापकी स्वीकार कर ली। प्राध्यापकी तो केवल बहाना थी, उद्देश्य था वृंदावन को कुछ समय के लिए आश्रय स्थली बनाना। उचित अवसर पाकर अवनीनाथ वृंदावन से गायब होकर जापान जा पहुँचे। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार इकट्ठे करने की योजना अभी अधूरी जो थी।

0: जापान से शस्त्र विक्रेताओं से सौदा करके अवनीनाथ जब जापान से भारत के लिए जहाज पर सवार हुए तो साथ ही एक ब्रिटिश जासूस भी उनके साथ उस जहाज में सवार हो गया। जिस केबिन में अवनीनाथ यात्रा कर रहे थे वह जासूस भी उसी केबिन में उनका सहयात्री बन करके उनसे मित्रता गाढ़ने की गरज से तरह तरह की बातें करता रहा। यूं तो अवनीनाथ के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, पर जापान के शस्त्र विक्रेताओं के कुछ पते जरूर एक कागज पर लिखे हुए थे। जब वह सहयात्री नहाने के लिए स्नान गृह में गया तो अवनीनाथ ने पते वाला कागज शैया के मोटे गद्दे के नीचे दबा दिया और निश्चिंत हो गए।
1: पर जासूस ने अवनीनाथ की तलाशी लेने के लिए एक चाल चली। जब जहाज सिंगापुर पहुंचा तो वहां बंदरगाह पर भारी सरगर्मी थी। अवनीनाथ को शक तो हुआ पर वे जासूसों की चाल समझ नहीं पाए। फिर वे अपने पास का एकमात्र आपत्तिजनक पते वाला कागज अपने कब्जे से हटा ही चुके थे, सो निश्चिंत बने रहे। ब्रिटिश जासूसों ने केबिन में दवा छिड़कने के बहाने अवनीनाथ मुखर्जी और उनके सहयात्री को केबिन से बाहर निकाला और तलाशी का काम शुरू कर दिया।
0: आखिर तलाशी में जापान के शस्त्र विक्रेताओं के पते वाला कागज जासूसों के हाथ लग ही गया। ब्रिटिश जासूसों ने समुद्री तार द्वारा जापान से इस बात की पुष्टि कर ली कि अवनीनाथ मुखर्जी उस कागज पर लिखे पतों ठिकानों पर हथियारों की खरीद के लिए पहुंचे थे। अवनीनाथ मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अवनीनाथ ने लाख सफाई दी कि उस कागज से उसका कोई वास्ता नहीं है। फिर वह कागज उनके पास से बरामद भी नहीं हुआ है बल्कि सहयात्री के गद्दे के नीचे से निकला है, पर उनकी कोई दलील नहीं सुनी गई। जापान के शस्त्र विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी उनके विरुद्ध थी। उन्हें सिंगापुर से गिरफ्तार करके भारत लाया गया।
1: भारत पहुंचने पर गिरफ्तारी की अवस्था में अवनीनाथ कब और कैसे ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से निकल भागे कोई नहीं जान पाया। वह रहस्य ही बना रहा। इधर भारत में पुलिस इस मामले की तहकीकात और अवनीनाथ की पुनः गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी रही। उधर अवनीनाथ मुखर्जी सबको चकमा देकर हॉलैंड जा पहुंचे।

0: भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी यह घटना कम विस्मयकारी नहीं थी कि भारत से गायब होकर के हॉलैंड में अवनीनाथ मुखर्जी न केवल द्वितीय कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर भारतीय प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, बल्कि कुमारी रोशा फिटिंगफ के साथ प्यार की पेंगे भी बढ़ा रहे थे। आखिर हॉलैंड में ही रहते हुए उन्होंने रोशा फिटिंगफ से 1920 में विवाह कर लिया।
1: सन 1922 में अवनीनाथ मुखर्जी बर्लिन में थे और अपने पुराने क्रांतिकारियों के साथ भारत की आजादी की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। हॉलैंड से गायब होकर वे कब बर्लिन पहुंचे, कोई नहीं जानता था। बर्लिन में उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे, उनमें सुरेंद्र कर, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रमुख थे। अवनीनाथ मुखर्जी इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे।
0: बर्लिन में मौजूद क्रांतिकारियों ने यह महसूस किया कि वह समय आ गया है जब उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत पहुंचकर विभिन्न प्रांतों में गुप्त संगठनों द्वारा विद्रोह की भूमिका बनाए। इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल हुलिया बदलने में माहिर हो, वरन आवाज बदलकर विभिन्न प्रांतों की बोलियों के लहजे में भी बात कर सके। सभी क्रांतिकारियों ने एक मत से इसके लिए अवनीनाथ मुखर्जी का चुनाव किया, क्योंकि हुलिया और आवाज बदलने में उन्हें इतना कमाल हासिल था कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। कई अवसरों पर वे अपने इस हुनर का लोहा मनवा चुके थे।
1: आखिर अवनीनाथ मुखर्जी अपने साथियों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरे। अत्यंत कुशलता के साथ उन्होंने साथियों द्वारा सौंपा गया दायित्व पूरा किया। मद्रास, गया, कलकत्ता और ढाका नगरों में उन्होंने क्रांति की संरचना पूरी सफलता के साथ नियोजित की। अपना काम पूरा करके वे सन 1924 में यूरोप के लिए रवाना हो गए।
0: रूस के मास्को नगर में रह करके उन्होंने भारत के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें आजादी के लिए भारत का दावा पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। रूसी प्रवास में ही भारत की आजादी के चिंतक, भारत माता के सपूत अवनीनाथ मुखर्जी ने 28 अक्टूबर 1937 को अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनी और अपना नाम हमेशा के लिए भारत के महान सपूतों की सूची में दर्ज करा दिया।

श्रोताओं, हमारी आजाद जमी, आजाद आसमां की दास्तां, हमारे तन और हमारे मन की स्वतंत्रता की कहानी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद में।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। लीजिए प्रस्तुत है नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह। परिक्रमा के आज के सफर पर चलिए मेरे साथ।

स्पिक मैके की ओर से आरसीवीपी नरुन्ना प्रशासन अकादमी के सभागार में बुधवार को पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र की प्रस्तुति हुई। बेटे स्वरांश मिश्र उनके साथ वोकल्स में संगत के लिए आए थे। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने राग मधुवंती में दो बंदिशें सुनाई। हमेशा की तरह सुरों, रागों, ताल, रियाज पर श्रोताओं के साथ बातचीत शुरू हुई। इस दौरान एक सवाल आया, आपके परिवार में 350 सालों से संगीत की परंपरा है, बनारस घराने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आज भी आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहा है, सुरों की साधना हो सके इसके लिए सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं? इस पर पंडित साजन मिश्र ने कहा कि समाज और खुद की सेहत का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वाणी और नाड़ी का ख्याल रखें। वाणी और नाड़ी, वाणी में सुर होगा तो आपसे कोई उलझेगा नहीं, आपका सोशल सर्कल दुरुस्त होगा, सब आपको चाहेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। नाड़ी का ख्याल रखेंगे तो समय पर खाएंगे, प्राणायाम करेंगे, सेहत नहीं बिगड़ेगी।

सभा आगे बढ़ी। एक बच्ची ने पूछा, गुरुजी आवाज़ धीमी हो तो गायकी के लिए उसमें ताकत कैसे लाई जाए? जवाब आया, पिज्ज़ा बर्गर खाना बंद करो, बादाम दूध पियो, आधे घंटे की बजाय रियाज 2 घंटे सुबह करो, 2 घंटे शाम करो। आज की पीढ़ी के पास वक्त कम है, हमें धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय के साथ शास्त्रीय संगीत की परंपराओं में भी बदलाव आए हैं। पहले दरबारों में जो बंदिशें 2-2 दिन चलती थीं, वे धीरे धीरे 1.5 से 2 घंटे की हुईं और अब हम उन्हें 40 मिनट तक भी गा लेते हैं। गायकी की परंपरा का पूरा पालन आज भी किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की साधना की ताकत का एहसास इस सभा के श्रोताओं को तब हुआ जब पंडित साजन मिश्र ने एक श्रोता की गुजारिश पर राग मेघ गाया। बंदिश गाई, कजरा कारे कारे लागे अति प्यारे, घनघोर घटा छाई पवन चलत सननन, सावन तूर मन भये अति मतवारे, कजरा कारे कारे। सुबह से भीषण धूप झेल रहे भोपाल में ये बंदिश शुरू हुई। 20 मिनट में ऐसी तेज बारिश हुई जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। स्वरांश ने इस मौके पर श्रोताओं से आग्रह कर अघोर का पाठ किया। पंडित साजन मिश्र ने इसे नाम दिया अघोरी चालीसा।

तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे नगर की सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। आप इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद, अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहाँ 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान के दूसरे दिन विख्यात कर्नाटक संगीत गायिका और संगीतकार सुधा रघुरामन ने अपने साथियों के साथ अपने गायन की प्रस्तुति दी।
1: प्रस्तुति का आरंभ तुलसीदास द्वारा रचित गाये गणपति, जो द्विरागा में रचित है, राग वासंती और राग हंसध्वनि का मिलन आप सुनेंगे। दोनों के नोट्स एक ही लाइन में बार बार लूप जैसे दोहराते रहेगा, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे आउटस्टैंडिंग सुविख्यात अकम्पनिस्ट रघु जी, एक और बार बांसुरी पर तालियां, चंद्रू जी, चंद्रशेखर जी, शंभू जी ऑन द तंबुला तबला, और आप सभी की। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं होम ग्राउंड है, ये मेरा होम ग्राउंड है, मोर देन दिल्ली।

संत नारायण तीर्थ जी द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत रचना, जो राग बागेश्री और ताल खंड चापू या जप ताल जो हिंदुस्तानी शैली में कहा जाता है पर निबद्ध है। कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सुंदर रचना और डिस्क्रिप्शन है इसमें। भाग्यश्री राग और ताल खंड चापू संत नारायण तीर्थ द्वारा रचित गोविंदम इह गोपिका नंद कंदम, ये संस्कृत भाषा में है। क्योंकि हम भाषाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहली प्रस्तुति तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी और अब संस्कृत में।

श्रोताओं, ये थी आज की रेडियो रिपोर्ट। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, सुन रहे हैं देश का चैनल देश के लिए। हमारी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी कुमारी मूलर और सेवियर दंपत्ति के साथ यूरोप भ्रमण करने गए। वहां स्विट्जरलैंड और जर्मनी भ्रमण कर वे एल्प्स पर्वत के मनोरम स्थानों को देखकर मुग्ध हुए थे। उन्हें अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश की याद आ रही थी। उनका मन हुआ, क्यों ना हिमालय की सुंदर घाटी में एक आश्रम बनाया जाए। परवर्ती काल में सेवियर दंपत्ति की सहायता से उनका यह सपना पूरा हुआ। अल्मोड़ा के पास मायावती आश्रम आज भी स्वामी जी की स्मृति संजोए स्थित है।
1: जर्मनी से प्रोफेसर डायसन के आमंत्रण पर स्वामी जी उत्तरी जर्मनी के कील बंदरगाह गए। वहां से पुनः इंग्लैंड वापस आए। प्रोफेसर डायसन स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। वे और कुछ दिन स्वामी जी के संग बिताने के लिए उनके साथ लंदन आए।
0: लंदन वापस आकर स्वामी जी नए उत्साह के साथ व्याख्यान देने लगे। इस बार वे वेस्ट मिनिस्टर अंचल में ठहरे, जहां गुडविन भी अमेरिका से आ गए और स्वामी अभयानंद भी उन्हीं के साथ रहने लगे। इस बार स्वामी जी ज्यादातर वेदांत दर्शन पर बोले। उन्हें राजयोग और ध्यान के विषय में भी बोलना पड़ता था।
1: प्रोफेसर डायसन प्रायः स्वामी जी के पास आते और वेदांत के गूढ़ अर्थ समझते। अब उन्हें समझ में आ गया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण लेकर भारतीय शास्त्रों का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। उसे समझने के लिए पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा, संस्कृति तथा राजनीति का आवरण उतारकर प्राच्य के खुले आकाश के नीचे खड़े होना होगा। इधर प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ भी स्वामी जी का पत्र व्यवहार चल रहा था। इस तरह इन तीन मनीषियों के आपसी सहयोग से उस समय वेदांत प्रचार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था।
0: उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का गहन अध्ययन किया और बाइबिल का गूढ़ अर्थ समझा। इसके फलस्वरूप पाश्चात्य विचार जगत ने वेदांत में एक नया और पूर्ण जीवन दर्शन का आविष्कार किया था। स्वामी जी के भाषण केवल शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि शब्दों के माध्यम से शक्ति संचारित होकर श्रोताओं को अभिभूत कर देती थी। सारे व्याख्यान वे बिना तैयारी के ही देते थे।

0: उन दिनों स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त इंग्लैंड में पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने उस काल का स्मरण करके लिखा है कि
1: व्याख्यान शुरू होने के पहले तक स्वामी जी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। मंच पर चढ़ते समय गुडविन उनके कानों में उस दिन के प्रवचन का विषय बता देते थे। उस समय उनके चेहरे पर एक अपूर्व परिवर्तन आता, वे एक अलग ही व्यक्ति बन जाते, जैसे दैवीय प्रेरणावश भाषण शुरू कर देते। बाद में आशुलिपिक गुडविन जब उन्हें उनके भाषणों को लिखकर दिखाते तो वे अवाक हो जाते और कहते,
2: गुडविन ये मेरे भाषण है, मैंने कहा था ये सब, तुमने गलती तो नहीं की।
3: उन दिनों स्वामी जी का भाषण सुनने अनेक विद्वान आते थे जो स्वयं भी भाषणकार थे। उन लोगों ने बाद में कहा था कि वे स्वामी जी की भाषण शैली का अनुकरण करने लगे थे। गंभीर विषयों को सरल बनाकर समझाने में स्वामी जी का जोड़ नहीं था।
0: अमेरिका तथा इंग्लैंड का कार्य सुव्यवस्थित हुआ देख अक्टूबर से ही स्वामी जी के मन में भारत लौटने का विचार हो गया और पत्रों एवं वार्तालापों के दौरान उन्होंने अपनी ये इच्छा घनिष्ठ मित्रों के सम्मुख व्यक्त भी की। अतः ये तय हुआ कि स्वामी जी गुडविन और सेवियर दंपत्ति के साथ भारत जाएंगे। गुडविन इंग्लैंड से ही जहाज में जाएंगे और समुद्र यात्रा कम करने के लिए स्वामी जी और सेवियर दंपत्ति स्थल पथ से इटली के नेपल्स तक जाएंगे और वहां से जहाज में सवार होंगे।
3: नॉर्थ जर्मन लॉयड कंपनी के एक नव निर्मित जहाज का टिकट खरीदा गया जो 30 दिसंबर को नेपल्स से कोलंबो जाने वाला था। प्रिंस रीजेंट लियोपोल्ड जहाज में स्थान मिला। सेवियर दंपत्ति स्थायी रूप से भारत में ही निवास करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्थायी व अस्थायी सभी संपत्ति बेच दी। मिस मूलर थोड़े दिनों बाद अपनी सेविका के साथ भारत आने वाली थी। मिस मूलर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए धन देने का वादा किया था। स्वामी जी ने मन ही मन सोच रखा था कि मार्गरेट नोबल को भारत बुलाकर नारी विद्यालय का भार उन्हें सौंपेंगे।
0: सन 1896 ईस्वी के नवंबर दिसंबर में सूखे के फलस्वरूप भारत में अकाल पड़ा। इसकी खबर अखबारों में पढ़कर स्वामी जी का मन अकाल पीड़ितों के लिए रो पड़ा। उन्होंने कुछ पैसे इंडियन मिरर को भेजे। राहत कार्य के लिए कुमारी एमलिन साउटर ने भी धन दिया। अतः ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार भावी रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का सूत्रपात हुआ था।

0: इधर श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी के पत्रों से उनके स्वदेश वापस जाने की खबर जानकर लिखा कि कलकत्ते में स्थायी मठ की स्थापना के लिए वे धन देना चाहती हैं। स्वामी जी ने तत्काल वो धन स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद उन्होंने श्रीमती बुल से सहायता लेकर बेलूर मठ की स्थापना की।
1: लंदन के छात्र छात्राओं को जब ज्ञात हुआ कि स्वामी जी स्वदेश लौट रहे हैं तो वे दुखी हो गए। स्टर्डी महोदय के नेतृत्व में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के पूर्व रविवार 13 दिसंबर को रॉयल सोसाइटी ऑफ पैटर्न्स इन वाटर कलर्स के भवन में उस दिन जगह कम पड़ गई और स्वामी जी भी भारी मन लिए वहां उपस्थित हुए। श्री एरिक हैमंड ने लिखा है,
2: वो लंदन का एक रविवार था। दुकानों के द्वार बंद थे, व्यापार वाणिज्य स्थगित थे और महानगर के राजमार्ग, जो वाहनों से कोलाहल पूर्ण रहते हैं, कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांत थे। लंदनवासी रविवार की अपनी विशिष्ट वेशभूषा में शांत बल्कि मौन चर्च तथा प्रार्थना भवन की ओर चले जा रहे थे। जिन स्वामी जी का आगमन उनके मित्रों के हृदय में गहरा स्थान बना चुका था, आज अपराह्न वे लोग उन्हें अलविदा कहने वाले थे। जिस हॉल में उन्हें विदाई दी जा रही थी वो चित्रकारों के लिए निर्दिष्ट था और उसकी दीवारों पर अनेक चित्र शोभायमान हो रहे थे। अंग्रेजों की राजधानी के जिस मंच से स्वामी जी अपना अंतिम भाषण देने वाले थे वो विविध प्रकार के पत्र पुष्पों से सुसज्जित था। समाज के सभी प्रकार के सभी श्रेणियों के लोग वहां उपस्थित थे, परंतु सबके मन में केवल एक ही कामना जाग रही थी, उन्हें देखने की, उनकी वाणी सुनने की और यदि संभव हुआ तो एक बार उनका वस्त्र स्पर्श करने की। मंच के ऊपर निर्दिष्ट समय पर गायकों एवं वादकों की सुमधुर सुर लहरी उठ रही थी। स्वामी जी ने जिन नर नारियों की श्रद्धा और प्रीति पाई थी उसे व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने व्याख्यान दिए। उन्हें सुनकर बीच बीच में तथा व्याख्यानों के अंत में तुमुल हर्ष ध्वनि उठ रही थी। अनेक लोग मौन नीरव तथा भारी मन लिए बैठे रहे। कुछ आंखें नम थीं। केवल एक ही आकृति, एक ही रूप उस वेदना से संघर्ष करते हुए उस पर विजय पा रही थी। गैरिक वर्ण के वेश धारण किए स्वामी जी जैसे एक प्रकाश पुंज के समान लोगों के बीच विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा,
3: हाँ हाँ, हम फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
1: इस अवसर पर स्वामी जी ने हेमंत से कहा था,
3: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान त्याग कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मानव जाति को सर्वत्र और तब तक प्रेरणा और सहायता देता रहूंगा जब तक सभी लोग सर्वोच्च तत्व को जान नहीं लेते।
0: इंग्लैंड में स्वामी जी का अंतिम व्याख्यान हुआ 10 दिसंबर को। विषय था अद्वैत वेदांत। इस भाषण और इंग्लैंड में उनकी सफलता तथा विदाई समारोह के बारे में इंडियन मिरर में छपा,
4: 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अद्वैत वेदांत पर स्वामी जी का जो आखिरी व्याख्यान हुआ उस समय पूरा सभागार श्रोताओं से भर गया था कि कहीं कोई इस अंतिम भाषण से वंचित ना रह जाए। इस कारण वे लोग विशेष चिंतित थे। जिस ध्यान के साथ इन विचारशील लोगों ने स्वामी जी के लंदन के व्याख्यान सुने वो इस बात का सूचक है कि स्वामी जी की वेदांत की व्याख्या के प्रति वे कितनी गंभीरता के साथ आकृष्ट हुए थे। ये व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के मुख से हुई जिनके व्यक्तित्व ने अनेक लोगों की श्रद्धा तथा अन्य अनेक लोगों की प्रीति को आकृष्ट किया था। उस व्याख्या की उपयोगिता न केवल पाश्चात्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थी अपितु उस प्राच्य जीवन में भी वो उतना ही कारगर था जहां सर्वप्रथम इसे व्यक्त किया गया। उस उदार तथा विवेकपूर्ण व्याख्या के फलस्वरूप विभिन्न मतवादों के लोग, यहाँ तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अनेक पादरी आकृष्ट हुए और ये लोग मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं को यथासंभव दूर दूर तक प्रसारित करने में लग गए। स्वामी जी किसी भी संप्रदाय के पक्षपाती नहीं हैं, वे धर्म के प्रचारक हैं, किसी विशेष धर्म के नहीं। धर्म के विराट क्षेत्र में जो लोग किसी विशेष मत के पक्षधर हैं, वे भी उनके साथ विरोध करने का कोई कारण नहीं पा सके। विदाई की सभा में जो लोग उपस्थित हुए थे, उनमें सामरिक तथा असामरिक विभागों के ऐसे अनेक पुराने राज कर्मचारी भी थे जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष भारत में बिताए थे, इसलिए वे भारत के बारे में काफी कुछ जानते थे।
1: लंदन में स्वामी जी की सफलता के बारे में सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्री विपिन चंद्रपाल ने 15 फरवरी 1899 के इंडियन मिरर में लिखा था,
5: भारत के कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का कोई विशेष फल नहीं हुआ और मित्र तथा अनुयायियों ने उनके कार्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, परंतु यहाँ पर आकर मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर सर्वत्र एक उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इंग्लैंड के अनेक अंचलों में मेरी ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जो स्वामी विवेकानंद के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखते हैं। यद्यपि मैं उनके संप्रदाय का नहीं हूँ और यह सत्य है कि मेरा उनसे काफी मतभेद है, तथापि मैं ये कहने को बाध्य हूँ कि विवेकानंद ने यहाँ के अनेक लोगों की आंखें खोल दी तथा उनके हृदय को उदार बना दिया है। उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप अब यहाँ के अधिकांश लोग दृढ़तापूर्वक विश्वास करने लगे हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे पड़े हैं। उन्होंने केवल इसी भाव को फैलाया हो ऐसी बात नहीं, वह इंग्लैंड तथा भारत के बीच एक स्वर्णिम संबंध स्थापित करने में सफल भी हुए हैं।
0: वे आगे एक घटना के बारे में लिखते हैं,
5: कल शाम को मैं दक्षिणी लंदन के निवासी अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। रास्ता भूलकर मैं एक मोड़ के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था कि किस ओर जाऊं। उसी समय एक महिला एक बालक के साथ मेरी ओर आई। मुझे लगा कि संभवतः वे मुझे रास्ता दिखा देना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, महाशय,

0: इस सुखद घटना पर मैंने अतीव आनंद का अनुभव किया था और अपनी गिरवा पगड़ी को धन्यवाद दिया जिसने सम्मान दिलाया था। इस घटना के अतिरिक्त भी मैंने यहाँ ऐसे अनेक शिक्षित अंग्रेज सज्जनों को देखा है जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भारत के धार्मिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को अतीव आग्रह के साथ सुनते हैं।
1: इंग्लैंड के निवासियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं प्रीति लेकर ही स्वामी जी ने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। 28 नवंबर के अपने पत्र में उन्होंने हेल बहनों को बताया,
2: अंग्रेज जाति के बारे में मेरी जो धारणा थी वो पूर्णता बदल चुकी है। अब मैं समझ रहा हूं कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा प्रभु ने उन्हीं पर इतनी कृपा क्यों की है। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पूर्णतः निष्ठावान हैं और साथ ही उनमें गहरी भावुकता भी है। बस बाहर कठोरता का एक आवरण भर है, उसे तोड़ते ही तुम्हें अपनी पसंद का आदमी मिल जाएगा।
1: भारत पहुंचकर उन्होंने और भी स्पष्ट भाषा में कहा,
2: अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने इंग्लैंड की धरती पर पांव नहीं रखा होगा। इस सभा मंच पर जो अंग्रेज बंधु उपस्थित हैं वे इस बात की पुष्टि करेंगे, परंतु जितना ही मैं उन लोगों के बीच रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने जुलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की प्रक्रिया देखने लगा, उतना ही मेरी समझ में आने लगा कि उस राष्ट्र का हृदय कहां स्पंदित हो रहा है। उतना ही मैं उनसे प्रेम करने लगा। और भाइयों, यहां पर ऐसा कोई भी उपस्थित नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक प्रेम करता हो। मुझे लगता है कि अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा कार्य कहीं अधिक संतोषजनक रहा है। निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि कोई भाव किसी तरह एक बार भी संचारित किया जा सके, हालांकि उनकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है और उसमें कोई भाव आसानी से नहीं घुसता, तो वो वहीं दृढ़ हो जाता है, फिर बाहर नहीं आता। उस जाति की अमित व्यवहारिक शक्ति के द्वारा वो बीज रूपी विचार अंकुरित होकर अविलंब फलदायी होता है। इस जाति में कल्पना कम है और कर्मठता अधिक है। अंग्रेज वीरों की जाति है, यथार्थ क्षत्रिय हैं। अपनी भावनाओं को छिपाए रखना ही उनकी शिक्षा है, परंतु इस बहादुरी के ठाट बाट, इस क्षत्रियत्व के आवरण के पीछे अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गहन स्रोत छिपा हुआ है। यदि आप एक बार भी वहां तक पहुंच सके, यदि एक बार भी आपकी अंग्रेजों से घनिष्ठता हो जाए, यदि आप उनसे घुल मिल जाएं और एक बार भी अपने समक्ष उनके हृदय के भाव व्यक्त करा सकें, तो वे सदा के लिए आपके मित्र हो जाएंगे, सदा के लिए आपके दास हो जाएंगे। इस कारण मेरी राय में अन्य स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक रहा है।
3: सचमुच ही स्वामी जी इंग्लैंड के निवासियों का हृदय जीत सके थे और स्वयं उनके प्रति प्रेम दिखाकर उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य के वास्तविक मिलन का पथ प्रशस्त कर दिया था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा में आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। आपसे विदा लूं उसके पहले आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको परिचित करवाना चाहती हूं। आज शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, भक्ति संगीत का प्रसारण होगा 5:10 पर। शाम 6 बजे हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम हनुमान प्रसाद पोद्दार पर केंद्रित होगा। बाल सभा कार्यक्रम में शाम 6:30 आप सुनेंगे चर्चा नशे का साथ जिंदगी का नाश, हमारी सेना हमारा गर्व। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसमें आज बातचीत का विषय होगा भारतीय सेना की संगठन की कार्यप्रणाली। हमारा विशेष कार्यक्रम शाम 7:30 होगा। इसमें सुनिएगा माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह का तीसरा भाग। रात 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम में हम बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। रात 8:30 आजाद हिंद कार्यक्रम केंद्रित होगा अवनीनाथ मुखर्जी पर। रेडियो रिपोर्ट का वक्त होगा रात 9 बजे और 9:30 सुनिए धारावाहिक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं, ये था एक संक्षिप्त सा परिचय आज शाम प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। अब इस प्रसारण सभा से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
2: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
2: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
3: आयुष्मान मेधावी हो, अपनी अपनी आसंदी पर बैठे।
4: जी गुरुजी।
3: बच्चों, गणित की इस कक्षा में आज हम ज्यामिति और बीज गणित पर चर्चा करेंगे।
5: गुरुजी, ये अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं?
3: बेटे, ये नाम पश्चिमी देशों का दिया है। शून्य और एक से नौ तक के अंकों को दशमिक प्रणाली कहते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। इस दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ये अंक ही पश्चिमी देशों द्वारा अरेबिक न्यूमरल्स कहे गए हैं।
6: ऐसा क्यों गुरुजी?
3: बेटे, हुआ यूं कि 9वीं शताब्दी में ये अंक अरब पहुंचे। उस समय अरब का एक विद्वान अल ख्वारिज्मी भारत आया और उसने यहाँ आकर अंक गणित का अध्ययन किया। इसका उल्लेख उसने अपनी पुस्तक में भी किया था। इन अंकों को अरबी में हिंदसा यानी हिंद से आए कहा जाता है। कहा जाता है अल ख्वारिज्मी की गणित की पुस्तक का अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ और जब ये पुस्तक पश्चिमी देशों में पहुंची तो अरब से पहले ये अंक मिस्र में और फिर उत्तरी अरब से धीरे धीरे पश्चिमी देशों को मिले। पश्चिम ने इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा, जबकि ना तो इसकी खोज और ना ही इसका विकास अरब में हुआ है।
5: यानी अरेबिक न्यूमेरल्स सही मायने में भारतीय न्यूमेरल्स हैं?
3: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज तो सारा विश्व ये मानने लगा है कि अंकों और दशमिक प्रणाली का आविष्कार भारत में ही हुआ है। न केवल अंक गणित बल्कि बीज गणित ज्यामिति त्रिकोणमिति कैलकुलस और वेक्टर गणित आदि गणित की विविध शाखाओं का जन्म और विकास भी भारत में ही हुआ है। आज पूरे विश्व में दशमिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाता है।
7: यह तो हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है।
3: निश्चय ही वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। क्यों ना हम आज वेदकालीन भारत की एक झलक देख लें। चलिए, आज हम आप सभी को महर्षि बोधायन के आश्रम में लिए चलते हैं। वे एक महान गणितज्ञ थे। उनका कालखंड ईसा से 1500 वर्ष पूर्व का माना जाता है।

0: पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। युवराज रोहित
1: जी आचार्य श्री,
0: अभी जिस मंत्र का उच्चार किया गया है वो कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है?
1: आचार्य श्री, यह ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभिक मंत्र है। इसमें ब्रह्म और ब्रह्मांड को पूर्ण मानते हुए कहा गया है कि ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर भी ये पूर्ण ही रहता है। अंत में पूर्ण पूर्ण में लीन हो जाता है, फिर भी पूर्ण ही बचा रहता है।
0: ठीक, इस अद्भुत संकल्पना में ब्रह्म की व्याख्या होती है, पर यह तो इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ है, इसका गणितीय अर्थ कौन बताएगा? हाँ आपस्तंभ, तुम बताओ।
2: आचार्य श्री, गणितीय अर्थ में यह मंत्र शून्य की सटीक व्याख्या करता है। हम जानते हैं शून्य में से शून्य घटा दिया जाए तो भी शून्य ही बचता है, इसी तरह शून्य में शून्य जोड़ दिया जाए तो भी शून्य ही रहता है।
0: एकदम सही। शिष्यों, पिछले दिनों आपने योग वियोग पूरण भाग आदि के जो गणितीय प्रश्न हल किए थे उनसे इस मंत्र में कही बातों का सत्यापन सहज ही हो जाता है।
1: आचार्य श्री, आप स्तंभ मुनि बता रहे थे कि आपने एक नए सूत्र की रचना की है जिसमें अनेक नए प्रमेय विकसित किए गए हैं।
0: हाँ वत्स, ये सत्य है। हमने मुनि आपस्तंभ को इन नए प्रमेयों के सत्यापन तथा इनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न विकसित करने का कार्य सौंप रखा है। मुनि आपस्तंभ, आपके कार्य की प्रगति क्या है?
2: आचार्य श्री, कार्य की प्रगति काफी संतोषप्रद है। प्रमेयों के सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी प्रमेय सत्यापन के विविध प्रयोगों में सत्य सिद्ध हुए हैं। अभ्यास प्रश्न का निर्माण कार्य प्रगति पर है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे।
0: ठीक, हम आश्वस्त हुए। यूं तो हम प्रत्येक प्रमेय का स्वयं सत्यापन कर चुके थे, पर किसी भी प्रमेय की सफलता और उपयोगिता की कसौटी ये तथ्य है कि वो विविध प्रायोगिक परिस्थितियों में सत्य सिद्ध हो।
1: आचार्य श्री, शुल्ब सूत्र की प्रमुख विशेषता के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही कृपया बताएं इसकी उपयोगिता क्या होगी?
0: वत्स, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। किसी भी अनुसंधान का महत्व उसके संभावित उपयोग पर ही निर्भर करता है। अनुसंधान केवल अनुसंधान के लिए नहीं होना चाहिए। अनुपयोगी अनुसंधान समय और शक्ति का अपव्यय ही कहलाएगा।
2: प्रिय मित्र, आचार्य श्री का ये शुल्ब सूत्र ग्रंथ गणित का एक बहुमूल्य ग्रंथ माना जाएगा। गणित के इस विलक्षण ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित तथा रेखा गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत खोजे गए हैं। इनमें दिए गए प्रमेय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
0: और वत्स, जहां तक इस ग्रंथ की उपयोगिता का प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रमेयों के ज्यामितीय सिद्धांतों का उपयोग करके यज्ञ की वेदियों, मंदिरों तथा भवनों का निर्माण पर्याप्त सुगम हो जाएगा। यज्ञ वेदी चाहे उड़ते पक्षी के आकार की हो या चतुष्कोणी, इनका निर्माण शुल्ब सूत्र में वर्णित ज्यामितीय सिद्धांतों के आधार पर शास्त्रोक्त बनाया जा सकता है। वैसे ग्रंथ की उपयोगिता तो तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम लोग इसका पठन पाठन कर इस पर मनन करोगे, इसमें दिए प्रमेयों के अनुप्रयोगों पर कार्य करोगे।
2: उदाहरण के लिए शुल्ब सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय कहता है, दीर्घ चतुरस्याश्रया रज्जुः पार्श्वमानि त्र्यकमानि यत् पृथक् भूते कुरुतस्त दुभ्यम करोति। अर्थात आयत के कर्ण यानी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्ग के योग के बराबर होता है।
1: आपके कहने का अर्थ तो यह हुआ कि किसी आयत का कर्ण क्षेत्रफल में उतना ही होता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई का होता है।
2: हाँ मित्रों, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि यदि किसी आयत आ बा सा दा आयत का कर्ण बादा और लंबाई आ बा और चौड़ाई आ दा हो तो बादा वर्ग दो बराबर आबा वर्ग दो धन आधा वर्ग दो। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय है जो भवन या मंदिर के निर्माण में बहुत अधिक सहायक हो सकता है।
0: ऐसे ही अगले दो प्रमेय हैं। पहला प्रमेय कहता है आयत का कर्ण आयत का सम द्विभाजन करता है, जबकि दूसरा प्रमेय कहता है कि सम चतुर्भुज के कर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं। इन प्रमेयों का सत्यापन किसी आयताकार या समचतुर्भुजी सभा भवन के फर्श पर आसानी से किया जा सकता है।
2: इसी तरह शुल्ब सूत्र में वे विधियां भी दी गई हैं जिनके द्वारा आप एक त्रिकोण के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वर्ग बना सकते हैं या किसी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वर्ग के दो गुने या तीन गुने क्षेत्रफल के बराबर के क्षेत्रफल वाला वृत्त बना सकते हैं या वर्ग के एक तिहाई क्षेत्रफल का भी वृत्त बना सकते हैं। आप लोग सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि शुल्ब सूत्र में दिए गए प्रमेय और ये अनुप्रयोग कितने अभिनव और कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: निश्चय ही शुल्ब सूत्र में दिए गए ये सभी अनुसंधान एकदम अभिनव और महत्वपूर्ण है। अपने देश में ही नहीं, संसार के दूसरे देशों के लिए भी ये एकदम नूतन और अद्भुत जानकारी देने वाले होंगे।
2: इतनी ही अभिनव और महत्वपूर्ण है शुल्ब सूत्र में वर्णित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विभिन्न श्रेणियां। ऐसे ही शुल्ब सूत्र में वर्णित क्रमचय और संचय के सूत्र हैं। विश्व में ये भारत के गणित के क्षेत्र में दी गई अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। एक और अद्भुत देन शुल्ब सूत्र की रूट दो और रूट तीन जैसी संख्याओं के मान निकालने की विधियां हैं।
0: शुल्ब सूत्र पर तो चर्चा चलती रहेगी, पर अब मध्यान्ह भोजन का समय हो गया है, सो हमें ये चर्चा यहीं रोककर भोजन कक्ष की ओर चलना होगा।

0: मुनिवर, आज आचार्य श्री को नदी तट से लौटने में विलंब हो गया है।
1: लगता है नदी तट पर उनकी भेंट किसी सुधी व्यक्ति से हो गई है, अन्यथा उनका दैनिक कार्यक्रम निश्चित रहता है। अलस भोर, प्रथम पहर में उठना, दैनिक कर्म से निवृत्त हो नदी में जाकर स्नान करना, फिर संध्या वंदन कर ध्यानस्थ बैठना। आचार्य श्री हमेशा अपने शिष्यों से कहते हैं, ऋषि के लिए सुयोग्य, तेजस्वी, मंत्र दृष्टवा, वर्चस्वी होना आवश्यक है। इसके लिए ध्यान और मंत्रों की साधना परम आवश्यक है।
0: मुनिश्री, कई बार आश्चर्य होता है कि आचार्य श्री मंत्रों से गणितीय अवधारणाएं किस तरह विकसित कर लेते हैं।
1: ये अंततः प्रकृति के कारण संभव हो पाता है, जो साधना से प्राप्त होती है। आचार्य श्री कहते हैं, बुद्धि का काम है विश्लेषण करना, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तर्क है, पर तर्क द्वंद्व उत्पन्न करता है, किंतु यदि बुद्धि को परिष्कृत और परिमार्जित करके प्रखर बना दिया जाए तो उसकी सीमा विस्तृत और व्यापक हो जाती है। तब हम चीजों को जैसी है वैसी ही देखना प्रारंभ कर देते हैं, यानी हमें सत्य का साक्षात्कार होने लगता है।
0: यह संकल्पना काफी रोचक है, इसे मुझे ठीक से समझना होगा। आचार्य श्री ने जब यह बात कही थी तब मेरा ध्यान थोड़ा भटका हुआ था, सो मैं इसे आत्मसात नहीं कर पाया था।
1: आचार्य श्री की संकल्पना को इस तरह समझा जा सकता है, जब बुद्धि परिष्कृत होती है तो उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है, धारणा शक्ति बढ़ने से मेधा प्रखर हो जाती है, और जब मेधा प्रखर या परिष्कृत होती है तो प्रज्ञा प्रकट होती है। प्रज्ञा कहते हैं प्रकाशित बुद्धि को। प्रज्ञा की स्थिति में संवेदना इतनी सघन होती जाती है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ होता जाता है। हमारे ऋषि महर्षि बुद्धि से प्रज्ञा तक की यात्रा के विज्ञान में पारंगत हैं।
0: लीजिए, आचार्य श्री आ गए।
2: प्रणाम आचार्य श्री।
3: आयुष्मान, यशस्वी भव।
1: नदी तट पर किससे भेंट हो गई थी आपकी?
3: वत्स, तुम्हारा अनुमान सही है, नित्य क्रम से हमें थोड़ा विलंब हो गया ना। नदी तट पर आचार्य मैत्रियन से भेंट हो गई। काफी समय पश्चात उनसे भेंट हुई थी, सो चर्चा में समय का पता ही नहीं चला। उन्होंने शून्य के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। वे बोले, वैदिक पदाक्रम में शून्य का अर्थ प्रायः आकाश या रिक्त स्थान अथवा वायुमंडल जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। यद्यपि गणितीय अर्थ में शून्य एक वैदिक शब्द नहीं है, किंतु दार्शनिक भाव में शून्य की सुंदर अभिव्यक्ति कठोपनिषद में मिलती है। जरा देखें, ये श्लोक कितना अद्भुत है। यथा सर्वे प्रमुच्यते कामायस्य हृदय स्थितः अथ मर्त्यो अमृते भवत्यत्र ब्रह्मा समुष्णुते। अर्थात जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब मर्त्य अमर होकर अनंत अर्थात ब्रह्म के समान रूप प्राप्त कर लेता है। वे आगे बोलते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में शून्य और अनंत के बीच इस सीमांत संबंध को परिभाषित करते हुए जीव अथवा आत्मा की परिकल्पना दी गई है। संदर्भित श्लोक है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेह स चानंताय कल्पते। इसका अर्थ है, बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करने पर जीव का अस्तित्व इस बिंदु पर भी उपस्थित है जिसकी अनंत के रूप में परिकल्पना की जाती है। प्रिय आपस्तंभ, मैं इन दोनों श्लोकों को गणित के प्रमेयों के रूप में रूपांतरित करने का विचार बना रहा हूं।
1: ये तो अद्भुत खोज होगी आचार्य श्री।
3: निश्चय ही। लो, मैं फिर विचार में खो गया। ध्यान सत्र का समय हो गया है, चलो सीधे ध्यान कक्ष में चलते हैं।
1: सभी लोग ध्यान कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे, संभवतः हमारी ही प्रतीक्षा हो रही होगी। चलिए। ओम ओम।

0: युवराज रोहित, लगता है तुम्हारा मन कुछ उद्विग्न है। मैं देख रहा हूं, यद्यपि हम वन में लकड़ियां एकत्रित करने के कार्य में संलग्न हैं, पर तुम्हारा ध्यान यहां नहीं है। क्या तुम्हें ज्ञात है मैं लकड़ियों का एक गट्ठर आश्रम भिजवा चुका हूं?
1: आप सही कह रहे हैं मुनिश्री, मेरा ध्यान भटक गया था। कई बार ऐसा हो जाता है।
0: पर ऐसा क्यों? क्या कोई समस्या है या तुम्हें अपने घर की याद सता रही है?
1: नहीं मुनिश्री, घर की याद सताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ का वातावरण इतना सौहार्दपूर्ण और आत्मीय है कि जो भी यहाँ आ जाता है यहीं का हो जाता है। कल गुरुमा ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था।
2: मैं देख रही हूँ तुम कुछ उद्विग्न हो। आजकल भोजन भी तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। क्या घर की याद सता रही है या यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है?
1: कैसी बात कर रही हैं गुरु माता? यहाँ आपका व्यवहार इतना स्नेहिल, इतना ममतामय है कि घर की याद तो आ ही नहीं सकती। आचार्य श्री की पितृतुल्य निगरानी में किसी को भी कोई भी कष्ट हो ही कैसे सकता है?
2: मुझे लगा शायद तुम्हें यहाँ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, सो मैंने तुम लोगों के लिए मोदक और पकवान बनाए हैं, तुम्हें अच्छे लगेंगे।
1: आप निरर्थक ही चिंता कर रही हैं गुरु माता, यहाँ का भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट और रुचिकर है। मेरी उद्विग्नता को आप अन्यथा न लें।
2: तो क्या आचार्य श्री की डांट से व्यथित हो? कल संध्या में उन्होंने संभवतः तुम्हें डांटते हुए कहा था, रोहित देख रहे हो ना, गोधुली हो गई है। तुम्हें दीप मंजूषा को तैयार कर प्रज्वलित करने को कहा था ना, तुम कर क्या रहे हो?
1: नहीं गुरुमा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कल संध्या में हम लोग कंदूक के खेल में इतने व्यस्त हो गए थे कि दीप प्रज्वलित करने का ध्यान ही नहीं रहा। हम में से किसी ने भी आचार्य श्री के कहे को अन्यथा नहीं लिया।
0: कोई बात तो है जो तुम हमसे छिपा रहे हो।
1: सच कहूं मुनिश्री, तो मैं चिंतित हूं।
0: चिंतित हो? किस लिए?
1: वो क्या है, आचार्य श्री ने मुझे आश्रम के आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर लगे आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने को कहा है।
0: तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है?
1: चिंतित होने की ही तो बात है मुनिश्री। मैंने गणना करके पता लगाया, अपने आश्रम के आम्र कुंज में 1002 आम्र वृक्ष हैं। इन सब पर लगे आम्र फलों की गणना करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा।
0: रोहित, तुम्हें स्मरण होगा आचार्य श्री ने एक दिन पूर्व अनुमानित संख्या ज्ञात करने की विधि की चर्चा की थी।
1: हाँ मुझे स्मरण है।
0: उसके पश्चात ही आचार्य श्री ने तुम्हें आश्रम के आम्र कुंज के वृक्षों पर उपस्थित आम्र फलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करने का अभ्यास दिया होगा।
1: उसके बाद ही मुझे यह संख्या ज्ञात करने को कहा था। मैं तभी से चिंतित हूँ, कैसे क्या करूँ?
0: देखो प्रिय, तुमने आम्र कुंज में उपस्थित आम्र वृक्षों की संख्या गणना तो कर ही ली है। अब तुम अलग अलग आकार के 5 वृक्ष चिन्हित कर लो। इसके बाद इन चिन्हित वृक्षों में से प्रत्येक वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की संख्या ज्ञात करो। इस तरह तुम्हें इन 5 वृक्षों पर उपस्थित फलों की 5 संख्याएं प्राप्त होंगी। इन संख्याओं का योग करके प्राप्त संख्या में 5 का भाग देने पर तुम्हें 1 वृक्ष पर उपस्थित आम्र फलों की औसत संख्या अर्थात अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस औसत संख्या को आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों की कुल संख्या से गुणा करने पर आम्र कुंज में उपस्थित वृक्षों पर आम्र फलों की अनुमानित संख्या प्राप्त हो जाएगी।
1: अरे वाह मुनिवर, आपने तो मेरी समस्या चुटकियों में हल कर दी।
0: अब से गांठ बांध लो। चिंतित रहने की जगह समस्या पर आपस में चर्चा करके हल ढूंढा जा सकता है।
1: इस सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे हाँ, सुना है आप आचार्य श्री के साथ विभिन्न आश्रमों के आचार्यों के समागम में भाग लेने जा रहे हैं।
0: हाँ, ये सही है, ये आचार्य श्री का मुझ पर अनुग्रह और स्नेह ही है जो उन्होंने मुझे इस योग्य समझा।
1: आचार्य श्री का आप पर विश्वास अनुचित नहीं है मुनिवर, आप उनके प्रिय और सबसे योग्य शिष्य जो हैं।
0: हाँ, अब ये बातें छोड़ो, हमें जल्द ही आश्रम पहुंच जाना चाहिए, चलो।
1: हाँ हाँ, एक मिनट, मैं लकड़ियों का गट्ठर लेकर आता हूँ, चलिए।

0: वो आ रहे हैं अपस्तम मुनि।
1: हाँ, उनसे ही ज्ञात होगा आचार्यों की सभा में क्या हुआ।
2: पहले उन्हें बधाई तो दो। आचार्यों की सभा में आचार्य बोधायन के साथ भाग लेना महान उपलब्धि है।
0: मुनिश्री
1: अत्यंत
2: हर्षित है।
3: प्रणाम मुनिश्री, बताएं आचार्यों की सभा में भाग लेना कैसा अनुभव था।
4: बधाई के लिए हार्दिक धन्यवाद। ये सब आप सभी की शुभकामनाओं और स्नेह के कारण ही संभव हुआ। जहाँ तक महासभा में भाग लेने के अनुभव की बात है तो ये निश्चय ही अद्भुत था, अनिर्वचनीय।
3: वहाँ सभा में क्या हुआ मुनिश्री।
4: सभा क्या, महासभा थी वो। अनेक आचार्यों का समागम था। बहुत कुछ हुआ था वहाँ। अनेक विषयों पर, शास्त्रों पर चर्चाएं हुई, शास्त्रार्थ हुए। मूल बात यह है कि आचार्य बोधायन के शुल्ब सूत्र पर विशेष चर्चा हुई। सभी ने आचार्य श्री की खोजों उपलब्धियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। शुल्ब सूत्र को गणित के इतिहास में मील का पत्थर घोषित किया गया। कहा गया कि ये कालजयी ग्रंथ है जिसकी चर्चा शताब्दियों तक होती रहेगी।
0: बधाई बधाई।
3: और कोई विशेष घटना।
4: हाँ, घटनाएं तो अनेक हैं, पर एक ज्ञातव्य है। वहां आचार्य श्री के मार्गदर्शन में 1000 ईंटों की एक उड़ते पक्षी के आकार की एक यज्ञ वेदी बनाई गई। ये वेदी वहां विद्वानों, विशेषकर ज्यामिति शास्त्रियों के लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि 10 प्रकार की ईंटों से बनी वेदी की सतह यजमान के 7.5 गुना थी और ईंटों का माप यजमान के 5वें हिस्से के बराबर था।
0: बधाई हो।
4: कृपया शांत हो, शांत हो। आचार्य श्री पधार रहे हैं, उन्हें धमाल कतई पसंद नहीं है। चलिए चलिए सभा गृह में चलिए, हमें वहां उपस्थित होना है। आइए आइए आइए आइए आइए।

तो बच्चों ये थी झलक आचार्य बोधायन के आश्रम की। बच्चों विश्व के अनेक विद्वानों, विचारकों और वैज्ञानिकों ने वेदकालीन भारत में गणित के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई थीं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। महान वैज्ञानिक लाप्लास ने कहा था कि ये भारत ही है जिसने 10 अंकों की संख्याओं को व्यक्त करने का अद्वितीय तरीका दिया। ये तरीका अब इतना सरल लगता है कि इसकी जबरदस्त गुणवत्ता की अनदेखी तक हो जाती है। इन आविष्कारों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट हो सकता है कि इतिहास के दो महान व्यक्ति आर्कमिडीज और अपोलोनियस की मेधा में दार्शनिक प्रणाली की बात नहीं आई। ऐसे ही सर मोनियर विलियम्स के विचार थे कि शताब्दियों पहले हिंदुओं ने ज्यामिति और बीजगणित के क्षेत्र में जो आविष्कार किए वे अद्भुत हैं।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
0: अतुल्य भारत।
1: हाँ, घूमना किसे पसंद नहीं, नई नई जगहें देखना, नए नए लोगों से मिलना, एक अलग तरह की संस्कृति और एक अलग तरह का नजारा।
2: हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने भाई, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ घूमने फिरने के लिए।
1: और इन सब का अपना एक अलग ही आनंद होता है।
2: हो भी क्यों ना,
1: एक अलग ही रोमांच है। इस रोमांच की तमन्ना हमें मजबूर करती है कि हम अपने एक होल से बाहर निकले और देखें कि दुनिया कितनी बड़ी और कितनी विविध है।
2: बिल्कुल ठीक कहा कंचन तुमने, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक अगर हम घूमने नहीं निकले। एक बात बताऊं तुम्हें?
1: हाँ?
2: प्रसंगवश हमें 14वीं सदी के एक यात्री इब्न बतूता की याद आती है। मोरक्को के टेंजियर शहर का वो रहने वाला था।
1: हाँ?
2: और पैदाइशी तौर पर उसे घूमने का जबरदस्त जज्बा था। वह कहता था कि मुझे वो ज्ञान बिल्कुल नहीं चाहिए जो किताबों में लिखा है, भाई मैं तो चीजों को अपनी आंखों से देखना, उन्हें महसूस करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
1: हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में।
2: अच्छा?
1: वो कहते थे कि मैं दुनिया देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और घुमक्कड़पन के इसी उन्माद में 22 साल का ये युवक अकेले ही अपने घर से निकल पड़ा, ऐसे जैसे चिड़िया का बच्चा अपना घोंसला छोड़कर निकल पड़ता है।
2: बिल्कुल ठीक।
1: 14वीं सदी का माहौल आज जैसा तो नहीं होगा तब। उस जमाने में अकेले तो क्या, कारवा के साथ चलने पर भी जान की कोई गारंटी नहीं होती थी।
2: हाँ, आपको घर बैठे घुमाने का रोमांच अनुभव कराने के लिए चलो आज हम आपको सैर पर ले चलते हैं, एक रेडियो यात्रा पर। इस कड़ी में सबसे पहले हम चलते हैं बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में।
1: वाह, वाराणसी से मुझे कहावत याद आ गई।
2: कौन सी?
1: शामे अवध सुबह काशी, यानी अवध की शाम और काशी की सुबह बड़ी ही सुहानी होती है।
2: ये तो ठीक है।
1: सच बात है, काशी यानी कि वाराणसी में सुबह मुंह अंधेरे ही हर हर गंगे हर हर महादेव करती टोलियां जब गंगा तट की तरफ बढ़ती हैं, तो मन एक बार की भक्तिमय हो उठता है। सूरज के जगने से पहले ही ये शहर जग पड़ता है, मंदिरों की घंटियां बजने लगती हैं और गंगा का घाट चहल पहल से भर जाता है।
2: काशी नगरी पूरी दुनिया में सबसे निराली है, भगवान शिव ने इसे अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, और मानता तो यह भी है कि यह शहर दुनिया में होकर भी मानो दुनिया में नहीं है, और इसलिए जब पूरा विश्व प्रलय में डूब जाएगा तो कहते हैं तब काशी ही अपनी जगह पर कायम रहेगी, ऐसी मान्यता लोगों में आदि काल से चली आ रही।
1: और काशी को वाराणसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वरुणा और असी नदियों के बीच बसा हुआ है। श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये दोनों ही नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन नदियों ने अपने प्यार भरे आलिंगन में इस शहर को ऐसे पाला है जैसे दो माताएं किसी बच्चे को पालती हैं।
2: वाह वाह, क्या कल्पना करिए तुमने, दुनिया के इतिहास में अनेक नगरों का उत्थान और पतन होता रहा है। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को ही ले लो, आज से 5000 साल पहले बसे इन शहरों में अब केवल मलबे ही मलबे बचे हैं, लेकिन वाराणसी शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे पुराना शहर है जो लगातार जिंदा है, अनवरत धड़क रहा है। और हो भी क्यों ना, शिव जी की खास पसंद जो है ये काशी।
1: हाँ, और इसके बारे में मार्क ट्विन ने तो ये भी कहा था कि ये शहर ओल्डर देन हिस्ट्री है। वे लिखते हैं कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, पुराणों से भी पुराना है, और इन सब की आयु को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो ये शहर इससे भी दुगना पुराना है।
2: वाराणसी शहर इतना पुराना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। इस ग्रंथ में इसे काशी कहकर के पुकारा गया है। काशी शब्द का अर्थ होता है सिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का शहर या ज्योति का शहर।
1: और प्रकाश ज्ञान का भी प्रतीक होता है, धर्म का भी और जागरण का भी।
2: बिल्कुल,
1: ये हम नहीं कहते, हमारे पुराने श्लोक कहते हैं।
2: कौन से श्लोक?
1: अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आपको बता दें कि ये पंक्तियां वृदारण्यक उपनिषद के नवरस मंत्र से ली गई हैं।
2: बिल्कुल, लेकिन वाराणसी के संदर्भ में प्रकाश का अर्थ ज्ञान नहीं, जागरण नहीं, बल्कि कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ऋग्वेद के बाद अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ स्कंद पुराण है, जिसमें पूरा का पूरा एक काशी खंड ही है।
2: अच्छा।
1: और इस खंड में 15,000 श्लोक हैं। इनमें से एक श्लोक में भगवान शंकर कहते हैं,
2: क्या?
1: अखिल विश्व के तीनों लोकों में केवल एक ही शहर मेरा है और वो है काशी।
2: भाई वाह, क्या बात है।
1: और इसी शहर में मेरा शाही महल भी है।
2: श्रोताओ, अगर आप भूल रहे हो तो हम आपको याद दिला दें कि गंगा भी शिव की जटा से ही निकली है, यानी हर तरह से वाराणसी शिव में है। तभी तो हर हर गंगे यहाँ का सबसे बड़ा मंत्र है।
1: और रामायण व महाभारत ग्रंथों में भी वाराणसी की चर्चा बारंबार मिलती है। गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका समय भी आज से लगभग 2,500 साल पहले का है।
2: बिल्कुल।
1: ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना पहला उपनिषद ऋषिपत्तन में दिया था। ये ऋषिपत्तन ही आज सारनाथ है, जो वाराणसी से ही लगा हुआ है, जैसे कि भोपाल और बैरागढ़।
2: हाँ, गौतम बुद्ध बोध गया से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यहाँ आए तब यहाँ पर एक बगीचा हुआ करता था, जिसे मृगार्दव कहा जाता था। इस शब्द का मतलब होता है कि ऐसा बगीचा जिसमें हिरण रहते हों। आज भी यह बगीचा है जिसे डेयर पार्क कहा जाता है, और आज भी यहाँ पे हिरण रहते हैं।
1: और इस बगीचे में ही गौतम बुद्ध जी ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। बौद्ध परंपरा में ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है, जिसका मतलब होता है धर्म के पहिए का गतिशील होना।
2: हाँ, बुद्ध के निर्वाण के बाद सारनाथ में धमेक स्तूप बनाया गया, जिसके आज केवल अवशेष ही मिलते हैं। यहाँ मुलागन गुटी नाम का एक विहार भी हुआ करता था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल यहीं व्यतीत किया था, और अब इस विहार को श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है।
1: इस तरह बुद्ध से संबंधित होने के कारण सारनाथ आज दुनिया भर के बौद्ध लोगों के लिए एक पवित्र स्थान है। और यहाँ हर समय पर जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार देशों के तीर्थ यात्रियों का मेला लगा रहता है।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। सारनाथ का एक और महत्व है, और वह यह है कि यहाँ से प्राप्त अशोक की लाट से भारत सरकार का राज्य चिन्ह लिया गया है, जिसमें 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं।
1: बौद्ध धर्म के समान ही जैन धर्म से भी वाराणसी का गहरा रिश्ता रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहीं हुआ था। उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे।
2: वाराणसी अपने खूबसूरत घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यूं तो गंगा हर जगह मनोहारी है, पर काशी में तो इसकी छटा निराली है। मॉडर्न एज के जाने माने पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को तो बनारस व यहाँ का गंगा तट इतना भाया कि उनकी पेंटिंग में अनेकों रंग इसमें बिखरे हुए हैं।
1: यहाँ इसके किनारों पर कुल 80 घाट बने हुए हैं, जो राजघाट से शुरू होकर 80 घाट तक फैले हैं। इन्हीं में से एक घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। राम जी के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने सपने में अपना राज्य दान दे दिया था, तब वे यहीं आकर एक डोम के दास बने थे।
2: लाइफ का कंट्रास्ट अगर देखना हो तो मरणिका घाट और दशाश्वमेध घाट देखें। एक मृत्यु का प्रतीक है तो दूसरा जीवन का। एक पर दाह संस्कार के लिए शवों की लाइन लगी रहती है तो दूसरी तरफ शादी विवाह की मन्नतें पूरी करने वालों से अटा पड़ा रहता है। पूरा का पूरा वातावरण जीवन की किलकारियों से भरा रहता है।
1: उस क्षेत्र के वरवधु शादी के बाद दशाश्वमेघ अवश्य आते हैं। गंगा माँ को चुनर चढ़ाई जाती है, दीपदान चलता रहता है, मंदिरों के घंटे जीवन का उद्घोष करते रहते हैं। घाट क्या है? पूरा एक शहर है। विदेशी यात्रियों का सबसे ज्यादा जमावड़ा भी यहीं दिखाई देता है। घाट की सीढ़ियों पर वे ऐसे शांति से बैठे रहते हैं जैसे यहाँ विद्यमान आध्यात्मिक ऊर्जा को चुपचाप आत्मसात कर रहे हो।
2: हाँ, और दूसरी ओर मणिकर्णिका कुछ और नहीं, बस मौत का सन्नाटा है यहाँ। यहाँ आकर के कबीर का दोहा याद आता है।
1: कौन सा?
2: पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात।
1: यानी मनुष्य का शरीर और क्या है, बस पानी का एक बुलबुला ही तो है। यहाँ से लौटने के बाद हफ्तों तक जीवन की निसारता पीछा करती रहती है। वैराग्य अनुराग पर चोट करता रहता है, पर अंत में जीत अनुराग की ही होती है। ऐसा ना हो तो सब सन्यासी ही हो जाए।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब काशी की बात चले तो काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा भला कैसे ना हो। यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दे कि इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में भी है, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और यह लाइट कुछ और नहीं ज्योतिर्लिंग ही है।
1: दरअसल ज्योतिर्लिंग उस देव स्थान को कहते हैं जहां शिव मूर्ति की नहीं बल्कि शिवलिंग की उपासना होती है।
2: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि शिव सनातन है, निराकार है। सबसे पहले उन्होंने स्वयं को अरिद्र नक्षत्र की एक रात्रि में एक अग्नि शिखा के रूप में प्रकट किया जो धरती को फाड़ करके बाहर निकल रही थी। इस अग्नि शिखा को ही प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट किया जाता है।
1: श्रोताओं, 3 ज्योतिर्लिंग के नाम तो आपने सुन ही लिए, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर और काशी विश्वनाथ। चलिए अब आपको शेष 9 नाम भी बता देते हैं। केदारनाथ, वैद्यनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग।
2: श्रोताओं, काशी के विश्वनाथ मंदिर को कभी कभी गोल्डन टेंपल भी कहा जाता था। वजह यह थी कि इस मंदिर के शिखर पर 50 फीट ऊंचा सोने का पत्थर चढ़ा हुआ था। क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर किसने चढ़ाया था? पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने।
1: इस मंदिर का कुछ रिश्ता हमारे मध्य प्रदेश से भी है।
2: हाँ।
1: राजमाता अहिल्याबाई होलकर कितनी शिव भक्त थी ये तो सभी जानते हैं।
2: बिल्कुल।
1: उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और गंगा के कुछ घाटों को भी पक्का करवाया था। कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि गंगा में डुबकी लगाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर ले तो मोक्ष का द्वार उसके लिए स्वयमेव खुल जाता है।
2: और शायद यही वजह है कि आदि शंकराचार्य से लेकर के गुरु नानक, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद आदि कितने ही महापुरुषों ने इस मंदिर के दर्शन किए, स्वयं को धन्य किया। इतिहास के लंबे दौर में अनेक बार इस मंदिर को हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार दुगनी शान शौकत के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया।
1: श्रोताओं, वाराणसी शहर धर्म और आध्यात्म की एक गंगा है, तभी तो यहाँ एक से बढ़कर एक पवित्र स्थल है। अब संकट मोचन को ही ले लीजिए। उल्लेख मिलता है कि वाराणसी में असी नदी के पास एक जगह पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को साक्षात दर्शन दिए थे, सो उन्होंने उस जगह पर संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की।
2: लेकिन आज जो मंदिर का ढांचा है उसका निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में बंदरों के झुंड मिलते हैं, इतने कि आप हैरान हो जाएं। ऐसा लगता है कि हम वानर लोक में आ गए हैं। पता नहीं जाने कैसे मालूम पड़ जाता है कि ये उनके राजा का मंदिर है।
1: जरा याद करें यहाँ पर हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ।
2: कौन सी?
1: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। यानी यहाँ हनुमान जी को कपीश कहा गया है।
2: बिल्कुल।
1: इसका अर्थ है कपी, यानी बंदरों के ईश और लौकिक अर्थ में राजा। प्रसंगवश आपको बता दें कि हनुमान चालीसा की रचना भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की है और उसकी भाषा भी अवधी है।
2: हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि संकट मोचन मंदिर के बंदर भी बड़े नटखट और शरारती होते हैं। हो सकता है कि ये आपकी कोई कीमती चीज उठा ले जाएं, लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए नहीं, आप उनसे अपनी चीज को वापस लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज उनको देनी पड़ेगी अदला बदली के लिए। बंदरों को आप कुछ खाने पीने की चीज दे दीजिए, वापस बदले में वो आपकी चीज आपको वापस लौटा देंगे।
1: संकट मोचन का रुतबा अगर आपको देखना हो तो जरा कभी मंगलवार या शनिवार को पधार कर देखिए। घंटों के पहले अगर दर्शन करने की आपकी बारी आ जाए तो कहिएगा। कहते हैं अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो तो उसका सबसे प्रभावशाली उपाय है संकट मोचन के दर्शन करना।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हम वाराणसी की बात करें और वाराणसी के शिल्प की बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। वाराणसी का शिल्प बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, खासकर यहाँ की बनी हुई बनारसी साड़ियाँ। इन साड़ियों का भारतीय लोगों के लिए क्या दर्जा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर दुल्हन की यह अभिलाषा होती है कि वह अपने विवाह के अवसर पर बनारसी साड़ी जरूर पहने।
1: ये साड़ियाँ होती तो सिल्क की हैं, पर इन पर सोने और चांदी की जरी की जाती है। एम्ब्रॉयडरी इतनी जबरदस्त होती है कि साड़ियाँ भारी भरकम हो जाती हैं, इसलिए ये केवल खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें पहनना संभव ही नहीं।
2: भारत की बात छोड़ दें तो विदेशों में भी इन साड़ियों के प्रति भारी दीवानगी देखने को मिलती है। अगर आपने अपने किसी एनआरआई दोस्त की पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट कर दी तो समझ लीजिए कि जिंदगी भर के लिए वह आपका हो गया। वास्तव में शादी विवाह के मौके पर इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
1: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
2: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
1: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियां कैसे छूट सकती है। पूरी दुनिया में मशहूर है यहाँ की गलियाँ।
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
1: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा। सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
2: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों के सहारे नाप सकते हैं। करोड़ों का व्यापार इन गलियों में होता है। बनारसी साड़ियों की अच्छी से अच्छी दुकानें इन्हीं गलियों में है। बनारस के नायाब हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी इन्हीं गलियों में मिलते हैं।
1: श्रोताओं, विश्वनाथ मंदिर की चर्चा तो हो ही चुकी है। दशाश्वमेध घाट की सड़क से इस मंदिर को जोड़ने का काम भी एक गली ही करती है।
2: बिल्कुल।
1: जिसे विश्वनाथ गली कहा जाता है। गली क्या है, पूरा एक शहर है, मिनी वाराणसी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
2: हाँ, एक से बढ़कर एक हैंडीक्राफ्ट के सामान, भगवान की अद्भुत मूर्तियाँ, राजा और सिपाही, पर्स, साड़ियाँ, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
1: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
2: अच्छा,
1: वो स्वाद वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
2: जी।
1: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
2: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
1: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
2: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
1: हाँ बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
2: हाँ।
1: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
2: भाई कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है, मुझे तो इतना ही पता है। और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
1: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
2: बिल्कुल।
1: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
2: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
2: बिल्कुल।
1: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
2: हाँ।
1: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
2: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीरदास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
2: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद

0: वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
0: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
0: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल चार बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
0: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
0: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
0: सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। तराने आजादी के ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। आइए शुरू करें सिलसिला देशभक्ति गीतों का।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के। इस प्रसारण सभा में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता सिंह। अगली प्रस्तुति के साथ हाजिर होती हूँ, बस एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

छेड़ देवे। नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज ससुराल गेंदा फूल और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आज शाम की सभा में श्रोताओ, मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ हो उसके पहले आइए हम आपको बताए देते हैं कि आज शाम को आप हमारे साथ रेडियो आजाद हिंद से कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित होंगी मैं आपके सामने अक्षय निधि के ठीक बाद, यानी 5:10 से 6 बजे सुनिएगा वतन का राग। श्रोताओं, ये कार्यक्रम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पर आधारित होगा जिनकी आज जयंती है। शाम 6:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम बाल सभा। आज इस कार्यक्रम में विषय रहेगा नशे का साथ जिंदगी का नाश। शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है भारतीय सेना की संगठन की कार्यप्रणाली। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से अदिति गौड़ ने इस कार्यक्रम में चर्चा की है। शाम 7:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे मात शैली में एक प्ले शहीद भगत सिंह, जिसका आप भाग 3 सुनेंगे। रात 8 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम देश के संस्थान। आज देश के संस्थान में हमने जिस संस्थान को शामिल किया है उसका नाम है JSL, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। रात 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम आजाद हिंद, जो कि आधारित होगा अवनीनाथ मुखर्जी पर। और रात 9 बजे सुनिएगा रेडियो रिपोर्ट। और 9:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज शाम को प्रसारित होने वाला कार्यक्रम विवरण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। हमारा ये प्रसारण रात्रि 10 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 21 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत और भार्गव शौनक, देवता इंद्र, छंद है जगति व त्रिष्टु।
1: विश्व जीते, धन जीते, स्वर जीते, सत्रा जीते, निर्जित उर्वरा जीते, अश्व जीते, गो जीते, अब जीते, भरेन्द्राय सोमम यजताय हर्यतम। हे याजको, समस्त विश्व को जीतने वाले, धन की विजय करने वाले, संगठित रूप में विजय प्राप्त करने वाले, मनुष्यों को जीतने वाले, उर्वर भूमि को जीतने वाले, घोड़े तथा गौओं को जीतने वाले तथा जल तत्व को अपने वश में करने वाले पूज्य इंद्रदेव के निमित्त तेजस्वी सोम प्रदान करो। अभिभुवे विभंगाय वन्वते षाढ़हाय सहमानाय वेधसे तुविग्रये वहनये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इंद्राय वोचत। हे याजको, सर्वव्यापक प्रलयंकारी ऐश्वर्य का यथोचित विभाजन करने वाले, अजेय शत्रुओं के आक्रमण को स्वयं झेलने वाले, विश्व के विधाता पुष्ट ग्रीव संपूर्ण जगत को धारण करने वाले, अपार सामर्थ्य वाले तथा संगठित रूप से युद्ध करने वाले इंद्रदेव का सदैव यशोगान करो। सत्रासाहो जनभक्षो जनम सह्यश्च्यवनो युधमो अनु जोश मुक्षितः व्रतंचयः सहुरिर विक्ष्वारित इंद्रस्य वोचम प्रकृतानि वीरिया। हे याजको, मनुष्य के हित के लिए संगठित रूप से लड़ने वाले बलवानों के विजेता शत्रु निवारक योद्धा, प्रीतिपूर्वक सोमरस का पान करने वाले शत्रुहंता तथा प्रजापालक तेजस्वी इंद्रदेव द्वारा किए गए महान पराक्रमों का यशोगान करो। अनानुदो वृषभो दोधतो वधो गंभीर ऋष्वो असमष्टकाव्यः रध्रचोदः श्नथनो वीडितस् पृथुरिन्द्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत। हे याजको, महादानी बलशाली दुर्धर्ष शत्रुओं के हंता गंभीर सर्वज्ञाता असाधारण कार्य कुशल उत्तम कर्मों के प्रेरक शत्रुओं की शक्ति को क्षीण करने वाले परिपुष्ट अंगों वाले श्रेष्ठ कर्मा महान इंद्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से उषाओं तथा सूर्य को प्रकट किया है। यज्ञेन गातु मप्तुरो विविद्रिरे धियो हिन्वाना उषिजो मनीषिणः अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इंद्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत। शीघ्रता से कार्य करने वाले ज्ञानी जन समृद्धि की कामना से श्रेष्ठ यज्ञीय कर्मों में स्तुतियां करते हुए योग्य मार्ग पा जाते हैं और अपने संरक्षण की कामना से इंद्रदेव की स्तुतियां करते हुए उनके समीप रहकर धन प्राप्त करते हैं। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रईणामरिष्टिम तनूनाम स्वाद्मानम वाचः सुदिनत्व महनाम। हे इंद्रदेव, हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें, हमें चेतना युक्त सामर्थ्य तथा उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें, हमें निरोग बनाते हुए ऐश्वर्य की वृद्धि करें, हमारी वाणी को मधुर तथा प्रत्येक दिन को उत्तम बनाए।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 21 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

बुद्धि इंसान का एक ऐसा गुण जिसके लिए विद्या का अर्जन करना आवश्यक नहीं है। बुद्धि तो उस अग्नि के समान होती है जो अकेले ही पूरी ही दुनिया में प्रकाश फैलाने का काम कर सकती है। तो जब भी प्रार्थना करें, ईश्वर से सद्बुद्धि जरूर मांगें।

जीवन में थोड़ा सा भी कुछ परिवर्तन होता है तो वो बड़ा ही हमारे लिए कष्टकारक हो जाता है। परिवर्तन जितना कष्टकारी होता है उतना ही आवश्यक भी होता है। यदि हम अपनी योग्यता को परखना चाहते हैं तो ये परिवर्तन ही इसका अवसर देता है और साथ ही साथ और अधिक विकसित होने का हमें मौका भी प्रदान करता है। तो परिवर्तन से घबराई नहीं बल्कि उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक अवसर माने।

प्रार्थना प्रार्थना हम सदा ही कुछ मांगने के लिए ही ना करें, अपितु ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही प्रार्थना होना चाहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। श्रोताओ, आज मैं हूं आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्वा। क्या कभी आपने नटनी, जो कि तरह तरह के करतब दिखाती है, उसे देखा है? वो नटनी बांस पर चढ़ते समय ढोल भी बजाती रहती है और गायन भी करती रहती है, लेकिन इन सब क्रियाओं को करते हुए भी उसका ध्यान निरंतर अपने पैरों पर ही रहता है। ठीक इसी तरह गाने बजाने की तरह हमें भी अपने सारे काम करते रहना चाहिए और उसके पैरों के ध्यान की तरह हमें भी परमात्मा में अपना मन लगाए रखना चाहिए।

पुष्पै गंधम तिले तैलम काष्ठे वन्हि पयोघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। यानी जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल के बीजों में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है और गन्ने में गुड़ है, ठीक उसी प्रकार यदि हम विवेक पूर्वक देखें तो हर व्यक्ति में परमात्मा विद्यमान है।

जीवन में कभी उन चीजों के बारे में यदि हम ना सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि हम उन अनगिनत चीजों को देखकर खुश हो जाएं जो बिना प्रार्थना के बाद भी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो फिर देखिए ये जीवन हमें कितना सुखद और खुशहाल लगेगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त।

जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने पराधीनता का एक लंबा समय सहा है, वो समय जिसमें शोषण, दमन और अत्याचार की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों के आत्मगौरव और स्वाभिमान को भी कुचलने का भरसक प्रयास किया। यही कारण है कि जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए युद्ध लड़ रहा था, ठीक उसी समय भारत की महान सनातन संस्कृति को उसके मूल में स्थापित करने और उस पर काबिज लगभग 1000 वर्षों की पराधीनता से भारतीयता को मुक्त कराने का युद्ध भी लड़ा जा रहा था। और इस युद्ध के महानायक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी भी थे और भारत की सनातन संस्कृति के संवाहक भी। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता और वाल्मीकि रामायण जैसे 100 से अधिक ग्रंथों को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये एक विलक्षण कार्य था जिसे उन्होंने संपूर्ण समर्पण के भाव के साथ बहुत ही लगन से किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जन्म सन 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम भीमराज अग्रवाल और माता का नाम रिखीबाई था। माता पिता हनुमान जी के भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम हनुमान प्रसाद रखा। बाल्यावस्था में ही उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद उनकी दादी माँ राम कौर देवी ने उनका लालन पालन किया। अपनी दादी से उन्होंने बचपन में ही गीता, रामायण, वेद, उपनिषद और पुराणों की कहानियां सुनी। इन संस्कारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। निम्बार्क संप्रदाय के संत ब्रजदास जी ने उन्हें दीक्षा दी। ये वो समय था जब देश पराधीन था। हनुमान प्रसाद पोद्दार के पिता अपने कारोबार के कारण अब कलकत्ता में थे। कलकत्ता उन दिनों क्रांति गतिविधियों का गढ़ था। यहीं वो अरविंद घोष, देशबंधु चितरंजन दास और पंडित झाबरमल शर्मा के संपर्क में आए और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय होने के कारण ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से उनका निकट संपर्क बना। वीर सावरकर की लिखी पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और उनसे मिलने मुंबई चले गए। सन 1906 में उन्होंने कपड़ों में गाय की चर्बी के प्रयोग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में भी वो संपूर्ण रूप से सक्रिय रहे। युवावस्था में ही उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग शुरू कर दिया।

हनुमान प्रसाद पोद्दार भारत और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहा करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन संग्रह कर रहे थे, तब कलकत्ता में कई लोगों से मिलकर हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इस कार्य के लिए दान की राशि एकत्रित करवाई। कलकत्ता में वो लगातार क्रांति गतिविधियों में सक्रिय रहे। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के हथियारों के एक जखीरे को लूटकर उसे छिपाने में क्रांतिकारियों की मदद की थी। जेल में हनुमान प्रसाद पोद्दार ने हनुमान जी की आराधना आरंभ कर दी। फिर बाद में उन्हें अलीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। अपने जेल जीवन का सदुपयोग उन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति में किया। वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर ध्यान का अभ्यास करने लगे। कुछ दिन बाद वो शिमलपाल जेल में स्थानांतरित कर दिए गए। वहां मरीजों की चिकित्सा के लिए आने वाले एक होम्योपैथी चिकित्सक से उन्होंने होम्योपैथी की बारीकियां सीखीं, उसकी किताबों का अध्ययन किया और स्वयं मरीजों का इलाज करने लगे। बाद में रिहा होकर वो जमनालाल बजाज की प्रेरणा से मुंबई चले गए और यहाँ एक खादी प्रचार मंडल की स्थापना भी की। हनुमान प्रसाद पोद्दार जब पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के सानिध्य में आए तो उन्होंने विपुल मात्रा में भक्ति गीत लिखे, जो पत्र पुष्प के नाम से प्रकाशित हुए। मुंबई में वो अपने मौसेरे भाई श्री जय दयाल गोयंदका जी के गीता पाठ से अत्यंत प्रभावित थे। गीता के प्रति लोगों की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो श्रीमद् भगवद गीता को कम से कम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। इस तरह वो अपने इस संकल्प की सिद्धि में जुट गए। उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी और उसे कलकत्ता से छपवाया। पहले ही संस्करण की 5,000 प्रतियां बिक गईं। लेकिन उन्हें इस बात का दुख हुआ कि इस पुस्तक में मुद्रण संबंधी अनेक त्रुटियां थीं। दोबारा उन्होंने संशोधित संस्करण निकाला, लेकिन फिर भी गलतियां वैसी ही रहीं और वो समझ गए कि अपना प्रेस हो, वो स्वयं संपादन करें, तभी बात बन सकेगी। और बस यही छोटा सा संकल्प गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना का आधार बना। 29 अप्रैल सन 1923 को श्री जय दयाल गोयंदका जी ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और उसके संपादक हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। वो आजीवन इसके ट्रस्टी भी रहे। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने अथक प्रयास से गीता को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक शुद्ध पाठ वाली पुस्तक की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस तरह गीता भारत के घर घर तक पहुंच गई। अपने जीवन काल में पोद्दार जी ने 25,000 से अधिक पृष्ठों का साहित्य सृजन किया। उन्होंने मुख्य रूप से आध्यात्मिक विषयों पर ही लिखा। पद रत्नाकर के नाम से 6 भागों में संकलित उनकी काव्यधारा मन को भिगो देती है। वो लिखते हैं, श्री राधा रानी चरण बिनवो बारंबार, विषय वासना नाम करी करो प्रेम संचार, तुम्हारी अनुकंपा अमित अबिरत अकल अपार, मुँह पर सदा अहै तुकी बरसत रहत उदार।

हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने लेखन की शुरुआत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख और निबंधों से की थी, जो पुस्तक रूप में संकलित हैं। उनके लेखों और निबंधों को चार श्रेणियों में रखा गया है। पहला आध्यात्मिक, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा नीतिमूलक और चौथा विविध। निबंधों और लेखों के अलावा उन्होंने टीका साहित्य का भी सृजन किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली आदि का विशद टीका प्रस्तुत किया। श्री रामचरितमानस को प्रामाणिक रूप देने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वो अद्भुत हैं। वो चित्रकूट, अयोध्या, राजापुर, काशी आदि स्थानों पर स्वयं गए, लोगों के पास जो पांडुलिपियां थीं उनका संग्रह किया और फिर उसके बाद सभी को मिलाकर श्री रामचरितमानस के एक शुद्ध संस्करण का प्रकाशन किया। श्री रामचरितमानस की यही प्रति आज घर घर में विद्यमान है। यही कार्य उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण सहित सनातन के सभी मूल ग्रंथों को लेकर किया। गीता के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो कार्य आरंभ किया था, उससे घनश्याम दास बिड़ला अत्यंत प्रभावित थे। सन 1926 में एक अधिवेशन में उन्होंने पोद्दार जी से आग्रह किया कि वो एक पत्रिका का प्रकाशन करें। इस तरह मासिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन आरंभ हुआ। गांधी जी के कहने पर उन्होंने कभी भी इस पत्रिका में न तो विज्ञापन को स्थान दिया और न ही पुस्तक समीक्षा को। इसके पहले संपादक मंडल में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जैसे साहित्यकार शामिल थे, जो संपादक के नाम आए पत्रों का जवाब देते थे और रामायण का संपादन करते थे। कल्याण के पहले अंक में महात्मा गांधी और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के लेख भी छपे थे। गांधी जी के लेख इसमें आगे भी छपते रहे। इसके नियमित लेखकों में महर्षि अरविंद, आचार्य नरेंद्र देव, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, एनी विसेंट आदि के नाम शामिल थे। गीता प्रवचन लिखने वाले विनोबा भावे भी इसमें शामिल थे। ये पोद्दार जी के व्यक्तित्व का कमाल ही था कि वो स्थापित लेखकों से भी अपनी पत्रिका के लिए लिखवा लिया करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे सुप्रसिद्ध लेखकों के नाम इस सूची में शामिल हैं। कल्याण पत्रिका सन 1927 से गीता प्रेस से ही छपने लगी थी। गीता प्रेस ने कुछ काम तो अद्भुत ही किए थे। उस दौर में हरिवंश राय बच्चन मधुशाला लिखकर साहित्य जगत में छा गए थे। उन्होंने अवधि में गीता का अनुवाद किया, जो जन गीता के नाम से छपी। बाद में हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी में भी गीता का अनुवाद किया। हनुमान प्रसाद पोद्दार एक जुनूनी संपादक थे। वो पूरे भारत के लेखकों के संपर्क में रहते थे। उनके पास देश भर के विद्वानों के अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती जैसी भाषाओं के लेख आते थे, जिनका अनुवाद करके उसे छापा जाता था। उनका आभा मंडल ऐसा था कि लोग सब कुछ त्याग कर उनसे जुड़ जाया करते थे। सन 1936 और 1938 में बाढ़ और अकाल जैसी विपदाओं में उन्होंने समाज सेवा का कार्य भी किया था। तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार ने इसे अस्वीकार कर दिया। 22 मार्च सन 1971 को वो इस संसार से विदा हो गए, लेकिन भारत के जन जन तक सांस्कृतिक शिक्षा को पहुंचाने, उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने और लुप्त होते पुराणों और आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने की दिशा में उन्होंने जो बहुमूल्य कार्य किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: ये मेरा इंडिया।
2: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम बाल सभा।
4: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
5: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
4: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी और आज हम एक बहुत ही संजीदा से विषय पर बात करने जा रहे हैं। बाल सभा में मैं हर बार आपके लिए कुछ ऐसे विषय लाती हूँ जब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ये विषय बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लेकिन जिसे लेकर अक्सर लोग खुलकर बात नहीं करते, और आज की बाल सभा का विषय है नशे का साथ और जिंदगी का नाश। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन सच में जब हम नशे का साथ करते हैं, नशे के साथ चलते हैं, तब कहीं ना कहीं जिंदगी हर दिन हर पल मरने से भी बदतर हो जाती है। अब बच्चों ये तो आपको लगता ही होगा कि हर बच्चा बहुत सारे सपने लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, कोई कलाकार बनना चाहता है और कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं बच्चों जो इन सपनों को बीच रास्ते में तोड़ देती हैं, और नशा उनमें से एक है। अब अक्सर हम सोचते हैं कि नशा तो केवल बड़े लोग करते होंगे, है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि आज बहुत से छोटे बच्चे और किशोर इसकी चपेट में आ रहे हैं। कोई जिज्ञासा में, कोई दोस्तों के दबाव में, कोई तनाव में, तो कोई केवल ये सोचकर कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, किक मिलती है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं नशे के रास्ते पर चलने के लिए, और बस यही होता है आपकी जिंदगी की घड़ी का अलार्म। बजता है माँ बाप की आवाज के रूप में, टोकते हैं वो आपको, समझते हैं कि आप गलत रास्ते पर हो। खतरा यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो जो आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहे हैं वो आपको एक और समझ, एक और सोच पैदा करते हैं कि किसी की मत सुनना। वो ये भी बताते हैं कि माँ बाप से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपने अपने माता पिता की बात मान ली तो आप उनका रास्ता छोड़ देंगे और सतमार्ग पर चलने लगेंगे और यहीं से नशे की हार शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगे, सोचिए। वो तो चाहते हैं कि आपके सपने टूटें, वो चाहते हैं कि आप एक बुरे नागरिक के रूप में बड़े हों, क्योंकि नशा कभी भी सीधे और बड़े रूप में नहीं आता, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर आता है। कोई कहता है बस एक बार ट्राई कर लो, कोई कहता है इससे मजा आएगा, और कोई कहता है डरते हो क्या। लेकिन जो चीज़ एक बार मजाक लगती है वो धीरे धीरे आदत, और आदत में धीरे धीरे लत बन के आपके जीवन में उतरती है। बच्चों, नशे का कारोबार करने वाले लोग बेहद चालाक होते हैं, उन्हें पैडलर भी कहा जाता है। वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे फंसाया जाए। कभी आपको मुफ्त में कोई चीज़ें देते हैं, कभी आपसे दोस्ती करते हैं, कभी सहानुभूति दिखाते हैं, और उनका उद्देश्य किसी की मदद करना नहीं होता बच्चों, बल्कि नए ग्राहक ढूंढना होता है, नए ग्राहक तलाशना होता है। आप जैसे अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चों में से अपने पैडलर की तलाश करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ये सब बातें मैं आपको बाल सभा में डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कर रही हूँ। और सबसे दुखद बात यह है बच्चों कि कई बार जो बच्चा शिकार बनता है वही आगे चलकर दूसरे बच्चों को फंसाने लगता है और एक बुरे चक्र की शुरुआत हो जाती है। और आप जानते हैं, नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पढ़ाई, परिवार, दोस्ती, आत्मविश्वास, भविष्य सब कुछ प्रभावित करता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन आज हमारी बाल सभा केवल खतरे की बात नहीं करेगी, आज हम उम्मीद की भी बात करेंगे, क्योंकि तमाम खतरों के बीच में एक रोशनी जरूर होती है जो आपको वापस आपके घर का रास्ता दिखाती है। और आज ऐसी ही रोशनी के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे दो युवा साथी मौजूद हैं, जिनमें से एक दोस्त ने हमारे नशे की कठिन दुनिया को बहुत करीब से देखा है, वो उस रास्ते पर गए हैं, संघर्ष किया है और फिर साहस के साथ उस रास्ते से बाहर निकलकर आज एक नया जीवन जी रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये बताएगी कि गलती होने के बाद भी जीवन खत्म नहीं होता, सही निर्णय, परिवार का साथ, मित्रों का सहयोग और आपकी खुद की इच्छा शक्ति इंसान को वापस लाकर खड़ा कर सकती है। तो सबसे पहले हम अपने पहले साथी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहादुरी से इस रास्ते से बाहर निकले हैं। नमस्ते।
6: नमस्ते मैम।
4: आपका परिचय पूछ सकती हूँ अगर आपकी इच्छा हो हमारे और साथियों को बताने की? आपका नाम क्या है?
6: मैम, मैं अपना परिचय कुछ अलग तरीके से दे सकता हूँ, अपना नाम बिना बताए?
4: बिल्कुल, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। हम आपके काम को जानना चाहते हैं और कई बार हमारा काम हमारे नाम से ऊपर होता है। तो आप बताइए कि आप अगर खुद का नाम रखते, जो आपका नाम है वो बिल्कुल मत बताइए, आप अगर खुद का नाम रखने का आपको मौका मिलता तो क्या रखते, और आज हम आपको उसी नए नाम से बुलाएंगे।
6: तो मैं जो अपना नाम रखता, नया नाम रखता, जो मुझे पसंद भी है कई, तो मैं अपना नाम एलेक्स रखता, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत पसंद है।
4: ठीक है, तो आज इस पूरे बाल सभा के दौरान हम आपसे जब भी बात करेंगे तो एलेक्स आपको पुकारेंगे।
6: जी,
4: तो आज आपके पसंदीदा नाम की शुरुआत हो चुकी है। एलेक्स, आपका बचपन का थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसा था?
6: जी, बचपन हमारा ऐसा था कि हम नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मतलब घर वाले काम करते थे और बाहर हम घूम रहे बच्चे, हम जैसे छोटे बच्चे घूमते थे हम वैसे ही बाहर घूमना फिरना करते थे। और इसी दौरान जो हुआ कि हमारे साथ जो हम भैया लोगों में बैठे, बड़े बच्चों में, तो उनको हमने देखा कि वो क्या करते हैं, वो कैसे जीते हैं, तो हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ पे वो जो नशा करते हैं, वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगने लगा था पहले कि यार भैया लोग करते हैं, ये क्या चीज़ करते हैं, जो नशा करते हैं वो ऐसे करते हैं, जिससे हमें लगता था कि यार हमें भी बड़े होके करना है एक बार।
4: तो आप देख रहे थे अपने से बड़े लोगों को?
6: जी।
4: और आपको लग रहा था कि ये जो जिंदगी जी रहे हैं ये हमारी जिंदगी से थोड़ी बेहतर है, इस जिंदगी में मजे हैं।
6: जी,
4: है ना। तो आपको भी मजा करने का ख्याल बचपन में ही आया।
6: जी,
4: ठीक है। पहली बार आपकी नशे से मुलाकात कब हुई?
6: जी, पहली बार हमारी नशे से मुलाकात जब हुई थी, जब हमारी जो घर की सदस्य हैं, जो हमें सबसे ज्यादा प्यारी हैं, दादी जी,
4: जी,
6: तो उनकी तबीयत खराब थी, तो सब उनकी तबीयत के पीछे लगे हुए थे, तो हम क्या करते थे, हमें टाइम मिल जाता था और भैया लोग के साथ आना जाना हॉस्पिटल में लगा ही रहता था हमारा भी, तो उनके साथ जब वो नशा करते थे तो हम भी उनके साथ ही उस समय होते थे, हमें देख के खुशी होती थी कि यार हम इनके साथ खड़े हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, उससे हमें लगता था कि हमारी एक नई पहचान बनेगी। फिर उसके बाद कभी भैया ने हमसे पूछा कि ट्राई करोगे, तो हमने पहले तो मना किया, फिर उन्होंने ये कहा कि भाई देखो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो हमने ये चीज फिर ट्राई की और ये शुरुआत हमारी जभी से हुई।
4: तो एलेक्स, आपकी बातों में जो दो बातें मुझे अपने सुनने वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, इनफैक्ट अगर मुझे बड़े भी सुन रहे हैं, तो एक दो बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि घर में यदि कोई ऐसा कोई घटना या ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब घर के लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं
6: जी,
4: तो अपने बच्चों का ध्यान रखना ना भूलें। ऐसे वक्त पर जब आप पूरी तरह से किसी काम में लगे हुए हैं, घर में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ये ज़रूर देखें कि उस वक्त आपके बच्चे आपकी उस व्यस्तता का फ़ायदा उठाकर कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज़ जो एलेक्स मुझे तुम्हारी बातों से नज़र आई है। दूसरी चीज़, तुम लड़के हो
6: जी,
4: यही कहा था आपसे
6: जी।
4: आप याद रखिए, लड़का होने का मतलब गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल नहीं है। मैं अगर बहुत खुलकर कहूँ तो लड़के होने की पहचान को जो इस तरीके से किया जाता है कि आप नशा कर सकते हैं, आप रो नहीं सकते हैं, आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं, नहीं, ये गलत बातें हैं और इन्हें आज ही स्वीकार करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी?
6: उस वक्त मेरी उम्र थी 13 या 14 साल।
4: कभी नशा करके जब पहली दूसरी बार आए थे तो खुद को ऐसा महसूस कर रहे थे कि घर वालों से क्या कहोगे या क्या हुआ था?
6: जब पहली बार नशा किया तो धूम्रपान किया था, जिससे बहुत उत्साह से भर गया था मैं, और मैंने अपने दोस्तों जो मेरे साथी थे उनको ये बताई चीज़ कि यार मैं आज ये करके आया हूँ, भैया ने मुझे कराया, और उन लोगों ने फिर वो बोलने लगे भाई तू तो अब बड़ा हो गया, तू ये करने लगा, तो उनके बीच एक अच्छी, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी इमेज बन रही है।
4: ओहो, यहाँ पे भी बच्चों आप सुनते चलिए, बहुत बारीकी से ध्यान लगाकर कान लगाकर आज की बाल सभा सुनिए और समझिए कि जब एलेक्स कोई गलत काम करके आया तो उसे गलत काम की अच्छी इमेज बन रही है। ये एक भ्रांति हो रही थी कि कुछ गलत काम करके आया तो मतलब उसके कॉलर और ऊंचे हो गए हैं, तो ये आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो हमें अपनी इमेज बिल्डिंग की चिंता है ना, और वो भी गलत इमेज बिल्डिंग की, ये बहुत मायने रखती है। कब आपके घर वालों ने पहली बार आपको पकड़ा?
6: जी, ऐसा हो गया था कि हम भैया लोगों के साथ धूम्रपान कर रहे थे और जो हमारे मोहल्ले के पड़ोसी हैं उन्होंने हमें देख लिया और उन्होंने इस चीज की फोटो खींच के हमारे घर वालों को भेज दी थी।
4: क्या हुआ फिर?
6: फिर घर वालों ने हमें मारा भी था और ये चीज हमें उस समय समझाई थी कि ये चीज तुम्हारी उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, ये चीज गलत है।
4: तो उस मार का और उस डांट का आप पे क्या असर पड़ा था?
6: उस समय ऐसा लग रहा था कि सब तो करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जहाँ पिताजी भी हैं वो भी ये सब चीजें करते हैं, तो हमें ये लग रहा था मन में कि हम भी कर सकते हैं, जब आप कर सकते हैं तो हम भी करेंगे और हमें भी करना है
4: जी।
6: फिर उसके बाद जब ये मार पड़ी तो फिर 2-4 दिन बाद जब मैं उन भैया लोगों के पास वापस गया, फिर उन्होंने पूछा कि 2-4 दिन से कहाँ थे, दिखे नहीं। फिर जब मैंने ये चीज़ बताई तो उन्होंने ये चीज़ भी कही कि देखो जब तुम्हारे पिताजी कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो ये चीज़, वो तुम्हें गलत बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है कि इससे टेंशन दूर होता है, तुम्हें भी पढ़ाई का टेंशन है, दुनियादारी का टेंशन है, वो ये चीज़ बताने लगे कि ये चीज़ अच्छी है।
4: एलेक्स, रुकते हैं, फिर से बच्चों से बात करते हैं क्योंकि ये विषय ही इतना, बच्चों क्या कहूँ, मतलब बहुत तकलीफ दे विषय है। कहते हैं ना कि यहाँ पर माता पिता को कान लगाने की शायद ज़रूरत है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना। बच्चों को कभी भी आप जब उपदेश देते हैं तो मुझे लगता है शायद उन्हें इतना समझ में नहीं आता जितना वो आपके व्यवहार से सीखते हैं। तो यहाँ पर आप एलेक्स की बात सुनकर ये समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम बच्चों से ये कहते रहें कि ये गलत काम है और उनके सामने हम खुद करते रहें तो ये एक गलत नज़ीर पेश करता है, और आपको शायद यहाँ पर रुक जाना चाहिए और थम जाना चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी गलत काम जो बच्चों के लिए गलत है वो इक्वली आपके लिए भी गलत है, और अगर आप वो बच्चों के सामने कर रहे हैं तो कल आप बच्चों को उसे करने से मना करते वक्त रुक नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑलरेडी माहौल में ऐसे लोग हैं जो उन्हें बता रहे हैं कि भाई पिता करते हैं तू क्यों नहीं। एलेक्स, आगे की कहानी।
6: फिर उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया तो फिर हम पहले जो हम करते थे कि हम कभी कभी धूम्रपान करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत लगी कि हम डेली करने लगे
4: जी,
6: और धूम्रपान करने के बाद हमें शुरुआत में ऐसा होता था कि हमारा माइंड जो था काम करना बंद कर देता है क्योंकि नशा होता है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता था कि अब हाँ अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं। और फिर ये लाइफ अच्छी लगती थी भैया लोग की कि धूम्रपान कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं, और उनकी ये हमें ऐसा लगता था कि ये उनकी आज़ादी है और ऐसी आज़ादी हमें भी चाहिए।
4: तो बच्चों आप सुन ही रहे होंगे कि ये आज़ादी आपको कौन से गर्त में ले जा रही है ना। और एलेक्स से हम कुछ और जानेंगे, लेकिन एक और हमारी साथी हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो खुद तो इस राह पर नहीं गई, लेकिन वही बात कि जब उसने बचपन से देखा कि घर के लोग नशे के आदि हैं तो उसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। नमस्ते।
7: नमस्ते,
4: क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम प्रीति है।
4: प्रीति, आपकी नशे से पहली मुलाकात इनडायरेक्टली कब हुई, क्योंकि आप तो इस मार्ग पे नहीं है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आपकी मुलाकात कब हुई?
7: देखा जाए तो पहली मुलाकात, पहले तो जब छोटे छोटे थे तो किसको लगता है कि क्या हो रहा है आसपास, ज़्यादा पता नहीं था। जब थोड़े बड़े हुए, स्कूल वगैरह जाना शुरू किया और स्कूल में बताया जाने लगा कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब हम घर आते थे और घर पर देखा कि घर पर तो ये सारी चीज़ें हैं, फिर स्कूल में टीचर क्यों ऐसा बोल रही कि ये गलत है, तो इतना छोटे बच्चे के मन में सवाल बहुत आते हैं, सवाल, और मुझे तो सवाल करना बहुत पसंद है। तो फिर एक दिन मैंने अपनी टीचर से पूछा कि मैम नशे से क्या होता है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि अगर कोई नशा कर रहा है तो इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, आप जो नशे की चीज़ें मिलती है अगर आप उससे भी देखोगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं घर गई, अब यू था छोटे बच्चों को मम्मी पापा को दुकान भेजना रहा, तो उस टाइम पे मेरे घर पे तो सबसे बड़ी मैं ही थी, लेकिन छोटी थी तो मम्मी बोलती है दुकान चले जाओ, अपने लिए भी कुछ ले लेना और हमारे लिए भी ये ले आना। चली तो मैं गई, लेकिन जब वापस लेकर आ रही थी तो मुझे टीचर की बात याद आई कि इस पर लिखा होता है, और जब मैंने उसको पढ़ा और मैंने अपने अपनी मम्मी से पूछा कि ये तो गलत है ना, तो मुझे एक सीधा और सरल जवाब मिल गया, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम इस इन सारी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे सवाल नहीं करते, टीचर तो पागल है। तो ऐसा कह दिया गया, तो मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा बोलूँगी तो हो सकता है कि मुझे ही डांट पड़ जाए, तो मैं चुप हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस यही हुआ कि शाम का टाइम था, स्कूल से हम लोग आ गए, खेल वेल कर भी आ गए, अब घर पर काम करना था, लेकिन पापा उसी टाइम पर पापा आए, और पापा शायद मदिरा पान कर कर आए थे, तो ये था ना कि थोड़ी थोड़ी सी रेड आइज हो जाना, चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा करना, तो वो आए तो गुस्सा करने लगे। अब हम यही सोच रहे बैठकर कि आखिर हुआ क्या है, कुछ तो हुआ होगा। फिर मम्मी ने कहा कि पापा को पानी दे दो, हम पापा के पास गए, हमने बोला पापा पानी चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला अपने काम से काम रखो। तो अब उस दिन से सवाल आया कि ये क्या है, फिर इसमें जानने की इच्छा हुई कि और क्या है, क्या हम ये नहीं कर सकते, या फिर पापा ऐसे क्यों थे, या फिर मम्मी जो मंगाती वो क्या है, क्योंकि नशे कई प्रकार के होते हैं, तो अभी आता ना ये क्यों है, कैसा है, बहुत सारे सवाल आए। उस दिन से हमने जानना शुरू किया, वो आई थिंक पहला दिन था हमारा कि हमने जाना कि ये सवाल उठा, मतलब कि हमने उसको जाना कि वो क्या है।
4: प्रीति एक बात बोलूं, जब आप बात कर रहे हो ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उन सब बच्चों के लिए बहुत दर्द पैदा हो रहा है जो अपने घर वालों से कितनी उम्मीद करते हैं ना कि मतलब यही है मेरे सबसे करीब, इन्हीं से मैं पूछ सकती हूँ कि सही क्या है गलत क्या है, और वही हमें अपनी बातों से अपनी आदतों के कारण खुद से दूर कर रहे हैं कि जाओ तुम्हारे काम की चीज़ नहीं। और मैंने बहुत घरों में देखा है कि ठीक है आपने जो स्थितियाँ बताई हैं, मैंने बहुत ऐसे ऐसे घरों में देखा है जहाँ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से बच्चों से कहते हैं कि बेटा अभी कुछ देर तक कमरे में मत आना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कमरे से बच्चे को भगा रहे हैं तो उसकी बाल मन पर क्या असर पड़ रहा है? आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, यकीन कीजिए आपकी पार्टी में जब आप बच्चों से कहते हैं कि थोड़ी देर आंटी अंकल को अपना काम करने दो, देखो आप लोग भी तो मज़े करते हो, अभी हम लोग मज़े कर रहे हैं, तो नशा मज़े की चीज़ हो सकता होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये प्रीति की बात सुनकर हमेशा के लिए याद रखिएगा। प्रीति आगे की कहानी।
7: उसके बाद सवाल जानने की इच्छा आगे आगे जानते रहे, थोड़े थोड़े और बड़े हुए तो हमारा स्कूल सरकारी, तो उसमें ये लड़का लड़की दोनों साथ में ही पढ़ते हैं
4: जी।
7: तो जब हमने साथ में देखा दुकान, हम भी भाई लंच हुआ है और जाना है हमको चॉकलेट लेने, तो हम दुकान पहुंच जाते हैं, जब हम देखते कि हमारे ही साथ के कुछ बच्चे नशे की चीज़ें ले रहे हैं, तो अब जब हमने उनसे बातचीत करी, हमने बोला टीचर तो कल बोल रही थी कि नहीं लेना है, तुम तो ले रहे हो, तो बोले अरे यार तुम्हें नहीं पता, ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो बड़े हो गए। मैंने बोला ऐसे कैसे बड़े हो गए? तो बोले तुम है ना एक बार अपने भाई से या तो किसी अच्छे दोस्त से पूछ के जाके, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसे जाके पूछो। तो मैंने बोला यार मैं एक बार वापस टीचर से पूछूंगी कि क्यों ऐसा, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों। ये सवाल आएगा ना कि सिर्फ लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि स्कूल में तो कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या सिर्फ ये लड़के ही कर सकते हैं? तो जब इस बारे में मैंने अपने दोस्त से बात किया तो बोले ये ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर उसने बताया कि वो भी एक नशा करती है।
8: अच्छा, आपकी दोस्त ने बताया कि वो खुद भी नशा करती है, तो मतलब तहें खुलती जा रही हैं। अभी हमको लग रहा था कि हमारे माता पिता ही हमसे नशे का सामान मंगा रहे हैं, जो कि उन्हें कभी नहीं मंगाना चाहिए। अपने बच्चों को आप गलत रास्ते का परिचय स्वयं दे रहे हैं कि बेटा इस तरीके से इस रास्ते से होकर 2 रुपए में ये आ जाता है, 20 रुपए में वो आ जाता है ना। तो धीरे से बच्चे फिर घर से पैसे भी चुराने लगते हैं, है ना। ऐसे भी बच्चे आपको रास्ते में मिले होंगे। ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं है, बहुत अंधेरा है इस रास्ते पर, और पर जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने बात की कि आज की बाल सभा सिर्फ खतरे की बात नहीं करती बल्कि उम्मीद की रोशनी भी बिखेरती है। यहाँ तक तो ठीक है कि नशे से परिचय हो गया, माता पिता को समझ में आ गया, और आपको भी अपने माता पिता साफ साफ समझ में आ गए, है ना। क्योंकि कई बार आप उम्र में बड़े होने से बड़े नहीं हो जाते दोस्तों, कई बार आप बड़े होकर बच्चों के सामने बहुत गलत उदाहरण पेश कर जाते हैं, और उस वक्त आप बच्चों से कुछ कहने लायक नहीं बचते। आप लोगों को, दोनों से मेरा सवाल है, आप खुद नशे से बहुत बुरी तरीके से लड़कर इस रास्ते पर आए हो कि आज लोगों को नशे की लत से बाहर निकालने का काम कर रहे हो, है ना। एलेक्स आप भी, तो आपके लिए तो मैं चाहूंगी कि हमें, हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं आज बाल सभा में, वो अपने घर पर खड़े होकर सिर्फ आपके रिस्पेक्ट में एक बार खड़े हों, क्योंकि नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों को नशे से बचाना बहुत हिम्मत का काम है दोस्तों। तो एक सेकंड के लिए खड़े होइए, फिर अपनी जगह पर बैठ जाएगा, और एलेक्स के लिए खुश होइए और अपनी सारी शाबाशियां भेजिए इसको कि इस लड़के ने उस रास्ते से बाहर निकलकर और बच्चों को बाहर निकालने के लिए तय किया है। एलेक्स बहुत बधाई तुमको, तुम बहुत तारीफों के लायक हो, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने। कैसे आए इस रास्ते पर कि आप अब दूसरों को नशे से बचाओगे?
6: मैं जब नशा करता था तो उस समय हमारे स्कूल में हमारे संस्था की दीदी आई और पुलिस वाली मैम आई, और उन्होंने ये कहा कि पास ही में एक कॉलेज है और उसमें हम कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाएंगे और भी चीज़ें सिखाएंगे। तो हमें लगा कि यार चलो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो रास्ते में जाते जाते नशा करने को मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता तो दूर है तो खाली है, तो वहाँ पे कहीं कई जगह होती है ना अंधेरी सड़कें या कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है उस पे, उसके अंदर बैठ के ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था। तो पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, वहाँ जाना फिर आदत में बन गया और अच्छा लगने लगा वहाँ जाके भी। और जब हमने हमारी निहारिका दीदी को देखा तो उनसे बात करने में भी अच्छा लगने लगा, और उन्होंने हमें एक सेशन के दौरान बताया कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो जो आप किसी से नहीं कर पाते तो वो आप आके मुझसे कर सकते हो, मैं उस बात को गोपनीय भी रखूंगी, और आपको उसके लिए अगर सजेशन चाहिए होगा तो वो भी देंगे। तो फिर हमें लगा कि यार, पहले तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही बात करेंगे, हम तो अपना नशे में ठीक है, कुछ भी हो, दुख दर्द हो, नशा करो, सब टेंशन फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ऐसा धीरे धीरे लगने लगा, क्योंकि नशा की जो आदत थी वो हो गई थी, और जो ये पहले हम मदिरा पान धूम्रपान करते थे, फिर ये ऐसा हुआ कि ये बड़े नशों
8: में तब्दील हो गई,
6: बड़े नशों में तब्दील हो गई, और दोस्ती यारी भी ऐसी हो गई थी कि जो बड़ा नशा करते थे और उनको देख के नशा करने की, बड़े नशे करने की आदत हमें भी हो गई थी। फिर जब एक बार पापा जी ने भले ही नशे में हमसे कहा, लेकिन ये कहा कि तुम घर के बड़े लड़के हो, और अब हमारे बाद मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था उस समय, और हमारे बाद अब तुम्हें देखना है, तो इसलिए अभी से ही कुछ ऐसा करना लग जाओ जिससे हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो तुमसे। क्योंकि हमारा कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े घर के बड़े मतलब घर के बड़े लड़के हो तो जिम्मेदारियां उठाओ, घर का सामान लाना ले जाना करो, कुछ कुछ काम ऐसे जो घर के बड़े करते हैं अब वो तुम करो। तो ऐसा हुआ, फिर रियलाइज हुआ कि यार नहीं, अब ऐसा करना है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद कर दी है, तो शरीर आदी होने के बाद ऐसा लगता था कि अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हेलुसिनेशन जो होता है वो होने लगता था कि हमारे आसपास कोई है, या हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर गर्म होना, शरीर गर्म होना, अचानक से ठंडी लगना, ऐसा बहुत बार होने लगा। तो उन सब चीज़ों को देख के ये समझ आ गया था कि अब अगर ये चीज़ आगे तक की तो या तो शरीर नहीं बचेगा या फिर ऐसा होगा कि इसके आदि होके, इसमें ऐसा था कि ख़त्म दोनों तरफ ही होना था हमें। क्योंकि इसकी आदत ऐसी हो गई थी कि मैंने जब एक बार हिसाब लगाया तो मतलब दिन का 300-400 रुपए का ये चीज़, तो मैंने एक बार हिसाब लगाया तो मैंने एक साल में ही कम से कम 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का ये सब नशा कर लिया। फिर मन में आया कि यार अगर मैं वो 1,00,000 रुपए बचाए होते तो आज मतलब कहीं ना कहीं मेरे काम आते, क्योंकि कई बार फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लगा था तो ऐसा लग रहा था कि यार अगर पैसा होता तो काम आता, घर वालों को भी दे सकते थे ऐसा। फिर दीदी मिली और उनसे बात भी की और उनको ये चीज़ें हमने बताई कि दीदी हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो दीदी ने फिर हमारी काउंसलिंग भी करवाई, हमें ये चीज़ें समझाई कि ये चीज़ें गलत है, तो फिर हमने ये चीज़ें छोड़ने की कोशिश करना शुरू की। और मैं बस अपने जो भी साथी हमें सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए आप इन सब चीज़ों में जाने ही मत।
8: लंबा रास्ता, कठिन रास्ता
6: जी,
8: और बिल्कुल रोशनी नहीं है
6: जी,
8: सब तरफ अंधेरा है। दिमाग यहाँ तक भ्रामक स्थिति में आ जाता है, जो आपने हेलुसिनेशन की बात की, दिमाग उस स्थिति में पहुँच जाता है जब आपको लगने लगता है कि भ्रांतियाँ होने लगती हैं कि आपके आसपास कोई है, आपको ये लगने लगता है किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको लगता है कुछ काम करोगे तो गिर पड़ोगे, ढीला पड़ जाता है शरीर पूरी तरह से और आप जल्दी जल्दी थकने लगते हो, है ना। एक और बात कही थी एलेक्स ने कि मरना दोनों तरफ था, क्योंकि नशे के आदतन व्यक्ति हो जाते हो तब लौटना उतना आसान नहीं लगता जितना आसानी से आज हम बात कर रहे हैं बच्चों बाल सभा में। हमें बहुत सारे किशोर बच्चे सुन रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि उनके माता पिता भी इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और ये बात समझेंगे कि हर संभव प्रयास कीजिए अपने बच्चों को गलत रास्ते पर बचा लीजिए जाने से, क्योंकि उसने कहा ना कि जहाँ से लौटना मुश्किल हो वहाँ जाने से पहले कई कई बार सोचिए, क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद कर अगर किसी ने रस्सी नहीं फेंकी, निहारिका दीदी जैसी कोई दीदी आपको नहीं मिली जो आपको इस काले अंधकार में से निकाल लें, तो आपका जीवन सच मानिए जीने से बदतर हो जाता है ना। आप बात की गंभीरता को समझेंगे और एलेक्स जैसे लोगों से प्रेरणा लेंगे, उसको दीदी मिली, उन्होंने काउंसलिंग कराई, कैसे कैसे वो निकला है। लेकिन 1% ये भी तो हो सकता था कि कोई दीदी ना मिलती
6: जी,
8: तब ये जीवन नहीं होता ना। आज आप इस स्टूडियो में बैठे हो, आज आप बैठे नहीं होते ना
6: जी, बिल्कुल
8: किसी अंधेरी गाड़ी की तलाश कर रहे होते
6: जी,
8: है ना, कोई अंधेरा रास्ता देख रहे होते, किसी भैया को ढूंढ रहे होते जो नशे कर रहे उससे ज्यादा नशे की आदत हो गई होती और फिर क्या हो रहा होता, कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन आज ये रास्ता कितना अच्छा है, आज इस स्टूडियो में कितनी रोशनी है और सबसे बड़ी बात आप दोनों बच्चों के दिलों में कितनी रोशनी है। प्रीति, लौटें तुम्हारी तरफ, कभी पापा को मना किया नशे के लिए?
7: हाँ, पापा को मना किया मैंने। एक बार तो ऐसा हुआ था जब थोड़े बड़े हो गए तो ये होने लगा ना, समझ में आने लगा, और इसके बाद बोलना, बोलते ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी

0: बातें हो। तो मैंने कहा, सोचा उनकी बात पे, लेकिन मैंने बोला जब ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे तो मुझे कहीं तो बोलने का मौका मिलेगा। जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया तो सबसे अच्छी बात ये हुई ना कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप बोलो, है ना। तो अब लगने लगा कि भाई कोई मौका दे रहा है। और जब दीदी ने कहा कि आप बात हमें कह सकते हो, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब मैं तो मौका ढूंढ रही थी कि मेरे मन में सवाल है, कोई तो जवाब दे,
1: कोई तो सुने, पहली बात कोई तो बात सुने,
0: बहुत जरूरी होता है ना, क्योंकि सबसे सेफ स्पेस घर माना जाता है, माता पिता माने जाते हैं। और अगर वो ही ना सुने, वो ही तुम्हें कह दे कि तुम छोटे हो, तुम जो बोलोगे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बात काम की है। तो अब इसके बाद हमने बोला कोई तो सुन रहा है हमें, हम तो बोलेंगे। अब उसके बाद से तो लगता है कि बोलेंगे। जब वहाँ पे हमने बताया कि दीदी पापा से जब हमने पूछा था तो पापा बोलने लगे कि तुम्हारी काम की चीज़ नहीं है, मम्मी बोलती कि अपने काम से काम रखो, तुम्हें 5-10 रुपये मिल रहा है ना, बस ये काफ़ी है। तो मैंने कहा, घर वाले भी बोल रहे थे दीदी 5-10 रुपये मिल रहे वो तो ठीक है, तो अब क्या बताऊँ मैं घर पे बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो बोले कि ये तो इस चीज़ तो गलत है, तुम्हें पता है इससे तुम्हें भी नुकसान हो रहा है। मैंने बोला दी मैं तो नशा करती नहीं हूँ, मुझे कैसे नुकसान होगा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा धूम्रपान करते होंगे तो उसका जो धुआं होता है वो भी तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, और मदिरा पान कर कर आते हो तो इसमें घर में झगड़े कितने होते हैं, अगर हम अपने आसपास ही देख ले तो कितने झगड़े होते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है ना कि मान लो कि बगल वाले के घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी आएगी कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ गूंज रही है, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले घर में झगड़ा हो रहा है, हम तो मूवी देख रहे हैं, लेकिन कई लोग बहुत, जिसके घर में हो रहा है वो कितना परेशान होता है। बच्चा है तो उसके माता पिता सुन नहीं रहे हैं, वो बीच में जाएगा तो उसको डांट देंगे। तो फिर बच्चे के मन में आता ना कि इसमें हमारी क्या गलती है, एक चीज बहुत आ जाती है कि हमारी क्या गलती है, हमने थोड़ी ना कुछ कहा है किसी को, ना कोई हमारी बात सुन रहा है और ना ही कोई हमें जवाब दे रहा है, ऐसे जैसे कि हम हैं लेकिन है ही नहीं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए। और लड़कियों का तो ये मान लिया जाता है कि लड़कियों की बात कौन ही सुनता है, लेकिन इसका मैंने बोलना इसलिए चालू किया क्योंकि मुझसे जो छोटे भाई बहन हैं, अब इसका असर उन पर
1: देख ना जाए।
0: हाँ, अब इसका असर उन लोगों पर जाना शुरू हो गया। जैसे कि मैं तो नशे से दूर हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, लेकिन मुझसे जो छोटा भाई है वो इन चीज़ों में चला गया क्योंकि बीच में अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर चली गई थी।

0: ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। मैं 10th या 9th में थी, मैंने उनसे सवाल किया कि पापा ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे, इस बात पे झगड़ा होने लगा उनका। तो मैंने बोला अगर आपको ऐसे झगड़ा करना है तो हम नहीं रह रहे आपके साथ। मैंने बोला मैं भी हॉस्टल में रहूँगी, मेरे भाई बहन भी हॉस्टल में रहेंगे। तो बोलने लगे तू इतनी बड़ी हो गई है, खुद से फैसला लेने लगी है ज्यादा। और ये होता ना कि ज्यादा बोलने लगे तो जुबान चलाने लग गई है,
1: हद में रहो।
0: हद में रहो, अपनी हद में रहो। तो मैंने उस दिन शांत हो गई, मैंने दूसरे दिन से वापस बोला कि पापा नहीं, क्यों कर रहे हो आप। तो फिर एक बार तो ऐसे ही मेरा और पापा का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, पापा मान ही नहीं रहे थे। वो उस दिन शायद कोई फेस्टिवल था और घर में मेहमान आने वाले थे। अब हम सब लोग हैं, मम्मी के साथ में तैयारियों में लगी हुई हूँ, भाई बहन अपने खेलने में लगे हुए हैं, और वो कहीं से आए हैं और मदिरा पान कर कर आ गए हैं। अब ये था ना कि अब इंसान चिड़चिड़ा वाला, गुस्से वाला, अब वो लगे चिल्लाने के लिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है जबकि हम कर ही रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो बोले मैं तो करूँगा, मेरा पैसा। तो फिर उसमें मेरी थोड़ी सी बहस हो गई। तो मैंने बोला पापा अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं
1: नहीं
0: करूँगी,
1: करूंगी।
0: मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो बोले मत कर, मेरा क्या जा रहा है, तू बात नहीं करेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं होगा। तो लगभग 1 हफ्ते तक मैंने अपने पापा से बात नहीं करी थी।
1: प्रीति की बातों से जो निकल कर आया है वो इतना है कि बंद दरवाजों के बाद भी आप अपनी कितनी भी मोटी दीवारें बनवा लीजिए, लेकिन जब आप नशे के आदी हो जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आवाज़ें बाहर तक पहुंचती हैं, और उस वक्त उन बच्चों के मन की स्थिति समझिए जो बार बार ये पूछते हैं इसमें हमारा क्या दोष है। जब वो किसी के सामने जाते हैं और बाहर वाले उनसे कहते हैं अरे कल रात में तुम्हारे घर पे बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष है जो चुपचाप बैठे हुए हैं। प्रीति और एलेक्स ने आज मुझे लगता है कि बालसभा में ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अगर हमें बच्चों से ये कहना है कि आप अपनी हद में रहो, तो ये निश्चित मानिए कि बड़ों के लिए भी कुछ हदें हैं जिसे उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो प्रीति और एलेक्स, बातें इतनी आसान नहीं हैं, समस्या इतनी छोटी नहीं है कि एक बार की बातचीत में हम किसी निदान या समाधान पे पहुंच सकें, लेकिन हाँ रास्ता कठिन है तो कहीं ना कहीं आप जैसे अगर रास्ते में हम सफ़र हुए तो रास्ता आगे हमें ले ज़रूर जाएगा, हमें उस उम्मीद की रोशनी की तरफ ज़रूर ले जाएगा जहां कुछ एलेक्स जैसे लोग निकल कर आएंगे, नशा छोड़ेंगे और कुछ आवाज़ें रवीना दीदी और निहारिका दीदी जैसी भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखाएंगी और शायद आपके जीवन को संवारने का प्रयास करेंगी। यही कह सकती हूँ कि इस बातचीत को हमें लगता है थोड़ा और लंबा होना चाहिए, पर आज की बाल सभा में हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमने जितनी बातें की हैं, क्योंकि सिर्फ बातें करते जाने से तो बच्चों कुछ नहीं होगा। और श्रोताओं आप भी हमें सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे होंगे, बच्चों की बातों में जो निकल कर आया है ना उसमें सिर्फ बच्चों के लिए सीख नहीं है, बहुत कुछ बड़ों के लिए भी सीख है। और आज की बालसभा मुझे लगता है कि सिर्फ बालसभा नहीं रह गई है बल्कि किशोर सभा भी हो गई है और बड़ों के लिए भी एक सभा हो गई है जिसमें आपको ये समझना होगा कि नशा कोई किक नहीं है, कोई मौज नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि आज कई बार ऐसा हुआ है इन दोनों से बात करते हुए कि मुझे लगा है कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, कितने अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो एक अंधेरी गाड़ी, एक अंधेरा रास्ता, कुछ ऐसे लड़के तलाश रहा है जो उसको उसके घर की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाकर एक बड़ी समस्या की तरफ धकेल रहे हैं जिसका नाम नशा है। आज का ये शो, आज की बाल सभा हमें हिम्मत, हमें मार्गदर्शन और हमें बदलाव की इच्छा देती है कि कोई भी व्यक्ति इस अंधेरे से बाहर आ सकता है अगर एलेक्स आ सकता है तो, है ना एलेक्स?
2: जी बिल्कुल
1: आ सकता है।
2: जी जी।
1: तो एक बार आप दोनों को फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें आप दोनों से बातचीत सुनकर और ये पूरी बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी कि पहले तो हमें इस रास्ते पर जाना नहीं है, और अगर गलती से कहीं हम चले गए हैं तो लौटना मुश्किल नहीं है, आप लौट सकते हैं, बस आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज की बाल सभा यहीं संपन्न होती है। प्रीति आपका और एलेक्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा। ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
3: बाल सभा।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल

0: के लिए सुनते रहिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: जैसा कि हमने पिछले दफा बात की थी भारतीय सशस्त्र सेनाओं के बारे में, और कर्नल साहब ने हमें एक परिचय दिया था कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं क्या होती हैं, और आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि आर्मी का या भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसका संगठन क्या होता है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, साथ में सुरक्षा का प्रश्न रहता है, तो जटिलताएं भी आती होंगी, तो संगठन का स्वरूप कैसा रहता है?
3: किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है
2: जी,
3: वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या
2: जी
3: है। आर्म फोर्सेस के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है, जैसे कि किस तरह की टेरेन में वो लोग ऑपरेट करने वाले हैं, बॉर्डर के ऊपर किस तरह की हमारी टेरेन है, किस तरह के रिसोर्सेस हमारे पास हैं, मैन पावर के संदर्भ में वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा जो जहाँ पे हम डिप्लॉय हो रहे हैं, जहाँ पे जिस तरह की हमको तैनाती है, जहाँ का कि हमको सुरक्षा करनी है, उसके जो साथ में लगा हुआ जो देश है
2: जी,
3: उसका जो बॉर्डर, उससे हमारे संबंध कैसे हैं
2: जी,
3: और उस लोकेशन का, उस जगह की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस प्रकार की होगी।
2: यानी वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं चल पाती?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। हर जगह एक डेजर्ट्स के डिप्लॉयमेंट में और जो है हाई एल्टीट्यूड के डिप्लॉयमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। इसी तरह से पंजाब के प्लेन्स में और सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत अलग है, उसमें बहुत फ़र्क आता है। जो हम पाकिस्तान के ऊपर में डिप्लॉय करते हैं या नेपाल बॉर्डर पर डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क आता है, क्योंकि हमारे संबंध, जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपको वदित है ही, नेपाल और पाकिस्तान में कितने अलग अलग हैं, या भूटान के साथ अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो किस तरह से है। तो ये इन सब बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे फोर्सेस का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा
2: जी।
3: ये एक ऐसा टास्क है जो कि 24 घंटे, जिसमें कि आपको सचेत और सजग रहने की जरूरत होती है, और देश का चप्पा चप्पा, यानी कि आपको पूरा का पूरा एरिया जो है इसमें कवर करना होता है
2: जी।
3: आप किसी तरह का गैप नहीं रहने दे सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये इलाका छूट गया है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो देश की सेनाएं हैं
2: जी,
3: वो उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है हम एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आर्मी के बारे में बात करता हूँ
2: जी।
3: तो आर्मी जो है हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं का सबसे बड़ा कंपोनेंट है, तकरीबन 11.5-12 लाख की में जो है
2: संख्या होती है,
3: संख्या होती है। इसका जो हमारा जो हेडक्वार्टर है आर्मी का वो दिल्ली में है, और इसको जो हेड करते हैं वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, जनरल रैंक के अफसर होते हैं, एंड सुप्रीम कमांडर, जैसे पहले ही बताया था हमने, हमारे देश के राष्ट्रपति जी जो हैं डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। आर्मी जो है वो 6 ऑपरेशनल कमांड में डिवाइडेड है
2: जी।
3: मतलब आर्मी हेडक्वार्टर के अंतर्गत 6 ऑपरेशनल कमांड्स आती हैं और एक ट्रेनिंग कमांड आती है
2: जी।
3: तो 6 ऑपरेशनल कमांड जैसे कि वदित है वो देश की सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
2: अगर हम मोटे तौर पे जैसे जानना समझना चाहें तो इस तरह का कि देश है तो उसमें 6 प्रदेश हैं और एक यूनियन टेरिटरी है।
3: एक यूनियन टेरिटरी है जी। तो जैसे कि नाम से ही आप बोल सकते हैं, तो अगर 6 हैं तो जैसे अगर हम नॉर्थ से शुरू करें तो नदन कमांड है
2: जी।
3: अब नदन कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में है और ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन की सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है
2: जी।
3: पंजाब के जो प्लेन्स हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑन द वेस्टर्न साइड, तो ये वेस्टर्न कमांड इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि जिसका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर में है
2: जी।
3: फिर साउथ वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है वो राजस्थान के इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
2: जी।
3: एंड सदर्न कमांड जो है
2: जी
3: ये राजस्थान से लेके पूरा साउथ के एरिया के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में है। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो कलकत्ता में है ये पूरे पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जिम्मेवार होते हैं। सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ में लोकेटेड है वो हिमाचल और उत्तराखंड के इलाके के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए।
2: 6 कमांड हैं जिनके नाम है नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और सेंट्रल कमांड।
3: और हर कमांड का नेतृत्व होता है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब करते हैं।
2: अच्छा।
3: और इनको हम आर्मी कमांड है GOC इन CB कहते हैं।
2: अच्छा।
3: जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा जाता है, आर्मी कमांडर से भी उनको संबोधित करते हैं। हर कमांड के अंतर्गत 2-3 कोर होती हैं
2: जी,
3: और ये कोर जो होती हैं इनके नीचे डिविजन्स होती हैं
2: जी।
3: ये भी हर कोर के नीचे आप 3 डिविजन मिलेंगी
2: जी,
3: और हर डिविजन जो है उसके अंतर्गत जो है 3 ब्रिगेड्स आती हैं, और ब्रिगेड्स जो होती हैं उनके अंतर्गत जो है बटालियंस या रेजिमेंट्स होती हैं। हर बटालियन या हर रेजिमेंट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बट ये इंडिपेंडेंटली काम करने वाले सबसे छोटी यूनिट्स होती हैं। उसके नीचे उनकी कंपनीज होती हैं, कंपनी के नीचे जैसे प्लेटून्स होती हैं, प्लेटून के नीचे सेक्शन होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही मोटे तौर पे मैंने आपको बताई है, और इसमें जो इस ऑर्गेनाइजेशन है ये इतनी स्ट्रीमलाइन होती है कि इसमें हर व्यक्ति को अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना टास्क एब्सोल्युटली क्लियर होता है। जैसे एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं जो कि सबसे छोटी इकाई होती है, उस 10 सेक्शन को एक सेक्शन कमांडर जो होता है वो एक हवलदार होता है वो कमांड करता है। उसमें हर व्यक्ति को पता होता है कि मेरा हथियार क्या है, मेरा एमिनेशन कौन सा है, मुझे क्या इक्विपमेंट लेके जाना है, या मुझे मैप कैरी करना है, या मुझे कंपास कैरी करना है, मेरे को राशन कितना लेना है, तो वो ये पूरा का पूरा उसको हर एक को मालूम होता है। तो इसी तरह से सिंस हर व्यक्ति को अपने टास्क के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्लैरिटी होती है, तो ये एक ब्रिक बाय ब्रिक
2: जी
3: जब ये ऑर्गेनाइजेशन ऊपर तक जाती है तो एक बहुत ही सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो कि बहुत डिसिप्लिन्ड होती है और इनको पूरी तरह से जानकारी रहती है।
2: कर्नल साहब, आप मैं मोटे तौर पर एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आपने बताया था कमांड होती है उसके अंतर्गत कोर आती है, फिर डिवीजन होते हैं, ब्रिगेड होते हैं, बटालियन होती हैं, कंपनियां होती हैं उसके अंतर्गत, प्लाटून होते हैं, और सबसे छोटी जो इकाई रहती है वो सेक्शन होती है।
3: इन्फेंट्री बटालियन में जो है सेक्शन होते हैं। एक कमांड और है वो हमारी ट्रेनिंग कमांड कहलाती है, उसको मार्ट्रैक कहते हैं। तो हमारे डिफेंस की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ट्रेनिंग कमांड के अंतर्गत आते हैं। शिमला में लोकेटेड है, इनका नेतृत्व भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल साहब करते हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है। तो ये ऑपरेशनल ना होकर ट्रेनिंग कमांड होती है। ये एक तरह से आर्मी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्राउंड के ऊपर जब डिप्लॉयमेंट होता है
2: जी।
3: तो इसमें जो हमारे देश में देखें, जैसे हमने पहले बोला था कि हमारा जो लैंड बॉर्डर है तकरीबन 15,000 किलोमीटर का है। अब हम इसको एक तरह से शुरू करें, रन ऑफ कच्छ से अगर शुरू करेंगे तो बिल्कुल प्लेन इलाका है।
2: बिल्कुल।
3: उसके बाद राजस्थान के डेजर्ट्स आ जाते हैं, आप समझते हैं डेजर्ट्स की जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग से, मतलब जो है बहुत ठंडा होता है, बहुत गर्म होता है, चलना बहुत मुश्किल होता है, पूरा बैरन लैंड होता है, किसी तरह का छुपाव नहीं होता है, तो उसके लिए एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर पंजाब के प्लेन्स आ जाते हैं, केनाल का इलाका आता है पंजाब के, उसमें बहुत कल्टिवेटेड लैंड होता है, बिल्ट अप एरिया बहुत है। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कि हिमालयन रेंजेस शुरू हो जाती हैं जिसमें कि पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और पहाड़ियाँ धीरे धीरे उनकी हाइट्स बढ़ती जाती है और कारगिल सियाचिन ग्लेशियर, जब लद्दाख का एरिया है तो सियाचिन ग्लेशियर में जाके तकरीबन जो है 22,000-23,000 की ऊंचाई तक भी बॉर्डर के ऊपर आपको जो है इस तरह का टेरेन मिलता है। तो जीरो से लेके डिप्लॉयमेंट जो हमारा होता है जिसमें कि सैनिक कार्य करते हैं वो इलाका जीरो लेवल से लेके तकरीबन 22,000-23,000 की ऊंचाई तक जाता है। इसी तरह से वो आगे बॉर्डर भी सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह से चलता है। फिर हम अगर साउथ की बात करते हैं या हम ईस्ट की बात करते हैं तो कई जगह ऐसे इलाके हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा जंगल भी हैं, ह्यूमिडिटी भी है, तो जो डिप्लॉयमेंट होता है इस बात को मद्देनजर रख के भी होता है कि किस तरह का इलाका है और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी उस तरह के फिर चेंजेस होते हैं
2: जी।
3: जैसे जो यूनिट, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कोर डेजर्ट्स में डिप्लॉयड है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती हैं,
2: जाहिर सी बात।
3: हाँ, बनिस्बत जो ऑर्गेनाइजेशन सियाचिन ग्लेशियर पे काम कर रही है वहाँ पे -50 का टेम्परेचर चल रहा होता है सियाचिन ग्लेशियर में, यहाँ पे 50 का टेम्परेचर प्लस में चल रहा होता है। उसी तरह से जो है मणिपुर नागालैंड की बात करें या जो है मिजोरम की बात करते हैं तो वहाँ पे और अलग तरह के जंगल्स बहुत ज्यादा हैं, तो कहीं ह्यूमिड है तो कहीं पे जो है रोज जो है मुश्किल होता है। तो हर तरह से इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको हर जगह अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के मॉडिफिकेशंस मिलेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा रोल एंड टास्क है उसको देखते हुए अलग अलग आर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं, जैसे आर्मर्ड होती है, इन्फेंट्री होती है, आर्टिलरी होती है।
2: आपने हमें मोटे तौर पर बताया कि विभिन्न स्तरों पर जो आर्मी का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, कमांड से लेकर आप उसके एकदम मूल इकाई सेक्शन तक गए थे, लेकिन उसके इतर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसके संगठन के अंतर्गत आती हैं जो ऑपरेशनल लेवल पर कार्य करती हैं। जैसे हम सुनते रहते हैं दकदा इन्फेंट्री है, आर्म सर्विसेज हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए।
3: जो आर्मी होती है, आर्मी में आर्म्स एंड सर्विसेज होती हैं
2: जी।
3: आर्म्स, कम्बैट आर्म्स हम उसको बोलते हैं जो एक्चुअली में डिप्लॉय होते हैं, लड़ाई लड़ते हैं
2: जी।
3: इसके अलावा जो हमें सपोर्ट देते हैं इस परिकार में उनको हम सर्विसेज बोलते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो जब हम कम्बैट आर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्फेंट्री आते हैं
2: जी।
3: इन्फेंट्री का मतलब होता है फुट सोल्जर, पैदल सेना
2: जी।
3: और ये आर्म फोर्सेस का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, मतलब सबसे ज्यादा तादाद जो होती है इनकी होती है। फुट सोल्जर हैं, इनकी कैपेबिलिटी सबसे बड़ी ये है कि ये किसी भी तरह की टेरेन में काम कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में ये लोग जो है ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान है, मानव है, तो वो अपने आप को इतना ज्यादा जो है ढाल लेता है उस इलाके के हिसाब से कि वो कहीं पे भी ऑपरेट करने के लिए काबिल रहता है।
2: जैसा कि आपने खुद ही कहा था कि -50 से लेकर +50 तक आप लोग तैनात रहते हैं।
3: और हम लोग कहते हैं कि एक इन्फेंट्री मैन के लिए कभी कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, देयर इज नो ऑब्स्टिकल फॉर एन इन्फेंट्री पर्सन, ठीक है, उसके लिए कोई जगह ऑब्स्टिकल नहीं, वो हर जगह नदी नाले भी क्रॉस कर लेता है, कहीं भी जाए। तो हर जगह डिप्लॉयमेंट में सबसे आगे जो होता है इन्फेंट्री होती है, एंड राइटली हम इसको क्वीन ऑफ द बैटल भी बोलते हैं। जब भी हम देखेंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए, जब तक हमारे जवान खड़े होते हैं, ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तब तक उसको हम अपना कहते हैं
2: जी।
3: तो जैसे जो भी हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर जब तक हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट होती है, और ये डिप्लॉयमेंट इन्फेंट्री की होती है। इसी तरह से जब अगर हम ऑफेंसिव ऑपरेशन कोई लॉन्च करते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जब तक जाके पैदल सेना का जवान झंडा गाड़ता है, खड़ा होता है, तभी वो विक्ट्री कहलाती है। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है जो इन्फेंट्री की कहलाती है। इन्फेंट्री उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये नेवी के साथ ऑपरेट कर सकती है, एयरफोर्स के साथ ऑपरेट कर सकती है, और जैसे मैंने पहले बताया किसी भी तरह के टेरेन में काम कर सकती है, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जब असिस्टेंस दे दिया जाता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में है, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में है, और किसी और तरह का भी
2: प्राकृतिक आपदा के समय
3: जी, और या इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे होता है, तो सबसे ज्यादा योगदान जो है इन्फेंट्री का होता है।
2: जैसा कि हमने सुनामी के दौरान भी सुना था कि आर्मी वालों ने बहुत लोगों की मदद की थी
3: जी, आपको हर जगह जो है जब भी कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है तो सबसे ज्यादा जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली इन्फेंट्री के होते हैं
2: जी।
3: हमारे देश में जो इन्फेंट्री है वो सबसे पुरानी मतलब मानी जाती है, और हमारे पास जो है तकरीबन 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं
2: जी।
3: जैसे आपने काफी नाम सुने होंगे, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, तो ये जो है रेजिमेंट्स होती हैं जिसमें कि हर रेजिमेंट में बटालियंस होती हैं
2: जी।
3: और ये बटालियंस जो होती हैं दरअसल यही जो है फॉर्मेशन में जिस जो हमने कोर डिव देखी थी इसके अंतर्गत वो कार्य करती हैं। तो मैन पावर जो फोर्स होती है, जो ऑफेंसिव फोर्स द फाइटिंग फोर्स होती है डिवीजन के अंदर या ब्रिगेड के अंदर, वो इन्फेंट्री की।
2: कर्नल साहब एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने बताया मराठा रेजिमेंट होती है, पंजाब रेजिमेंट होती है, तो क्या इनके रेजिमेंट्स के जो नाम होते हैं वो भारत के प्रदेशों पर ही रखे गए हैं, उसमें उन प्रदेशों के लोग ही रहते हैं ज्यादातर?
3: तो मद्रास रेजिमेंट में जैसे जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उसमें चार स्टेट जो है केरला, कर्नाटका, आंध्रा एंड तमिलनाडु, उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो इन चार स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। सिख रेजिमेंट में जैसे देखेंगे आपकी सरदार जो हैं सिख पाए जाते हैं जो कि पंजाब के इलाके के हैं
2: जी।
3: इसके बारे में हम एक बार और डिटेल में बताएंगा मैं आपको, क्योंकि बहुत ही मतलब ये बहुत पुराना, सबसे पुराने मतलब जो सोल्जर्स हैं उनकी अपनी बहुत ही मतलब हिस्ट्री बहुत ही अलग है। मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे देश का जो सर्वोच्च वीरता के लिए जो हमारा सम्मान मिलता है परमवीर चक्र, वो सबसे ज्यादा इन्फेंट्री को ही प्राप्त हुए हैं अभी तक। तो इसके बारे में हम एक बार बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। वापस आते हैं तो आर्म्स में जो सेकंड होता है कम्बैट आर्म्स में हम बोलते हैं आर्मर्ड कोर होती है। आर्मर्ड कोर जो है बेसिकली जो टैंक्स होते हैं
2: जी,
3: टैंक्स से इक्विप्ड होती है, उनके पास टैंक्स होते हैं, और ये जो हमारी स्ट्राइक फोर्सेस होती हैं, स्ट्राइक फोर्सेस मतलब जो ऑफेंसिव फोर्सेस रहती हैं, स्ट्राइक कोर रहती
2: है, आक्रमण करती है, लड़ाई करती है,
3: उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, उसका सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है टैंक्स की डिवीजन होती है, वो होता है। ये सिर्फ ऑफेंसिव ऑपरेशन में ही नहीं काम आती, डिफेंसिव ऑपरेशंस में भी जो है इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, ताकि ये दुश्मन के जो टैंक्स होते हैं उनके साथ उनसे अपने देश को बचाने में काफी इनका योगदान रहता है। जैसे कि टैंक होता है, टैंक की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, उसके पास सबसे ज्यादा फायर पावर होती है और मोबिलिटी होती है, मतलब वो एक किसी भी इलाके में ऑपरेट कर सकते हैं
2: जी।
3: और साथ में जो है उनका आर्मर प्रोटेक्शन होता है, तो इन तीन चीजों की जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टैंक्स की, जिसके कारण वो काफी जल्दी किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं और फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि जब टैंक्स मूव करते हैं तो टैंक्स में क्या होता है कि मैन पावर काफी कम होती है
2: जी,
3: तो मैन पावर प्रोवाइड करती है उसको इन्फेंट्री
2: जी।
3: अब क्या होता था कि टैंक की और इन्फेंट्री की जो आपस की जो स्पीड है वो मिसमैच हो जाती है, क्योंकि टैंक तो काफी तेजी से निकल जाता था, इन्फेंट्री पीछे रह जाती थी
2: जी।
3: तो ये फिर एक कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम इन्फेंट्री को भी मोबिलाइज करें
2: जी।
3: उसमें क्या हुआ कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स बनाए गए
2: जी,
3: उसको हम आजकल मैकेनाइज इन्फेंट्री बोलते हैं
2: जी।
3: तो ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है, इन्फेंट्री को मतलब आपने प्रोटेक्शन के साथ गाड़ी दे दी है, व्हीकल दे दिया है, जिसके की मोबिलिटी यानी कि मोबिलिटी जो है वो टैंक्स के साथ मैच करती है
2: जी।
3: तो इनको हम मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बोलते हैं।
2: इस पर भी हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे बाद में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री
3: वो ये कैसे आए और किस तरह से इनके पास इक्विपमेंट होते हैं और कैसे ये इन्फेंट्री क्या कार्य करते हुए मतलब कैसे किस तरह से इनको मोबिलिटी मिलती है और कैसे मतलब आर्मर के साथ ये लोग काम करते हैं, ये काफी दिलचस्प रहेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो कम्बैट आर्म्स में आर्टिलरी का नाम आता है, आर्टिलरी जो होता है वो उसके पास गन्स होती हैं, आर्टिलरी गन्स होती हैं, आपने काफी गन्स के बारे में सुना होगा, बोफोर्स के बारे में सुना होगा, तो ये जो है मैसिव फायर पावर प्रोवाइड करती हैं ऑपरेशंस के दौरान, यानी डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी, दोनों में जो है फायर पावर प्रोवाइड करता है। इनके पास जो है काफ़ी अलग अलग तरीके की गन्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, एंड इवन जो यूएवीज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, सर्विलेंस सिस्टम होता है, मिसाइल्स होती हैं, ये सारे के सारे जो वेपन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो आर्टिलरी के तहत आते हैं।
2: कर्नल साहब, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि कुल मिला के जो इन्फेंट्री के पास असला होता है वो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री देखता है या उसका जिम्मेदार रहता है?
3: नहीं, ऐसा नहीं होता। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक अलग आर्म है
2: जी,
3: अलग फॉर्मेशन है, और इन्फेंट्री एक अलग फॉर्मेशन है। आप इस तरह से समझिए कि जैसे युद्ध के मैदान में हम हैं और हम जो है एक डिफेंस इख्तियार करके बैठे हुए हैं, अगर उस डिफेंस के ऊपर इन्फेंट्री ने डिफेंस लिया हुआ है और उसको जो है फायर पावर यानी कि उसके सपोर्ट के लिए जो है आर्टिलरी जो है शेलिंग से काम करती है। जैसे आपने काफ़ी पिक्चरों में भी देखा होगा कि जब मूवमेंट हो रहा होता है तो ऊपर से गोले आ रहे होते हैं, तो वो आर्टिलरी प्रोवाइड करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सारी अलग अलग होती हैं, मैकेनाइज इन्फेंट्री अलग है, इन्फेंट्री अलग है, आर्टिलरी अलग है, आर्मर्ड अलग है। मैं समझ सकता हूँ कि एक आम भाषा में जब हम बात करना चाहते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है कि ये क्या है, क्योंकि मूवीज में भी अलग अलग तो नहीं दिखाते हैं, वो सब कुछ एक ही जैसा दिखाते हैं। चलते हैं आगे बढ़ेंगे जब हम
2: जी,
3: तो कहीं ना कहीं इन सब का जिक्र आएगा तो हम और अच्छे एग्जांपल्स देके जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम आगे और देखें जो हमारे आर्म्स एंड सर्विसेज होते हैं उसमें इंजीनियर्स का नाम आता है। इंजीनियर जो है कम्बैट सपोर्ट आर्म होता है, इनका जो कार्य होता है वो होता है कि हमारी जो सेना होती है उसके लिए हर तरह के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको क्लियर करें, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए मतलब रास्ता प्रदान करें।
2: किस तरह के ऑब्स्टिकल्स? देखिए ऑब्स्टिकल्स होते हैं
3: जैसे माइनफील्ड होते हैं
2: जी,
3: जब भी ऑपरेशंस होने वाले होते हैं तो मतलब जहां पे भी डिफेंसेस होती हैं उसमें माइनफील्ड लगे होते हैं, तो उस माइनफील्ड को क्लियर करना और उसमें से मतलब जो है व्हीकल सेफ लेन बनाना, इन्फेंट्री सेफ लेन बनाना, ये इंजीनियर्स का कार्य होता है और ये बहुत ही दुर्गम कार्य होता है, इसमें मतलब सबसे ज्यादा खतरा होता है। इसी तरह से जो है और ऑब्स्टिकल्स अगर दुश्मन ने लगाए हैं किसी तरह से तो उनको पूरा क्लियर करना, अगर कोई ब्रिज की ज़रूरत है तो ब्रिज लॉन्च करना, ब्रिज टूट गया तो उसको दोबारा बनाना। आपने इवन देखा होगा सिविल में भी काफ़ी जो है सुना होगा कि काफ़ी जहाँ पे भी ब्रिज
2: जी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सुनाई दिया था।
3: करेक्ट, तो उसमें जो है इनकी कैपेबिलिटी होती है, ब्रिज लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रहती है। इसके अलावा जब दुश्मन हमारी तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, माइन फील्ड्स लगाना, और अगर ब्रिजेस हैं तो उसमें अगर आपको कभी हो सकता है कि उस ब्रिज को जो है ध्वस्त करना पड़े तो वो कार्यवाही भी इंजीनियर्स करते हैं। एंड ये सिर्फ एक काम नहीं है इनका, और इसके अलावा भी जो है हम जब बॉर्डर एरिया में होते हैं तो हमारे जितने शेल्टर्स जहाँ पे हम रहते हैं, शेल्टर्स बनाना, बंकर्स बनाने में जो है मदद करना, और इवन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना, ये काफ़ी जो है कार्य इनके रहते हैं जिसमें इनका योगदान रहता है। पीस टाइम में भी जो इंजीनियर्स हैं, जब हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करते हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में। फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में जो आपको बोट्स दिखती हैं चलती हुई जिससे कि जाके बचाया जाता है, वो सारे इंजीनियर्स के पास होती हैं
2: जी।
3: और यही इनका एक बहुत बड़ा टास्क होता है जो एड टू सिविल अथॉरिटी के दौरान के साथ जो है जो ये करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें अदिति तो और भी काफ़ी सारे हम आर्म्स एंड सर्विसेज होते हैं, जैसे सिग्नल्स होते हैं, कोर ऑफ सिग्नल्स होता है जो कि कंप्लीट जो कम्युनिकेशन सेटअप होता है उसको प्रोवाइड करता है। एंड इसी तरह से जो है आर्मी एविएशन कोर होती है जिसमें हैप्टर यूनिट्स होती हैं, जिसमें कि एयर ऑब्जर्वेशन का कार्य वो करते हैं, कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, आर्टिलरी लिफ्टिंग का रहता है, तो ऐसे काफ़ी सारे उनके कार्य रहते हैं। देन ईएमई है जो कि इक्विपमेंट जो हमारा होता है, व्हीकल्स जो होता है उसको मेंटेनेंस की जिम्मेवारी उनकी होती है। सप्लाई कोर है, ऑर्डनेंस कोर है जो कि हमारे लिए राशन और जो ज़रूरतें होती हैं जैसे वेपन्स एमुनेशन की ज़रूरत होती है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, वो ऑर्डनेंस कोर की जिम्मेवारी होती है उसको प्रदान करना, और राशन जो है वो एसी सप्लाई का कार्य रहता है। तो ये मोटे तौर पर जो है हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन का के आर्म्स एंड सर्विसेज हैं।
2: कर्नल साहब, मतलब जैसे किसी फिल्म में कोई एक सीन देखते हैं तो सीन तो एक मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी विषमताएं और जटिलताएं हैं वो अब बात करके समझ में आ रही है। कर्नल साहब, विशाल देश की जो महत्वपूर्ण सुरक्षा है उसके लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं, और ये काफ़ी गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति। जय हिंद श्रोताओं।
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है सुश्री अदिति गौड़ को। ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
6: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए, एक अंतराल के बाद हाजिर होते हैं अगला कार्यक्रम लेकर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।
7: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही मार्च शैली में। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग है।
1: मित्रों, मैंने जयदेव जी के असेंबली का पास वायस राय की निगरानी रखाओ कही दियो है।
2: ठीक है भगत, तुम असेंबली में बम फेंकवा के मत जाओ, आफत में पड़ी जाओ, और ये मैं नहीं चाहूँ। अभी तुम्हारो भायर रहना जरूरी है।
3: सही बात है
1: आजाद जी, आप निश्चिंत रहो, मैं तो यो सब जनता के जगावा का वास्ते कर लू।
2: तो ठीक है,
1: हमारी चिंता मत करो।
2: तो ठीक है, पन साथियों आप सब सुनी लो, आपके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को ध्यान रखना। इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
4: जिंदाबाद।
5: आज 8 अप्रैल 1929 को दल ने अपने भगत सिंह, अपना साथी, उनका साथ असेंबली का माय
6: कार्यवाही शुरू की जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पे अटेंशन।
7: इंकलाब
4: जिंदाबाद,
7: वंदे मातरम,
4: जय जवान।

0: हमारा सभी साथी लाहौर जेल में, आजाद जी फरार है और हमारा जीवन तो मृत्यु साधना का सिद्धांत पर चली रही है। और हम अपनो बयान या जेल में नहीं, सीधो सेशन जज की अदालत का मैदान का इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: सामराज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: 4 जून 1924 का दिन भगत सिंह जी की पेशी दिल्ली की अदालत में हुई। कार्यवाही शुरू की जाए।
0: जज साहब, कानून पे कानून तमलाव हो और हमारे घना डराव हो। फ्रांस रूस की क्रांति देखो, कोई भी नहीं दबाई पायो। आजादी को कारगो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगो। और फांसी अगर न्याय तमारो तो फंदा कम पड़ जाएगा। दस साहब, हमारी बात सुनी के नौजवान में जोश खूब भराएगा। सच्चा वीर सपूत भारत माँ का देश पे बली बली जाएगा। इनकलाब
1: जिंदाबाद
0: वंदे
1: मातरम
0: साम्राज्यवाद
1: मुर्दाबाद।
2: देखियो, देखियो आपने भगत सिंह के बयान का सच। आखो देश भगत सिंह जी का साथे हुई गयो। बच्चों देश का ऊपर बलिदान करवा के लिए तैयार हुई। अबे 10 जून 1929 का दिन फैसला आवे।
3: ओ रामलाल जी।
4: अरे हाँ, एक बात है रामलाल।
3: राव थोड़ा इधर आओ जरा।
4: हाँ,
3: काम की बात है।
4: हाँ।
3: हमारे मालूम है
4: कहीं
3: भगत सिंह ने बट्टू केशर दत्त को आजीवन कारावास की सजा भाई की है।
4: हाँ। और
3: ने भगत सिंह के मियाँ वाली जेल में।
4: हाँ।
3: ने बट्टू केशर दत्त के लाहौर जेल में भेज दियो है।
4: अरे?
3: और वहाँ पे भी हो इनके साथ साथ सारा कैदी उन भी सब भूख हड़ताल पे बैठी जा। भगत सिंह ने वहाँ कितनो परेशान कर रहा है।
4: तुम सही कह रहे हो, वहाँ लाहौर जेल में भी बट्टू केशर दत्त ने ऐसा ही माहौल बनाई रखे हुए।
3: हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा कर अपना।
4: तुम भी अपना ध्यान रखा करो। ठीक है, मिलते हैं फिर।
0: मैंने इंस्पेक्टर जनरल के पत्र लिखो कि मारे यहाँ से लाहौर जेल भेजो जाए। और भी ने हमारी बात मानी ली है और अब मैं भी लाहौर जेल में आई हूँ।
2: दस जुलाई 1929 का दिन भगत सिंह जी के पेशी हुआ वाली थी, लेकिन बटू केशव दत्त और भगत सिंह की हालत ऐसी थी कि विद्रोही चले भी नहीं पाई था। जो सब सुनी के भारत की जनता का मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़तो जाइयो। विद्रोही कदोई अदालत का माय हड़ताल पे बैठी गया। यो सब होने से अदालत की कार्रवाई में बाधा पहुंची। जब इनके पाछो जेल में पहुंची।
0: सरकार की परेशानी तो बढ़ती जा रही है, हमारा साथियों की हालत दिन पे दिन खराब हो रही है। सरकार को चाहिए कि हड़ताल खत्म हो जाए, पर यह हड़ताल तो चली रही है। हमारो ध्यान अब अपना साथियों की जान बचाव में। ए सुनो जरा, हमारा साथियों के पानी दियो जाए।
5: ए सुनो, भगत सिंह वान हड़तालियों को पानी की जगह दूध दिया जाए।
4: सब दूध के मटके इनके लिए पहले से ही भरवा के रख दिए।
5: दूध हम में से कोई भी इना दूध के हाथ भी नहीं लगाए दो,
6: हम पानी ही पियांगा। थोड़ी देर मटका के,
0: थोड़ी देर मटका उनके।
5: हे, व्हाट हैपेंड? सब इन हड़तालियों ने, कैदियों ने तो सारे दूध का मटका फोड़ दिया इन्हें। अरे, इन हड़तालियों को पानी ही देना पड़ेगा। अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया तो उस पर क्या जवाब देंगे?
0: जी सर। साथियों, अगर हमारा मित्र यतीन्द्र नाथ जी की मृत्यु नहीं होती तो हम पानी के कभी हाथ भी नहीं लगाता और या हड़ताल भी कभी समाप्त नहीं करता।
7: भगत, तुमने इन अंग्रेजों की हकीकत जनता के सामने लाके रखी थी।
0: मारो जो मकसद हो, मैं उनमें सफल हो तो जा रही हूं और हमारा मनोबल अब और बढ़ते जा रही है।

0: नौजवान मालूम है ये नौजवान जो है नौजवान ये अपराधी नहीं है और ये तो क्रांतिकारी है
1: क्रांतिकारी
0: हाँ क्रांतिकारी है
2: क्रांतिकारी नहीं देशभक्त
3: भगत सिंह जी की रणनीति से लाहौर षड्यंत्र रचियों ने पूरी अपना साथी उनका माए विनय जोश भरी। 1 मई के लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई थी।
4: इनकलाब वंदे
5: मातरम
4: भगत सिंह
3: सुखदेव राजगुरु
2: कार्यवाही शुरू की जाए।
4: जज साहब देश की खातिर कौन बाजी लगाएगा और सुनिए कि महफिल में हमारा इम्तहान होएगा। ए खुदा वो दन भी आएगो जदे हम कायम होवांगा जदे अपनी जमीन और अपनो आसमान होएगा। इनकलाब
5: जिंदाबाद
4: वंदे
5: मातरम
4: साम्राज्यवाद
5: मुर्दाबाद।

इनकी पिटाई देखी के आगा हैदर खान वहां से चलिया गया। तो फिर एक दिन फैसला आयो कि सुखदेव राजगुरु ने भगत सिंह जी के जल्द से जल्द फांसी दे दी।

0: पिता मगर?
1: हाँ पिताजी।
0: मैंने सुने थे फांसी होवा वाली।
1: हाँ पिताजी, तुमने सही सुनी, हमारे फांसी होवा वाली है।
0: देशभक्ति है इतनी बड़ी, हम समझा माँ ने बाप, हारो छोरो फांसी चढ़ी दी, सीना में चली रही यार।
1: पिताजी म्हारी मौत जीवन से कीमती, सबके यो बतानो है, देश प्रेम की लो लगे ऐसो फर्ज निभानो है। तम मोह में मत पड़ जो, तमारो बेटो देश का वास्ते शहादत दई के देश की आजादी को रस्तो पक्को करनो चाहिए।
0: ठीक है भगत, वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम,
0: वंदे मातरम,
2: वंदे मातरम।
3: बेटा महारा, यो कई होएगी?
1: माँ तू रोएगी तो लोग कहेगा कि वीर की मां रो रही है, भगत सिंह की मां रो रही है। तुम्हारी बात सुन माँ,

0: मैं थारा जैसे वीर सपूत की माँ हूँ।
1: तू अपनो ध्यान रख जे माँ, बेन तू भी अपनो ध्यान रख जे।
2: ठीक है भैया। भैया तमारो यो बलिदान आपको देश याद रखेगा। इनकलाब
3: जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद,
3: जिंदाबाद,
2: जिंदाबाद।

धोनी के कौन टाली सके, वह तो अटल सत्य। समय सब गुंगो हुई के देखी हुई, लो फांसी को पैगाम है। आपके मालूम भगत सिंह की फांसी से अंग्रेज सरकार इतनी डरेगी कि उनके एक दिन पहला फांसी पे चढ़ावों को हुक्म दिया। अखो देश, अखो देश भगत सिंह के बचाव की प्रार्थना करेगी। माँ ऐसो भाई चाहिए, माँ ऐसो बेटो चाहिए, बहन ऐसो भाई चाहिए, सबकी आख्या नम, मारी भी नम।

0: ये था मार्च खेल शहीद भगत सिंह। इसे लिखा था श्री सुंदरलाल मालवीय और यशस्विनी निगम ने। परिकल्पना, निर्देशन और संगीत श्री सुंदरलाल मालवीय।
1: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का तीसरा और अंतिम भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL यानी एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले दो एपिसोड्स में हमने जाना कि कैसे माझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जैसे संस्थान भारत की समुद्री शक्ति को मजबूत बना रहे हैं। माझगांव डॉक ने हमें विशाल युद्धपोतों और पनडुब्बियों की दुनिया दिखाई, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ये बताया कि कैसे एक छोटे कारखाने से शुरू होकर कोई संस्था देश के अग्रणी शिपयार्डों में स्थान बना सकती है।
1: लेकिन भारत की समुद्री सुरक्षा की ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों। आज दादू और रुचि पहुंच रहे हैं भारत के पश्चिमी तट पर, जहां जुआरी नदी की शांत लहरों के किनारे खड़ा है एक ऐसा शिपयार्ड जिस

0: बड़े शिपयार्डों के बारे में मुझे बताया, लेकिन कभी कभी मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है दादाजी, कि इन दोनों में अंतर क्या है।
1: देखो रुचि बेटा, माझगांव डॉक मुख्य रूप से बड़े युद्ध पोतों और पनडुब्बियों के लिए प्रसिद्ध है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पूर्वी भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, जिसने अनेक युद्ध पोत, गश्ती पोत और इंजीनियरिंग समाधान विकसित किए हैं। और एक है गोवा शिपयार्ड, ये तेज आधुनिक और अत्याधुनिक गश्ती पोतों और खास नौकाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
0: मतलब तीनों संस्थान अलग अलग प्रकार से भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल की शक्ति बढ़ाते हैं दादू। इसका तो ये मतलब हुआ कि देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, उनके पीछे हजारों इंजीनियर, तकनीशियन और वैज्ञानिक भी देश के रक्षक होते हैं दादाजी।
1: बिल्कुल बिटिया, और गोवा शिपयार्ड जैसी संस्थाएं हमें सिखाती हैं कि यदि दृष्टि बड़ी हो और प्रयास निरंतर हो तो एक छोटा सा यार्ड भी राष्ट्र की तरक्की में अहम योगदान दे सकता है।
0: सही कहा आपने दादाजी, किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन ये यार्ड दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा।
1: सोचो बेटा कि समय का पहिया पीछे घूम रहा है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले यहाँ कोई विशाल शिपयार्ड नहीं था, ना आधुनिक मशीनें थी, ना विशाल क्रेन, ना कंप्यूटर, केवल एक छोटा सा यार्ड था जहाँ कुछ लोग साधारण नावों और बार्जों पर काम करते थे।
0: कितनी अलग दुनिया होती होगी ना तब दादाजी, इतने बरस पहले। अच्छा ये बताइए ना, क्या कोई प्रेरणादायक कहानी आपको याद आ रही है?
1: हाँ बिल्कुल, चलो आज वही सुनाता हूँ। एक नदी ज्वारी जो सदियों से बह रही है।
0: ज्वारी नदी?
1: हाँ हाँ, पहले सुन तो लो बच्चे। उसने व्यापारियों को आते जाते देखा।
0: अच्छा।
1: जाने कितने नावों, जहाजों को देखा, लेकिन एक दिन उसके किनारे एक छोटा सा यार्ड बना। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहीं से भारत की समुद्री शक्ति के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आज ये नदी देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले उसी यार्ड की कहानी की गवाह है।
0: शांत जल, ठंडी हवा और सामने दूर तक फैला हुआ शिपयार्ड, और पास ही आपकी ज्वारी नदी।
1: हाँ बेटा, ये ज्वारी नदी गोवा की जीवन रेखा है, और इसी नदी के किनारे खड़े इस गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को हम संक्षेप में GSL कहते हैं।
0: अच्छा दादू, ये बार्ज क्या होता है?
1: बार्ज बेटा एक प्रकार का जलयान होता है जिसका उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा यार्ड एक दिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा शिपयार्डों में गिना जाएगा।
0: अच्छा दादू, आपने मुझे पहले बताया था कि गोवा कभी पुर्तगाल के अधीन था, अब ये बताइए कि ये भारत का हिस्सा कब बना?
1: ये बना बेटा सन 1961 में, जब गोवा मुक्ति अभियान सफल हुआ और गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। ये केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं था बच्चे, ये विकास की नई शुरुआत भी थी।
0: विकास की नई शुरुआत? वो भला कैसे?
1: देखो बेटा, देश की नीति निर्माताओं ने समझ लिया था कि अब भारत को समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उस समय बेटा पश्चिमी तट पर एक सक्षम शिपयार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, तभी गोवा में मौजूद छोटे यार्ड की क्षमता को पहचाना गया और यहीं से भविष्य के गोवा शिपयार्ड की नींव मजबूत होने लगी।
0: दादू, क्या तब भी इसका नाम गोवा शिपयार्ड ही था?
1: नहीं नहीं बेटा, उस समय इसका नाम था एस्टेलेरोस नावाइस डी गोवा।
0: दादू ये नाम तो काफी अलग लगता है।
1: हाँ हाँ, ये नाम बेटा पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाता था, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप भी बदला और नाम भी। भारत सरकार ने इसे विकसित किया, आधुनिक बनाया और धीरे धीरे ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बन गया।
0: दादू, किसी भी संस्था का विकास केवल इमारतों से नहीं होता होगा, उसके पीछे कई लोगों के सपने होते होंगे ना?
1: हाँ बेटा, ये बात पूरी तरह सही है। किसी भी संस्था का विकास किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है, इसके पीछे कई लोगों की दिन रात की मेहनत होती है। अगर शिपयार्ड की बात करें तो इसके विकास के पीछे कई इंजीनियरों की मेहनत होती है, तकनीशियनों की मेहनत होती है, उनका कौशल होता है और भविष्य की स्पष्ट योजना होती है।
0: यानी गोवा शिपयार्ड का विकास धीरे धीरे हुआ होगा। हर साल इसमें नई सुविधाएं जुड़ती गईं, नई नई मशीनें आईं, नई नई तकनीकें अपनाई गईं और यार्ड का आकार बढ़ता गया।
1: हाँ बेटा, और यही स्थायी विकास का सही तरीका होता है।
0: दादू, ये बार बार जुआरी नदी का नाम आ रहा है, क्या इस नदी ने भी शिपयार्ड के विकास में कुछ भूमिका निभाई है?
1: बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बेटा। देखो, जहाज निर्माण केवल फैक्ट्री के अंदर होने वाला काम नहीं है, जहाज को पानी तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जुआरी नदी ने ये सुविधा प्रदान की। ये नदी अरब सागर से जुड़ती है, इसलिए यहाँ बने जहाज आसानी से समुद्र तक पहुँचते हैं।
0: मतलब ये नदी शिपयार्ड के लिए एक प्राकृतिक जल मार्ग जैसी है, जैसे हुगली नदी थी।
1: बिल्कुल, इसलिए किसी भी शिपयार्ड का स्थान चुनते समय जल मार्गों का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन केवल स्थान ही नहीं, समय के साथ जहाज निर्माण की तकनीक भी बदलती गई और गोवा शिपयार्ड ने खुद को उसी के अनुरूप उसके मुताबिक विकसित किया।
0: दादू, आधुनिक शिपयार्ड बनाने के लिए क्या बदलाव किए गए थे?
1: बहुत कुछ बदलाव किए गए बेटा। पहले जहां हाथ से ड्राइंग बनती थी, वहां अब CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन का उपयोग होने लगा। जहां उत्पादन में अधिक समय लगता था, वहां आधुनिक मशीनें आ गईं। और जहां सारी जानकारी कागजों पर रखी जाती थी, वहां अब ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम लागू किया गया।
0: सो तो है दादाजी। अच्छा ये बताइए, ये ERP क्या करता है?
1: मान लो किसी जहाज के निर्माण में हजारों पुर्जे लगने,
0: ठीक है,
1: किस पुर्जे की जरूरत कब होगी, कहां से आएगा, किस विभाग से जाएगा, कब उपयोग होगा, इन सब का प्रबंधन ERP सिस्टम आसानी से कर सकता है।
0: अच्छा दादू, मैंने अक्सर कंपनियों के नाम के साथ ISO प्रमाणन लिखा देखा है, इसका क्या महत्व होता है?
1: बहुत महत्व होता है। गोवा शिपयार्ड ने गुणवत्ता, पर्यावरण और सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाया है।
0: इसका मतलब तो ये हुआ कि इसे कई महत्वपूर्ण ISO प्रमाणन प्राप्त हुए होंगे।
1: हाँ हाँ बेटा, एक संस्था केवल उत्पाद बनाने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती है कि काम की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।
0: अच्छा दादू, ये बताइए ना, आज के समय में GSL की सबसे बड़ी ताकत क्या है?
1: बेटा, इसकी आधुनिक सुविधाएं, विश्व स्तरीय CAD CAM प्रणाली, उन्नत डिजाइन सेंटर, स्टील और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के जहाजों के निर्माण की क्षमता और लगातार अनुसंधान एवं विकास पर दिया जाने वाला ध्यान।
0: मतलब यहाँ केवल जहाज नहीं बनते, नई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं दादाजी।
1: बिल्कुल बेटा, यही कारण है कि GSL भारत के उन चुनिंदा शिपयार्डों में शामिल है जिनके पास अपनी इन हाउस डिजाइन क्षमता है। यानी कई जहाजों की रूपरेखा और डिजाइन तैयार करने का काम भी यही किया जाता है।
0: अब समझ में आ रहा है दादू मुझे कि GSL समय के साथ केवल बड़ा ही नहीं हुआ बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ता गया है।
1: बिल्कुल बेटा, यही निरंतर विकास किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी पहचान होता है।
0: दादू, जितना मैं सुनती जा रही हूँ ना, उतना ही मुझे आश्चर्य हो रहा है। देखिए ना, एक छोटा बार्जियार्ड, फिर गोवा मुक्ति, फिर विकास, फिर आधुनिक तकनीक और आज राष्ट्रीय महत्व का शिपयार्ड। ये यात्रा सचमुच बहुत प्रेरणादायक सी लगती है दादाजी।
1: बिल्कुल प्रेरणादायक यात्रा है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कोई भी संस्था जन्म से महान नहीं होती, वो अपने निरंतर प्रयासों, सीखने की इच्छा और दूरदर्शिता से महान बनती है।
0: अच्छा दादू, एक छोटे से यार्ड ने ऐसे कौन कौन से जहाज बनाए जिनसे उसकी पहचान पूरे देश और दुनिया में हो गई?
1: बेटा, किसी भी शिपयार्ड की सफलता को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक जहाज बनता कैसे है। जब हम ये प्रक्रिया समझ लेंगे, तब GSL की उपलब्धियाँ भी और अच्छी तरह समझ में आएंगी।
0: हाँ दादू, सही कहा आपने। ये भी एक रोचक बात है कि आखिर एक जहाज का निर्माण कहाँ से शुरू होता है।
1: बिटिया, अधिकतर लोग जब किसी युद्धपोत को देखते हैं, तो उन्हें केवल उसका विशाल आकार दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में किसी भी जहाज का निर्माण स्टील से पहले अभियंताओं के दिमाग में शुरू होता है।
0: दिमाग में?
1: और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है, याद करो। हर जहाज पहले एक विचार होता है। क्या होता है?
0: सही कहा दादाजी।
1: फिर वो कागज पर उतरता है, उसके बाद कंप्यूटर पर उसका डिजाइन तैयार होता है, और अंत में वो वास्तविक रूप लेकर शिपयार्ड में बनता है।
0: तो दादाजी, क्या यही इसका सबसे पहला चरण होता है?
1: नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले नौसेना, तटरक्षक बल या ग्राहक इसे अपनी जरूरत बताता है, यानी जहाज कितनी गति से चलेगा, कितने दिन समुद्र में रह सकेगा, उस पर कितने लोग कार्य करेंगे, कौन कौन से उपकरण लगाए जाएंगे, उसका उपयोग गश्त, बचाव अभियान या युद्ध के लिए होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद डिजाइन प्रक्रिया शुरू होती है,
0: और यहीं पर CAD काम आता है।
1: बिल्कुल, शाबाश। हाँ, CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या ऐसे कहें कि कंप्यूटर की सहायता से डिजाइन तैयार करना। सालों पहले हाथ से बड़ी बड़ी ड्राइंग बनती थी बेटा, लेकिन आज कंप्यूटर पर जहाज का पूरा त्री आयामी मॉडल तैयार किया जाता है।
0: हाँ दादू, जिसे हम लोग 2D 3D कहते हैं।
1: हाँ हाँ, जिसमें दिखाई देता है उसका हर कमरा, हर पाइप, हर केबल, हर इंजन, यहाँ तक कि किसी तकनीशियन के चलने की जगह भी दिखाई दे जाती है।
0: अच्छा दादाजी, और ये CAM ये क्या है?
1: CAM का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कंप्यूटर की सहायता से निर्माण करना।
0: सो तो है, लेकिन ये काम कैसे करता है?
1: जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब वही जानकारी आधुनिक मशीनों को भेज दी जाती है। मशीनें उसी के अनुसार स्टील काटती है, छेद बनाती है, भागों को आकार देती है। इससे समय भी बचता है और सटीकता भी बढ़ती है।
0: दादू, क्या इसके लिए वाकई में इतनी सटीकता आवश्यक होती है?
1: तुम्हारी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बेटा। कल्पना करो कि हजारों स्टील प्लेटें आपस में जुड़कर एक युद्ध पोत बनाती हैं। यदि किसी एक हिस्से की माप भी गलत हो जाए तो आगे पूरी संरचना प्रभावित हो सकती है। इसलिए आधुनिक शिपयार्डों में मिलीमीटर स्तर की सटीकता रखी जाती है।
0: अच्छा, हम बार बार रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दादाजी, क्या इन्हीं सब से जहाज कंट्रोल होता है?
1: एक तरह से हाँ बेटा, आधुनिक जहाजों में एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम होता है। ये जहाज का नियंत्रण केंद्र होता है, यहीं से जहाज की दिशा, गति, मार्ग और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है।
0: मतलब ये बिल्कुल कार चलाने जैसा होता है?
1: हाँ, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाज को चलाना कहीं अधिक जटिल होता है बेटा। समुद्र में कोई सड़क नहीं होती है, कोई लेन नहीं होती, इसलिए कप्तान को रडार, GPS, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट और संचार प्रणालियों की सहायता लेनी पड़ती है।
0: दादू, ये रडार आखिर काम कैसे करता है?
1: रडार बेटा रेडियो तरंगे भेजता है। जब ये तरंगे किसी जहाज, द्वीप या अन्य वस्तु से टकराती है तो वापस लौटती है। कंप्यूटर इन संकेतों का विश्लेषण करके वस्तु की दूरी और दिशा बता देता है, और इसी कारण रात, कोहरे या खराब मौसम में भी जहाज सुरक्षित रूप से मार्ग तय कर सकता है।
0: मतलब रडार समुद्र में जहाज की आंखों जैसा है।
1: बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही।
0: दादू, आज के जहाज पहले के जहाजों से बहुत अलग है।
1: बहुत अलग। पहले जहाजों में ज्यादातर यांत्रिक प्रणालियां होती थी बेटा। आज डिजिटल नेविगेशन, आधुनिक रडार, उपग्रह संचार, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली और उन्नत सेंसर लगाए जाते हैं। यानी आधुनिक जहाज केवल समुद्र में चलने वाले पोत नहीं है, बल्कि तैरते हुए तकनीकी केंद्र बन चुके हैं बेटा।
0: और GSL भी इसी बदलाव का हिस्सा है।
1: हाँ बिटिया, इसीलिए GSL केवल जहाज नहीं बना रहा, बल्कि भारत की भविष्य की समुद्री तकनीक को भी आकार दे रहा है।
0: दादू, आजकल स्टेल्थ शब्द भी बहुत सुनाई देता है, इसका क्या मतलब होता है?
1: स्टेल्थ का अर्थ है ऐसी तकनीक जिससे युद्धपोत दुश्मन के रडार पर आसानी से दिखाई ना दे। इसके लिए जहाज की बाहरी बनावट, उसके कोण और कई विशेष पदार्थों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि रडार की तरंगें कम परावर्तित हों। इससे दुश्मन के लिए उसकी सही पहचान करना कठिन हो जाता है।
0: यानी ये युद्धपोत समुद्र में मौजूद तो रहता है लेकिन दुश्मन को उसका पता आसानी से नहीं चलता।
1: हाँ बेटा, यही कारण है कि आधुनिक नौसेनाओं में स्टेल्थ तकनीक को बहुत महत्व दिया जाता है। कई नए भारतीय युद्धपोत भी इसी सोच के साथ डिजाइन किए जा रहे हैं।
0: दादू, इतने बड़े युद्धपोत में रडार, कंप्यूटर, संचार प्रणाली और इतने सारे उपकरण चलते रहते हैं, इन्हें बिजली कहाँ से मिलती है?
1: बिल्कुल सही सवाल है बेटा। युद्धपोत अपने आप में एक चलता फिरता बिजली घर होता है बेटा।
0: ऐसा?
1: उसमें शक्तिशाली डीजल जनरेटर लगाए जाते हैं जो लगातार बिजली पैदा करते हैं। इसी बिजली से रडार, संचार प्रणाली, कंप्यूटर, प्रकाश व्यवस्था, हथियार प्रणालियां और अनेक अन्य उपकरण चलाए जाते हैं। आजकल कई आधुनिक युद्धपोतों में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली भी होती है जो जरूरत के अनुसार बिजली का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करती है।
0: वाह दादू, यानी समुद्र के बीच भी पूरा जहाज अपने दम पर चलता है।
1: हाँ बेटा, इसलिए युद्धपोत को समुद्र में कई दिनों या कई सप्ताह तक किसी बाहरी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
0: अच्छा दादू, समुद्र में जब ज्वार आते हैं तब तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तब इतना विशाल जहाज पलटता नहीं है?
1: देखो बेटा, यही तो नौसेना वास्तुकला यानी नेवल आर्किटेक्चर का कमाल है। जहाज का भार, उसकी चौड़ाई, गहराई और गुरुत्वाकर्षण केंद्र का बहुत सावधानी से निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बेटा, जहाज के भीतर विशेष बैलास्ट टैंक बनाए जाते हैं। जरूरत के मुताबिक इसमें पानी भरा जाता है या निकाला जाता है, जिससे जहाज का संतुलन बना रहता है और वो ऊंची लहरों में भी स्थिर रहने की कोशिश करता है।
0: यानी युद्धपोत को तैराने और संतुलित रखने के पीछे केवल ताकत ही नहीं बल्कि गहरा विज्ञान भी काम करता है।
1: बिल्कुल बेटा, इसलिए जब हम किसी युद्धपोत को समुद्र में सहजता से आगे बढ़ते देखते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों वैज्ञानिकों, अभियंताओं और डिजाइनरों की वर्षों की मेहनत छिपी होती है। युद्धपोत केवल लोहे का ढांचा नहीं होता बल्कि विज्ञान, तकनीक और भारतीय प्रतिभा का अद्भुत संगम होता है।
0: सो तो है दादाजी।
1: बिल्कुल बढ़िया। समुद्र में तैरता हुआ हर जहाज इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी और तकनीक का अद्भुत तालमेल होता है।
0: दादू, जब डिजाइन तैयार हो जाता है तब क्या होता है?
1: फिर शुरू होती है स्टील कटिंग। विशाल स्टील प्लेटें शिपयार्ड में लाई जाती हैं, उन्हें साफ किया जाता है, उन पर खास कोटिंग की जाती है, फिर कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें उन्हें जरूरी आकार में काटती हैं।
0: तो दादू, क्या पूरा जहाज एक साथ बनाया जाता है?
1: नहीं नहीं बेटा, यही सबसे रोचक बात है। जहाज छोटे छोटे ब्लॉकों में बनाया जाता है, जैसे बच्चे खिलौनों के ब्लॉकों से घर बनाते हैं ना, फिर इन्हीं विशाल ब्लॉकों को जोड़कर जहाज बनाया जाता है।
0: पर दादू, इन ब्लॉकों को जोड़ा कैसे जाता है?
1: वेल्डिंग द्वारा। वेल्डिंग जहाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है बेटा। एक मजबूत वेल्ड हजारों टन के जहाजों को मजबूती प्रदान करती है।
0: दादू, जीएसएल खासतौर पर गश्ती पोतों के लिए प्रसिद्ध क्यों है?
1: क्योंकि उसने इस क्षेत्र में अलग अलग विशेषज्ञता विकसित की है। गश्ती पोत या पेट्रोल वेसल ऐसे जहाज होते हैं जो समुद्री सीमाओं की निगरानी करते हैं, तस्करी रोकते हैं, खोज और बचाव अभियान चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं।
0: तो क्या ये युद्धपोतों से छोटे होते हैं?
1: लेकिन ये बेहद तेज और चुस्त होते हैं बेटा। इनमें आधुनिक रडार, संचार प्रणाली और नेविगेशन उपकरण लगाए जाते हैं।
0: दादू, मैंने पढ़ा था कि जीएसएल स्टील और एल्यूमिनियम दोनों प्रकार के जहाज बनाता है, क्या ये बात सच है?
1: हाँ सच है, क्योंकि दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। स्टील मजबूत होता है जबकि एल्युमिनियम हल्का होता है। हल्का जहाज अधिक गति हासिल कर सकता है, इसलिए जहाज के उपयोग के अनुसार सामग्री का चयन किया जाता है।
0: दादू, आपने कहा था कि जीएसएल की अपनी डिजाइन क्षमता है, कहा था कि नहीं?
1: हाँ हाँ बेटा, कहा था।
0: तो फिर ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
1: क्योंकि हर देश की जरूरतें अलग अलग होती हैं। यदि जहाजों का डिजाइन भी अपने देश में ही विकसित किया जाए तो विदेशी निर्भरता कम होती है, साथ ही जरूरत के मुताबिक नए बदलाव भी आसानी से किए जा सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।
0: दादू, क्या जीएसएल में अनुसंधान भी होता है?
1: हाँ बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास किसी भी आधुनिक संस्थान की आत्मा होता है। यही नई तकनीकें विकसित होती हैं, नए डिजाइन तैयार किए जाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के समाधान भी खोजे जाते हैं।
0: दादू, ये कितना सही है कि आज का विद्यार्थी ही कल का जहाज डिजाइनर, नौसेना वैज्ञानिक या समुद्री अभियंता बन सकता है।
1: देखो बिटिया, एक आधुनिक शिपयार्ड वास्तव में एक चलता फिरता विश्वविद्यालय जैसा होता है, जहां हर दिन कुछ नया सीखा और बनाया जाता है।
0: दादू, इसका मतलब यही कारण है कि जीएसएल अन्य कई शिपयार्डों से थोड़ा अलग दिखाई देता है।
1: तुमने बिल्कुल सही समझा बेटा। जहां अधिकांश लोग इसे केवल जहाज निर्माण से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण, सिमुलेशन और आधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: दादू, ये सिमुलेशन क्या होता है?
1: मान लो कोई नौसैनिक पहली बार समुद्र में जा रहा है, क्या उसे सीधे तूफान के बीच भेज देना चाहिए?
0: ना ना बाबा, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा दादाजी।
1: ठीक यही कारण है कि सिमुलेटर बनाए जाते हैं। सिमुलेटर ऐसी व्यवस्था होती है जहां वास्तविक परिस्थितियों जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तेज हवा, ऊंची लहरें, आग लगने की स्थिति, पानी भरने की स्थिति और आपातकालीन बचाव अभियान, इन सब का अभ्यास पहले से ही कराया जाता है।
0: मतलब जैसे एरोप्लेन के पायलट पहले फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं?
1: बिल्कुल वैसा ही बेटा। और जीएसएल ने ऐसे कई विशेष प्रशिक्षण सिमुलेटर विकसित किए हैं।
0: दादू, यदि समुद्र में जहाज को नुकसान पहुंच जाए तो उस स्थिति को कैसे संभाला जाता है?
1: उसके लिए नौसैनिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे, जीएसएल द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर एशिया में अपनी तरह की अनूठी सुविधाओं में से एक माना जाता है।
0: और इसमें होता क्या है?
1: कल्पना करो कि किसी जहाज में आग लग गई है, ठीक है? अब उसके किसी हिस्से में पानी भरने लग गया है। नौ सैनिकों को तुरंत निर्णय लेना होता है, कहां जाना है, किस वाल्व को बंद करना है, किस उपकरण का उपयोग करना है। ये सब प्रशिक्षण इसी प्रकार के सिम्युलेटर में कराया जाता है।
0: समझ गए दादू। अच्छा, आपने एक बार ONGC के लिए भी किसी विशेष सुविधा का उल्लेख किया था।
1: हाँ हाँ बेटा, ये सुविधा समुद्र के बीच तेल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई है। समुद्र शांत हो तो काम आसान लगता है, लेकिन प्रकृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती बेटा।
0: सही कहा दादू आपने, कभी तूफान आ जाता है, कभी ऊंची लहरें उठने लगती हैं और कभी अचानक आपात स्थिति पैदा हो जाती है।
1: और ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए जीएसएल ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा विकसित की है।
0: समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा, ये क्या है दादू?
1: हाँ हाँ बेटा, यहाँ कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि संकट की स्थिति में स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना है, लाइफ जैकेट का उपयोग कैसे करना है, लाइफ राफ्ट तक कैसे पहुंचना है, समुद्र में गिर जाने पर क्या करना है और बचाव दल आने तक धैर्य कैसे बनाए रखना है।
0: अच्छा दादू, एक बात बताइए ना, ये जीएसएल का संबंध विमानों से भला कैसे जुड़ गया?
1: यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। गोवा में स्थित INS हंसा भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण नौसैनिक वायु स्टेशन है। यहाँ नौसेना के विमान और पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जीएसएल ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से एक विशेष शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी के निर्माण में योगदान दिया।
0: शोर बेस्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी?
1: हाँ हाँ, विमान वाहक पोत पर विमान उतारना और उड़ाना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है बेटा।
0: सो तो है।
1: इसलिए पहले जमीन पर ही ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जो विमान वाहक पोत जैसा महसूस हो। यही पायलट अभ्यास करते हैं, फिर वास्तविक समुद्री अभियानों में भाग लेते हैं।
0: वाव दादू, मतलब जीएसएल ने केवल जहाज ही नहीं बनाए, बल्कि नौसैनिक पायलटों के प्रशिक्षण में भी बड़ा योगदान दिया है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा दादू, आपने बताया था कि गोवा शिपयार्ड में आधुनिक शिप लिफ्ट सुविधा भी है, ये क्या होती है?
1: ये बहुत रोचक तकनीक है बिटिया। जैसे किसी बहुमंजिला इमारत में लोगों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्ट लगी होती है ना, वैसे ही शिप लिफ्ट विशाल जहाजों को पानी से बाहर निकालने और वापस पानी में उतारने का काम करती है।
0: इतने बड़े जहाज को दादू लिफ्ट कैसे उठा सकती है?
1: अरे बुद्धू, शिपलिफ्ट साधारण लिफ्ट थोड़ी होती है। ये स्टील के विशाल प्लेटफॉर्म, शक्तिशाली मोटरों और कंप्यूटर नियंत्रित प्रणाली से संचालित होती है। जब जहाज प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाता है तब कई सिंक्रोनाइज्ड विंच और केबल एक साथ काम करते हैं और पूरे जहाज को धीरे धीरे ऊपर उठा लेते हैं।
0: लेकिन दादू, जहाज को पानी से बाहर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
1: अरे बेटा, जहाज के निचले हिस्से की मरम्मत, पेंटिंग, निरीक्षण और रखरखाव पानी के भीतर नहीं किया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसे बाहर निकालना पड़ता है।
0: अच्छा।
1: पहले इसके लिए मुख्यतः ड्राई डॉक का उपयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक शिपलिफ्ट तकनीक इस प्रक्रिया को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाती है।
0: तो इससे भी समय की बचत होती होगी।
1: हाँ, जहाज को अपेक्षाकृत कम समय में उठाया जा सकता है। इसके बाद उसे विशेष रेल प्रणाली या ट्रांसफर प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरम्मत क्षेत्र तक ले जाया जाता है। इससे एक ही समय में कई जहाजों पर काम करना संभव हो जाता है।
0: अब समझ में आया दादू मुझे कि जहाज बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें वर्षों तक सुरक्षित और सक्षम बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
1: तभी तो बिटिया, और यही काम आधुनिक शिपलिफ्ट जैसी तकनीकें आसान बनाती हैं।
0: दादू, ये GSL और किस तरह के जहाज बनाता है?
1: इसने तेज गति वाली इंसेप्टर बोट्स भी बनाई है। इनका उपयोग तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी कोई संदिग्ध नाव समुद्री सीमा में प्रवेश करे तो यही बोट्स तुरंत उसका पीछा कर सकती है।
0: मतलब ये समुद्र की पुलिस कार जैसी होती है।
1: बिल्कुल सही तुलना की तुमने बेटा।
0: दादू, इतने वर्षों की यात्रा के बाद GSL का भविष्य कैसा दिखता है?
1: बहुत उज्जवल बेटा। आज भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में GSL जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: हाँ दादाजी, सही कहा आपने। भविष्य में भारत को अधिक आधुनिक गश्ती पोतों, तेज इंटरसेप्टर नौकाओं, विशेष प्रशिक्षण प्रणालियों और नई समुद्री तकनीकों की जरूरत होगी, और इन सब के विकास में GSL महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
1: हाँ बेटा, भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्मार्ट सेंसर का उपयोग और बढ़ेगा। जहाज अपने कई कार्य स्वयं कर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता बहुत बेहतर होगी। पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग बढ़ता जाएगा, और संभव है कि कुछ विशेष जहाजों में मानव हस्तक्षेप पहले की तुलना में बहुत कम रह जाए।
0: दादाजी, यानी समुद्र की दुनिया भी तेजी से बदल रही है।
1: हाँ बिटिया, और GSL जैसे संस्थान उसी भविष्य की तैयारी आज से कर रहे हैं। ज्वारी नदी के किनारे शुरू हुई ये यात्रा आज आत्मनिर्भर भारत की समुद्री शक्ति का महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है बेटा। और शायद इसी कारण GSL केवल एक शिपयार्ड नहीं बल्कि भारत की समुद्री भविष्य का निर्माता भी है।
0: चलिए दादाजी, अब अपन घर चलते हैं। आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ।
1: अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह वाह, चलो चलो चलो चलो।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज बात हो रही थी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL की, एक छोटे यार्ड से राष्ट्रीय शिपयार्ड तक की कहानी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, लेखन था स्वाति गिरी का, और आपके साथ मैं भगवती सक्सेना
1: और मैं दीपक नेमा।
0: सुनते रहिए आपका अपना रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
2: तारीख मध्य प्रदेश की धरती ने एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चुंगुल से आजाद कराने के लिए हंसते हंसते अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया।
1: मैं जानती हूँ आज तुम मध्य प्रदेश की धरती का गुणगान क्यों कर रहे हो।
2: अच्छा, क्यों कर रहे हैं?
1: क्योंकि तुम मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में हो, जहाँ 3 जून 1891 को राय साहब त्रिलोक्यनाथ मुखर्जी के घर एक महान क्रांतिकारी अवनीनाथ मुखर्जी ने जन्म लिया था।
2: बिल्कुल ठीक कहा तुम।
1: अवनीनाथ के बचपन में किसने सोचा था कि आगे चलकर वह महान क्रांतिकारी बनेगा?
2: हाँ तारीख, अवनीनाथ का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपको बताता हूँ। अवनीनाथ ने वस्त्र उद्योग में स्नातक उपाधि प्राप्त की और इस कला के उच्च अध्ययन के लिए पहले वे जापान और फिर जर्मनी जा पहुँचे। जर्मनी में उन दिनों भारतीय क्रांति की फसल पनप रही थी, क्योंकि वहाँ का स्वतंत्र वातावरण इसके लिए काफी अनुकूल था। अनेक प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी उस समय जर्मनी के बर्लिन शहर में थे। अवनीनाथ उनके संपर्क में आए तो फिर पूरी तरह से उनके रंग में रंग गए, ऐसे कि उन्होंने भारत माता की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का संकल्प ही ले लिया।
1: हाँ, कुछ ही समय में वे क्रांतिकारी श्रृंखला की प्रमुख कड़ी बन गए। जर्मनी के प्रवासी क्रांतिकारियों के संपर्क से भारत में पहुंचने के लिए हथियारों का प्रबंध करना अवनीनाथ का प्रमुख दायित्व था।
2: ब्रिटिश शासन के खुफिया विभाग ने उन्हें भयानक क्रांतिकारी की संज्ञा दे रखी थी और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जासूसों का एक पूरा दल उनके पीछे छोड़ दिया था। पर अवनीनाथ जासूसों की जासूसी करने की कला में निपुण थे। उन्हें कोई ब्रिटिश जासूस जानता ही नहीं था कि आखिर अवनीनाथ मुखर्जी नाम का क्रांतिकारी कौन सा है। इसके चलते कई बार वे अपने लिए तैनात जासूसों के साथ ही सफर कर चुके थे और कोई ब्रिटिश जासूस जान ही नहीं पाया था कि उनके साथ सफर करने वाला व्यक्ति वही अवनीनाथ मुखर्जी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार बेचैन है।
1: अपने दायित्व की पूर्ति के सिलसिले में सन 1912 में जब अवनीनाथ भारत लौटे तो अपने शक की जाँच के लिए ब्रिटिश जासूसों का एक दल भी उनके पीछे पीछे भारत आया। कुछ दिन ब्रिटिश जासूसों की आंखों से ओझल रहने के लिए अवनीनाथ ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप द्वारा स्थापित वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय में प्राध्यापकी स्वीकार कर ली। प्राध्यापकी तो केवल बहाना थी, उद्देश्य था वृंदावन को कुछ समय के लिए आश्रय स्थली बनाना। उचित अवसर पाकर अवनीनाथ वृंदावन से गायब होकर जापान जा पहुँचे। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार इकट्ठे करने की योजना अभी अधूरी जो थी।

0: जापान से शस्त्र विक्रेताओं से सौदा करके अवनीनाथ जब जापान से भारत के लिए जहाज पर सवार हुए तो साथ ही एक ब्रिटिश जासूस भी उनके साथ उस जहाज में सवार हो गया। जिस केबिन में अवनीनाथ यात्रा कर रहे थे वह जासूस भी उसी केबिन में उनका सहयात्री बन करके उनसे मित्रता गाढ़ने की गरज से तरह तरह की बातें करता रहा। यूं तो अवनीनाथ के पास कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी, पर जापान के शस्त्र विक्रेताओं के कुछ पते जरूर एक कागज पर लिखे हुए थे। जब वह सहयात्री नहाने के लिए स्नान गृह में गया तो अवनीनाथ ने पते वाला कागज शैया के मोटे गद्दे के नीचे दबा दिया और निश्चिंत हो गए।
1: पर जासूस ने अवनीनाथ की तलाशी लेने के लिए एक चाल चली। जब जहाज सिंगापुर पहुंचा तो वहां बंदरगाह पर भारी सरगर्मी थी। अवनीनाथ को शक तो हुआ पर वे जासूसों की चाल समझ नहीं पाए। फिर वे अपने पास का एकमात्र आपत्तिजनक पते वाला कागज अपने कब्जे से हटा ही चुके थे, सो निश्चिंत बने रहे। ब्रिटिश जासूसों ने केबिन में दवा छिड़कने के बहाने अवनीनाथ मुखर्जी और उनके सहयात्री को केबिन से बाहर निकाला और तलाशी का काम शुरू कर दिया।
0: आखिर तलाशी में जापान के शस्त्र विक्रेताओं के पते वाला कागज जासूसों के हाथ लग ही गया। ब्रिटिश जासूसों ने समुद्री तार द्वारा जापान से इस बात की पुष्टि कर ली कि अवनीनाथ मुखर्जी उस कागज पर लिखे पतों ठिकानों पर हथियारों की खरीद के लिए पहुंचे थे। अवनीनाथ मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अवनीनाथ ने लाख सफाई दी कि उस कागज से उसका कोई वास्ता नहीं है। फिर वह कागज उनके पास से बरामद भी नहीं हुआ है बल्कि सहयात्री के गद्दे के नीचे से निकला है, पर उनकी कोई दलील नहीं सुनी गई। जापान के शस्त्र विक्रेताओं से प्राप्त जानकारी उनके विरुद्ध थी। उन्हें सिंगापुर से गिरफ्तार करके भारत लाया गया।
1: भारत पहुंचने पर गिरफ्तारी की अवस्था में अवनीनाथ कब और कैसे ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से निकल भागे कोई नहीं जान पाया। वह रहस्य ही बना रहा। इधर भारत में पुलिस इस मामले की तहकीकात और अवनीनाथ की पुनः गिरफ्तारी के प्रयासों में जुटी रही। उधर अवनीनाथ मुखर्जी सबको चकमा देकर हॉलैंड जा पहुँचे।

0: बना।
1: भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भी यह घटना कम विस्मयकारी नहीं थी कि भारत से गायब होकर के हॉलैंड में अवनीनाथ मुखर्जी न केवल द्वितीय कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर भारतीय प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, बल्कि कुमारी रोशा फिटिंगफ के साथ प्यार की पेंगे भी बढ़ा रहे थे। आखिर हॉलैंड में ही रहते हुए उन्होंने रोशा फिटिंगफ से 1920 में विवाह कर लिया।
2: सन 1922 में अवनीनाथ मुखर्जी बर्लिन में थे और अपने पुराने क्रांतिकारियों के साथ भारत की आजादी की योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। हॉलैंड से गायब होकर वे कब बर्लिन पहुंचे, कोई नहीं जानता था। बर्लिन में उस समय जो भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे, उनमें सुरेंद्र कर, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त और मोहम्मद बरकतुल्लाह प्रमुख थे। अवनीनाथ मुखर्जी इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए थे।
1: बर्लिन में मौजूद क्रांतिकारियों ने यह महसूस किया कि वह समय आ गया है जब उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत पहुंचकर विभिन्न प्रांतों में गुप्त संगठनों द्वारा विद्रोह की भूमिका बनाए। इस काम के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो न केवल हुलिया बदलने में माहिर हो, वरन आवाज बदलकर विभिन्न प्रांतों की बोलियों के लहजे में भी बात कर सके। सभी क्रांतिकारियों ने एक मत से इसके लिए अवनीनाथ मुखर्जी का चुनाव किया, क्योंकि हुलिया और आवाज बदलने में उन्हें इतना कमाल हासिल था कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाते थे। कई अवसरों पर वे अपने इस हुनर का लोहा मनवा चुके थे।
2: आखिर अवनीनाथ मुखर्जी अपने साथियों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरे उतरे। अत्यंत कुशलता के साथ उन्होंने साथियों द्वारा सौंपा गया दायित्व पूरा किया। मद्रास, गया, कलकत्ता और ढाका नगरों में उन्होंने क्रांति की संरचना पूरी सफलता के साथ नियोजित की। अपना काम पूरा करके वे सन 1924 में यूरोप के लिए रवाना हो गए।
1: रूस के मास्को नगर में रह करके उन्होंने भारत के संबंध में अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें आजादी के लिए भारत का दावा पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया था। रूसी प्रवास में ही भारत की आजादी के चिंतक, भारत माता के सपूत अवनीनाथ मुखर्जी ने 28 अक्टूबर 1937 को अपने जीवन की अंतिम सांसें गिनी और अपना नाम हमेशा के लिए भारत के महान सपूतों की सूची में दर्ज करा दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आजाद हिंद, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नादिर शाह के नौसैनिक बेड़े का विद्रोह सन 1740, विश्वासघात और बिखरते सपने। अगस्त सन 1740 की भीषण गर्मी में एशिया के नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह के महत्वाकांक्षी नौसैनिक सपने अचानक खून और धोखे के दुःस्वप्न में बदल गए। वर्षों तक फारसी शासक ने अपनी शक्तिशाली सेना के बराबर एक समुद्री बल बनाने के लिए काम किया था। उन्होंने तकनीक के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का सहयोग लिया, जबकि जहाज चलाने के वास्तविक अनुभव के लिए स्थानीय अरब जनजातियों पर निर्भर रहे। हालांकि ये किराए की नौसेना रेत की नींव पर खड़ी थी, जो केवल सिक्कों और रोटी के वादे से जुड़ी हुई थी। ये संकट रणनीतिक बंदरगाह बंदर ए लाफ्ट पर भड़का। विभिन्न खाड़ी जनजातियों से भर्ती किए गए अरब नाविकों में भारी रोष था, क्योंकि उन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला था और उनके राशन के भंडार खाली पड़े थे। यूरोपीय कंपनियों के अनुशासित क्रू के विपरीत, जहां कील हॉलिंग जैसे कठोर सजाओं से व्यवस्था रखी जाती थी, इन नाविकों को एक ऐसे तानाशाह की सेवा करनी पड़ रही थी जो अपने नाविकों की बुनियादी जरूरतों से ज्यादा विजय को प्राथमिकता देता था। विद्रोह कोई शांत पलायन नहीं था, ये सामूहिक हिंसा का एक विस्फोट था। नाविकों ने एक साथ उठकर अपने कमांडरों पर अपना गुस्सा निकाला। इस अराजकता में उन्होंने फारसी एडमिरल मीर अली खान की हत्या कर दी और उन सभी को मार डाला जिन्होंने उनका विरोध करने का साहस किया। जिन पुरुषों को नादिर शाह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए रखा था, वे अब इसके सबसे खतरनाक चोर बन गए थे। उन्होंने लंगरगाह से हर संभव जहाज को अपने कब्जे में लिया और खाड़ी में गायब हो गए। इस घटना ने एक चौंकाने वाली विडंबना को उजागर किया। नादिर शाह के बेड़े का निर्माण विशेष रूप से यूरोपीय नौसैनिक प्रभुत्व को दरकिनार करने और समुद्री मार्गों पर फारसी आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया गया था। फिर भी अपनी ही नौसेना के विद्रोह और कुशल नाविकों के चले जाने के बाद शाह को मदद के लिए वापस यूरोपीय शक्तियों की ओर मुड़ना पड़ा। फारसी अधिकारियों ने EIC और डच VOC से प्रार्थना की कि वे अपने श्रेष्ठ युद्ध पोतों का उपयोग उन्हीं जहाजों को हराने के लिए करें जिन्हें यूरोपीय लोगों ने हाल ही में फारसियों को बेचा था। इस संकट का जवाब एक हताश और तात्कालिक गठबंधन के रूप में मिला। उन्हें मदद के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने इनकार किया तो घबराए हुए फारसी अधिकारी उन पर हमला कर सकते हैं। उन्हें बागियों की ओर ले जाने के लिए अपने ही दल को रिश्वत देनी पड़ी। अंग्रेजों ने एक ट्रांकी यानी एक छोटा तटीय जहाज प्रदान किया, जिसमें फैक्ट्री के गार्ड और अकेला तोपची तैनात था। अंग्रेज रिपोर्टों के अनुसार इन गार्डों ने डच या फारसियों की तुलना में कहीं अधिक डटकर मुकाबला किया। सन 1740 का विद्रोह शक्ति के संयोजन की सीमाओं की याद दिलाता है। इसने साबित कर दिया कि जहां जहाज और तोपें खरीदी जा सकती हैं, वहीं वफादारी और समुद्री कौशल को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। नादिर शाह के लिए उनके अरब

0: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ में हूँ फराज। रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहाँ दो दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान के दूसरे दिन विख्यात कर्नाटक संगीत गायिका और संगीतकार सुधा रघुरामन ने अपने साथियों के साथ अपने गायन की प्रस्तुति दी।
1: प्रस्तुति का आरंभ तुलसीदास द्वारा रचित गाये गणपति, जो द्वि राग में रचित है, राग वासंती और राग हंसध्वनि का मिलन आप सुनेंगे। दोनों के नोट्स एक ही लाइन में बार बार लूप जैसे दोहराते रहेगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे आउटस्टैंडिंग सुविख्यात अकम्पनिस्ट रघु जी, एक और बार बांसुरी पर तालियां, चंद्रू जी, चंद्रशेखर जी, शंभू जी और तंबुला तबला, और आप सभी की। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं होम ग्राउंड है, ये मेरा होम ग्राउंड है, मोर देन दिल्ली।

संत नारायण तीर्थ जी द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत रचना, जो राग बागेश्री और ताल खंड चापू या झपताल जो हिंदुस्तानी शैली में कहा जाता है पर निबद्ध है। कृष्ण भगवान के बारे में बहुत सुंदर रचना और डिस्क्रिप्शन है इसमें। भाग्यश्री राग और ताल खंड चापू संत नारायण तीर्थ द्वारा रचित गोविंदम इह गोपिका नंद कंदम, ये संस्कृत भाषा में है। क्योंकि हम भाषाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहली प्रस्तुति तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी और अब संस्कृत में।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अब मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी कुमारी मूलर और सेवियर दंपत्ति के साथ यूरोप भ्रमण करने गए। वहां स्विट्जरलैंड और जर्मनी भ्रमण कर वे एल्प्स पर्वत के मनोरम स्थानों को देखकर मुग्ध हुए थे। उन्हें अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश की याद आ रही थी। उनका मन हुआ, क्यों ना हिमालय की सुंदर घाटी में एक आश्रम बनाया जाए। परवर्ती काल में सेवियर दंपत्ति की सहायता से उनका यह सपना पूरा हुआ। अल्मोड़ा के पास मायावती आश्रम आज भी स्वामी जी की स्मृति संजोए स्थित है।
1: जर्मनी से प्रोफेसर डायसन के आमंत्रण पर स्वामी जी उत्तरी जर्मनी के कील बंदरगाह गए। वहां से पुनः इंग्लैंड वापस आए। प्रोफेसर डायसन स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुए थे। वे और कुछ दिन स्वामी जी के संग बिताने के लिए उनके साथ लंदन आए।
0: लंदन वापस आकर स्वामी जी नए उत्साह के साथ व्याख्यान देने लगे। इस बार वे वेस्ट मिनिस्टर अंचल में ठहरे, जहां गुडविन भी अमेरिका से आ गए और स्वामी अभयानंद भी उन्हीं के साथ रहने लगे। इस बार स्वामी जी ज्यादातर वेदांत दर्शन पर बोले। उन्हें राजयोग और ध्यान के विषय में भी बोलना पड़ता था।
1: प्रोफेसर डायसन प्रायः स्वामी जी के पास आते और वेदांत के गूढ़ अर्थ समझते। अब उन्हें समझ में आ गया कि पाश्चात्य दृष्टिकोण लेकर भारतीय शास्त्रों का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। उसे समझने के लिए पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा, संस्कृति तथा राजनीति का आवरण उतारकर प्राच्य के खुले आकाश के नीचे खड़े होना होगा। इधर प्राध्यापक मैक्स मूलर के साथ भी स्वामी जी का पत्र व्यवहार चल रहा था। इस तरह इन तीन मनीषियों के आपसी सहयोग से उस समय वेदांत प्रचार का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया था।
0: उन्होंने ईसा मसीह के उपदेशों का गहन अध्ययन किया और बाइबिल का गूढ़ अर्थ समझा। इसके फलस्वरूप पाश्चात्य विचार जगत ने वेदांत में एक नया और पूर्ण जीवन दर्शन का आविष्कार किया था। स्वामी जी के भाषण केवल शब्द मात्र नहीं थे, बल्कि शब्दों के माध्यम से शक्ति संचारित होकर श्रोताओं को अभिभूत कर देती थी। सारे व्याख्यान वे बिना तैयारी के ही देते थे।

0: उन दिनों स्वामी जी के छोटे भाई महेंद्र नाथ दत्त इंग्लैंड में पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने उस काल का स्मरण करके लिखा है कि
1: व्याख्यान शुरू होने के पहले तक स्वामी जी हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें करते रहते थे। मंच पर चढ़ते समय गुडविन उनके कानों में उस दिन के प्रवचन का विषय बता देते थे। उस समय उनके चेहरे पर एक अपूर्व परिवर्तन आता, वे एक अलग ही व्यक्ति बन जाते, जैसे दैवीय प्रेरणावश भाषण शुरू कर देते। बाद में आशुलिपिक गुडविन जब उन्हें उनके भाषणों को लिखकर दिखाते तो वे अवाक हो जाते और कहते,
2: गुडविन ये मेरे भाषण है, मैंने कहा था ये सब, तुमने गलती तो नहीं की।
3: उन दिनों स्वामी जी का भाषण सुनने अनेक विद्वान आते थे जो स्वयं भी भाषणकार थे। उन लोगों ने बाद में कहा था कि वे स्वामी जी की भाषण शैली का अनुकरण करने लगे थे। गंभीर विषयों को सरल बनाकर समझाने में स्वामी जी का जोड़ नहीं था।
0: अमेरिका तथा इंग्लैंड का कार्य सुव्यवस्थित हुआ देख अक्टूबर से ही स्वामी जी के मन में भारत लौटने का विचार हो गया और पत्रों एवं वार्तालापों के दौरान उन्होंने अपनी ये इच्छा घनिष्ठ मित्रों के सम्मुख व्यक्त भी की। अतः ये तय हुआ कि स्वामी जी गुडविन और सेवियर दंपत्ति के साथ भारत जाएंगे। गुडविन इंग्लैंड से ही जहाज में जाएंगे और समुद्र यात्रा कम करने के लिए स्वामी जी और सेवियर दंपत्ति स्थल पथ से इटली के नेपल्स तक जाएंगे और वहां से जहाज में सवार होंगे।
3: नॉर्थ जर्मन लॉयड कंपनी के एक नव निर्मित जहाज का टिकट खरीदा गया जो 30 दिसंबर को नेपल्स से कोलंबो जाने वाला था। प्रिंस रीजेंट लियोपोल्ड जहाज में स्थान मिला। सेवियर दंपत्ति स्थायी रूप से भारत में ही निवास करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्थायी व अस्थायी सभी संपत्ति बेच दी। मिस मूलर थोड़े दिनों बाद अपनी सेविका के साथ भारत आने वाली थी। मिस मूलर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए धन देने का वादा किया था। स्वामी जी ने मन ही मन सोच रखा था कि मार्गरेट नोबल को भारत बुलाकर नारी विद्यालय का भार उन्हें सौंपेंगे।
0: सन 1896 ईस्वी के नवंबर दिसंबर में सूखे के फलस्वरूप भारत में अकाल पड़ा। इसकी खबर अखबारों में पढ़कर स्वामी जी का मन अकाल पीड़ितों के लिए रो पड़ा। उन्होंने कुछ पैसे इंडियन मिरर को भेजे। राहत कार्य के लिए कुमारी एमलिन साउटर ने भी धन दिया। अतः ये कहा जा सकता है कि इसी प्रकार भावी रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का सूत्रपात हुआ था।

0: इधर श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी के पत्रों से उनके स्वदेश वापस जाने की खबर जानकर लिखा कि कलकत्ते में स्थायी मठ की स्थापना के लिए वे धन देना चाहती हैं। स्वामी जी ने तत्काल वो धन स्वीकार नहीं किया। संपूर्ण रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद उन्होंने श्रीमती बुल से सहायता लेकर बेलूड़ मठ की स्थापना की।
1: लंदन के छात्र छात्राओं को जब ज्ञात हुआ कि स्वामी जी स्वदेश लौट रहे हैं तो वे दुखी हो गए। स्टर्डी महोदय के नेतृत्व में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई के पूर्व रविवार 13 दिसंबर को रॉयल सोसाइटी ऑफ पैटर्न्स इन वाटर कलर्स के भवन में उस दिन जगह कम पड़ गई और स्वामी जी भी भारी मन लिए वहां उपस्थित हुए। श्री एरिक हैमंड ने लिखा है,
2: वो लंदन का एक रविवार था। दुकानों के द्वार बंद थे, व्यापार वाणिज्य स्थगित थे और महानगर के राजमार्ग, जो वाहनों से कोलाहल पूर्ण रहते हैं, कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत शांत थे। लंदनवासी रविवार की अपनी विशिष्ट वेशभूषा में शांत बल्कि मौन चर्च तथा प्रार्थना भवन की ओर चले जा रहे थे। जिन स्वामी जी का आगमन उनके मित्रों के हृदय में गहरा स्थान बना चुका था, आज अपराह्न वे लोग उन्हें अलविदा कहने वाले थे। जिस हॉल में उन्हें विदाई दी जा रही थी वो चित्रकारों के लिए निर्दिष्ट था और उसकी दीवारों पर अनेक चित्र शोभायमान हो रहे थे। अंग्रेजों की राजधानी के जिस मंच से स्वामी जी अपना अंतिम भाषण देने वाले थे वो विविध प्रकार के पत्र पुष्पों से सुसज्जित था। समाज के सभी प्रकार के सभी श्रेणियों के लोग वहां उपस्थित थे, परंतु सबके मन में केवल एक ही कामना जाग रही थी, उन्हें देखने की, उनकी वाणी सुनने की और यदि संभव हुआ तो एक बार उनका वस्त्र स्पर्श करने की। मंच के ऊपर निर्दिष्ट समय पर गायकों एवं वादकों की सुमधुर सुर लहरी उठ रही थी। स्वामी जी ने जिन नर नारियों की श्रद्धा और प्रीति पाई थी उसे व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने व्याख्यान दिए। उन्हें सुनकर बीच बीच में तथा व्याख्यानों के अंत में तुमुल हर्ष ध्वनि उठ रही थी। अनेक लोग मौन नीरव तथा भारी मन लिए बैठे रहे। कुछ आंखें नम थीं। केवल एक ही आकृति, एक ही रूप उस वेदना से संघर्ष करते हुए उस पर विजय पा रही थी। गैरिक वर्ण के वेश धारण किए स्वामी जी जैसे एक प्रकाश पुंज के समान लोगों के बीच विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा,
3: हाँ हाँ, हम फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे।
1: इस अवसर पर स्वामी जी ने हेमंत से कहा था,
3: संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान त्याग कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य करना बंद नहीं करूंगा। मैं मानव जाति को सर्वत्र और तब तक प्रेरणा और सहायता देता रहूंगा जब तक सभी लोग सर्वोच्च तत्व को जान नहीं लेते।
0: इंग्लैंड में स्वामी जी का अंतिम व्याख्यान हुआ 10 दिसंबर को। विषय था अद्वैत वेदांत। इस भाषण और इंग्लैंड में उनकी सफलता तथा विदाई समारोह के बारे में इंडियन मिरर में छपा,
4: 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को अद्वैत वेदांत पर स्वामी जी का जो आखिरी व्याख्यान हुआ उस समय पूरा सभागार श्रोताओं से भर गया था कि कहीं कोई इस अंतिम भाषण से वंचित ना रह जाए। इस कारण वे लोग विशेष चिंतित थे। जिस ध्यान के साथ इन विचारशील लोगों ने स्वामी जी के लंदन के व्याख्यान सुने वो इस बात का सूचक है कि स्वामी जी की वेदांत की व्याख्या के प्रति वे कितनी गंभीरता के साथ आकृष्ट हुए थे। ये व्याख्या एक ऐसे व्यक्ति के मुख से हुई जिनके व्यक्तित्व ने अनेक लोगों की श्रद्धा तथा अन्य अनेक लोगों की प्रीति को आकृष्ट किया था। उस व्याख्या की उपयोगिता न केवल पाश्चात्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में थी अपितु उस प्राच्य जीवन में भी वो उतना ही कारगर था जहां सर्वप्रथम इसे व्यक्त किया गया। उस उदार तथा विवेकपूर्ण व्याख्या के फलस्वरूप विभिन्न मतवादों के लोग, यहाँ तक कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के अनेक पादरी आकृष्ट हुए और ये लोग मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं को यथासंभव दूर दूर तक प्रसारित करने में लग गए। स्वामी जी किसी भी संप्रदाय के पक्षपाती नहीं हैं, वे धर्म के प्रचारक हैं, किसी विशेष धर्म के नहीं। धर्म के विराट क्षेत्र में जो लोग किसी विशेष मत के पक्षधर हैं, वे भी उनके साथ विरोध करने का कोई कारण नहीं पा सके। विदाई की सभा में जो लोग उपस्थित हुए थे, उनमें सामरिक तथा असामरिक विभागों के ऐसे अनेक पुराने राज कर्मचारी भी थे जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष भारत में बिताए थे, इसलिए वे भारत के बारे में काफी कुछ जानते थे।
1: लंदन में स्वामी जी की सफलता के बारे में सुप्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्री विपिन चंद्रपाल ने 15 फरवरी 1899 के इंडियन मिरर में लिखा था,
5: भारत के कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का कोई विशेष फल नहीं हुआ और मित्र तथा अनुयायियों ने उनके कार्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है, परंतु यहाँ पर आकर मैंने देखा कि उन्होंने यहाँ पर सर्वत्र एक उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। इंग्लैंड के अनेक अंचलों में मेरी ऐसे बहुत से लोगों से मुलाकात हुई जो स्वामी विवेकानंद के प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखते हैं। यद्यपि मैं उनके संप्रदाय का नहीं हूँ और यह सत्य है कि मेरा उनसे काफी मतभेद है, तथापि मैं ये कहने को बाध्य हूँ कि विवेकानंद ने यहाँ के अनेक लोगों की आंखें खोल दी तथा उनके हृदय को उदार बना दिया है। उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप अब यहाँ के अधिकांश लोग दृढ़तापूर्वक विश्वास करने लगे हैं कि प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अद्भुत आध्यात्मिक सत्य छिपे पड़े हैं। उन्होंने केवल इसी भाव को फैलाया हो ऐसी बात नहीं, वह इंग्लैंड तथा भारत के बीच एक स्वर्णिम संबंध स्थापित करने में सफल भी हुए हैं।
0: वे आगे एक घटना के बारे में लिखते हैं,
5: कल शाम को मैं दक्षिणी लंदन के निवासी अपने एक मित्र से मिलने जा रहा था। रास्ता भूलकर मैं एक मोड़ के किनारे खड़ा होकर सोच रहा था कि किस ओर जाऊं। उसी समय एक महिला एक बालक के साथ मेरी ओर आई। मुझे लगा कि संभवतः वे मुझे रास्ता दिखा देना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, महाशय शायद आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। मुझे रास्ता बताने के बाद वे बोली, इन्हें संवाद पत्रों से मुझे पता चला कि आप लंदन आ रहे हैं। आपके ऊपर दृष्टि पड़ते ही मैंने अपने पुत्र से कहा, वो देखो स्वामी विवेकानंद खड़े हैं। चूंकि मुझे ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी, अतः मेरे पास ठहर कर उन्हें यह बताने का समय नहीं था कि मैं विवेकानंद नहीं हूँ, और मैं शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया। तथापि विवेकानंद को देखे बिना ही उनके प्रति उक्त महिला की महान श्रद्धा को देखकर मैं सचमुच ही आश्चर्यचकित रह गया। इस सुखद घटना पर मैंने अतीव आनंद का अनुभव किया था और अपनी गिरवा पगड़ी को धन्यवाद दिया जिसने सम्मान दिलाया था। इस घटना के अतिरिक्त भी मैंने यहाँ ऐसे अनेक शिक्षित अंग्रेज सज्जनों को देखा है जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हैं और भारत के धार्मिक तथा आध्यात्मिक तत्वों को अतीव आग्रह के साथ सुनते हैं।
0: इंग्लैंड के निवासियों के प्रति पूर्ण आस्था एवं प्रीति लेकर ही स्वामी जी ने स्वदेश की ओर प्रस्थान किया। 28 नवंबर के अपने पत्र में उन्होंने हेल बहनों को बताया,
3: अंग्रेज जाति के बारे में मेरी जो धारणा थी वो पूर्णता बदल चुकी है। अब मैं समझ रहा हूं कि अन्य सब जातियों की अपेक्षा प्रभु ने उन्हीं पर इतनी कृपा क्यों की है। वे दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पूर्णतः निष्ठावान हैं और साथ ही उनमें गहरी भावुकता भी है। बस बाहर कठोरता का एक आवरण भर है, उसे तोड़ते ही तुम्हें अपनी पसंद का आदमी मिल जाएगा।
0: भारत पहुंचकर उन्होंने और भी स्पष्ट भाषा में कहा,
3: अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक घृणा का भाव लेकर कभी किसी ने इंग्लैंड की धरती पर पांव नहीं रखा होगा। इस सभा मंच पर जो अंग्रेज बंधु उपस्थित हैं वे इस बात की पुष्टि करेंगे, परंतु जितना ही मैं उन लोगों के बीच रहने लगा, जितना ही उनके साथ मिलने जुलने लगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन यंत्र की प्रक्रिया देखने लगा, उतना ही मेरी समझ में आने लगा कि उस राष्ट्र का हृदय कहां स्पंदित हो रहा है। उतना ही मैं उनसे प्रेम करने लगा। और भाइयों, यहां पर ऐसा कोई भी उपस्थित नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक प्रेम करता हो। मुझे लगता है कि अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा कार्य कहीं अधिक संतोषजनक रहा है। निर्भीक, साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि कोई भाव किसी तरह एक बार भी संचारित किया जा सके, हालांकि उनकी खोपड़ी दूसरी जातियों की अपेक्षा स्थूल है और उसमें कोई भाव आसानी से नहीं घुसता, तो वो वहीं दृढ़ हो जाता है, फिर बाहर नहीं आता। उस जाति की अमित व्यवहारिक शक्ति के द्वारा वो बीज रूपी विचार अंकुरित होकर अविलंब फलदायी होता है। इस जाति में कल्पना कम है और कर्मठता अधिक है। अंग्रेज वीरों की जाति हैं, यथार्थ क्षत्रिय हैं। अपनी भावनाओं को छिपाए रखना ही उनकी शिक्षा है, परंतु इस बहादुरी के ठाट बाट, इस क्षत्रियत्व के आवरण के पीछे अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गहन स्रोत छिपा हुआ है। यदि आप एक बार भी वहां तक पहुंच सकें, यदि एक बार भी आपकी अंग्रेजों से घनिष्ठता हो जाए, यदि आप उनसे घुल मिल जाएं और एक बार भी अपने समक्ष उनके हृदय के भाव व्यक्त करा सकें, तो वे सदा के लिए आपके मित्र हो जाएंगे, सदा के लिए आपके दास हो जाएंगे। इस कारण मेरी राय में अन्य स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक रहा है।
1: सचमुच ही स्वामी जी इंग्लैंड के निवासियों का हृदय जीत सके थे और स्वयं उनके प्रति प्रेम दिखाकर उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य के वास्तविक मिलन का पथ प्रशस्त कर दिया था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आज़ाद हिंद के साथ। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, अब हमारी सभा समापन की ओर है। तो चलते चलते हम आपको बताए दे रहे हैं कि कल यानी 18 सितंबर शुक्रवार को आप हमारी सुबह की सभा में कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। सुबह 7 बजे जब सभा आरंभ होगी, आप सुनेंगे जीवन सौरभ। 7:10 से सुनिएगा ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम वतन का राग। ये कार्यक्रम श्रोताओं कल आधारित होगा मदन लाल ढींगरा पर, जिनकी कल जयंती भी है। सुबह 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम आमने सामने। कल इस कार्यक्रम का विषय रहेगा LPG की बचत और इसका संरक्षण किस तरह किया जाए। सुबह 9 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम वागर्थ का। कल वागर्थ में हमने शामिल किया है शायर वसीम बरेलवी को। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम जो कि आधारित होगा नर्मदा नदी पर, नर्मदा एक सांस्कृतिक परिदृश्य के रूप में। सुबह 10 बजे नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी परिक्रमा लेकर आएगी। और 10:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। श्रोताओं कल शंकर शाह और रघुनाथ शाह की शहादत का दिवस है, तो उन्हीं पर आधारित होगा हमारा कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। कल ये कार्यक्रम समर्पित होगा सत्यदेव दुबे को। दिन में 11:30 आप सुनेंगे हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। कल

0: चैनल देश के लिए
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। अब हमारी ये सभा समाप्त होती है। कल सुबह 7 बजे आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।